मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। मीडियम वेव और एफएम पर हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता के शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया।

0: कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वे नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इखलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोफ को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

एक मार्ग जो यथार्थ है, वश उनका तीनों काल पर पूरा जग झूम उठता है भोले के डमरू की ताल पर। आइए श्रोताओं, दिन का शुभारंभ करते हैं उस परम पिता परमात्मा की वंदना से।

श्याम मिलन की आस सखी मेरे उर्मे जागी रे, तड़पत तड़पत कल न परत है, बिरह बान उर लागी रे।

मोहम्मद के दम से है शाने रिसालत, मोहम्मद है खुद आसमानी रिसालत, रसूलों में उनको मिली सर बुलंदी, मोहम्मद है बस आसमानी रिसालत।

ये तनविश की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान।

नेत्र तीन हैं प्रभु के मेरे, गले में सर्पों की माला है, जो चाहो तुम मांग लो इनसे, मेरा शिव भोला भाला है।

आज की वंदना में स्वर थे रूप कुमार राठौर, अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद रफ़ी और सुरजीत सिंह के। इसी के साथ आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

0: जी आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:30 हो चुके हैं। प्रभु वंदन के बाद अब सुनते हैं आज का चिंतन।
1: हमारा देश आज का नहीं, हमारा हजारों साल का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत ने, हिंदुस्तान ने किसी अपने पड़ोसी देश पर हमला करके किसी की जमीन पर कब्जा करने का कभी विचार नहीं किया, और हमने अगर कहीं कुछ जीत की है, बाहर के देश पर, दुनिया पर हमारा असर हुआ है, तो वो तलवारों का और बंदूकों का असर नहीं है। हमारा एक कल्चरल कॉन्क्वेस्ट हुआ है, एक सांस्कृतिक हमारी जीत हुई है। जीत के माने हमारा असर फैला है, हमारे दर्शन का, हमारी फिलॉसफी का, हमारे कल्चर का, हमारे साहित्य और लिटरेचर का, चाहे वो लंका हो, सिलोन, चाहे बर्मा, चाहे थाईलैंड, चाहे कंबोडिया, जो भी ये देश हैं आज, या और दूसरे देश, जापान आदि भी, उसमें हमारे भारत के विचार वहाँ गए, हमारे ख्यालात वहाँ पहुँचे, हमारा दर्शन, हमारी फिलॉसफी वहाँ गई, हमारे ग्रंथ, हमारे पुस्तक वहाँ गए, हमारे पूजा और पाठ के तरीके वहाँ गए। और आज भी आप उन देशों में जाएं तो आपको बहुत से भारत की पुरानी, प्राचीन जो हमारे ढंग थे, हमारी मूर्तियां थीं, हमारी शब्दावली, ये सब आपको वहाँ मिलेंगे। पहनावा भी अब बदल रहा है, लेकिन पहनावा भी कंबोडिया के अंदर इसी धोती का वहाँ प्रयोग होता है। तो ये जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा फैलाव, हमारे देश का एक दूसरे ढंग का फैलाव हुआ, लेकिन कभी हम बम के गोलों से या तलवार और बंदूकों से हमने हमला करके दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहा हो, ये हमारा इतिहास हमें नहीं बताता। और आज, और ये भी एक अजीब बात थी, कहीं दुनिया में आपने ये सुना है कि एक साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक बड़ी सरकार, एक मजबूत सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसी, उससे लड़ने के लिए

0: लाखों और करोड़ों आदमी को उठाया जाए, उनको उभारा जाए, लेकिन कहा जाए कि तुम्हें लाठी का जवाब लाठी से नहीं देना है, गोली का जवाब गोली से नहीं देना है, बल्कि धीरज से बर्दाश्त करना है, जो तकलीफ आए जो कष्ट हो उसका सहन करना है, लेकिन अपनी बात से हटना नहीं है, अपनी बात पर अड़े रहना है। ये भी आपको दुनिया के इतिहास में इस तरह की लड़ाई कभी नहीं मिलेगी। एक इतने बड़े क्षेत्र में, इतने बड़े मैदान में, लाखों और करोड़ों आदमियों के बीच में एक अहिंसा और शांति की बात को चलाना, और एक राजनीतिक संग्राम में, एक पॉलिटिकल लड़ाई में, ये बात भी मैं नहीं जानता कि संसार के इतिहास में कहीं देखने को मिलेगी।
1: ये था आज का चिंतन। आज इसमें आपने सुने शास्त्री जी के विचार। सवेरे के 6:35 हो चुके हैं। समय है स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम का। आज के इस कार्यक्रम में रोग प्रतिरोधक क्षमता विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
2: स्वास्थ्य संदेश के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जीव जंतु के शरीर में जन्म से ही विद्यमान रोगों से लड़ने वाली सामान्य व्याधि क्षमता को नैसर्गिक व्याधि क्षमता यानी नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। उचित आहार विहार के पालन से यह क्षमता बढ़ती है या बनी रहती है, तथा अनुचित आहार विहार करने से यह घटती है या नष्ट होती है। व्यक्ति के आहार विहार, रहन सहन और पथ्य अपथ्य पालन के आधार पर यह व्याधि क्षमता अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए कुछ व्यक्ति तो उत्तम व्याधि क्षमता वाले होते हैं तो कुछ व्यक्ति क्षीण व्याधि क्षमता वाले होते हैं। व्याधि क्षमता जब बलवान होती है तब शरीर प्रायः निरोग रहता है, और यदि रोग हो जाए तो जल्दी ही ठीक हो जाता है, और इस कारण ऐसे लोगों की आयु दीर्घ हुआ करती है। इसके विपरीत जिनमें व्याधि क्षमता दुर्बल या नगण्य होती है, उनका शरीर बार बार रोगग्रस्त होता रहता है और रोग जल्दी ठीक भी नहीं होता। व्याधि क्षमता के कुछ प्रकार होते हैं। कुछ संक्रामक रोगों के होने पर शरीर में उन रोगों के प्रति उत्पन्न होने वाली व्याधि क्षमता को उपार्जित व्याधि क्षमता यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यह कुछ में अल्पकालिक, कुछ में दीर्घकालिक और कुछ में आजीवन रहती है। वैक्सीनेशन द्वारा विशिष्ट व्याधि क्षमता उत्पन्न की जाती है, उसे कृत्रिम व्याधि क्षमता यानी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन कई बार हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के स्वस्थ ऊतकों और बाहरी तत्वों यानी एंटीजन के बीच भेद नहीं कर पाती है, और कई बार शरीर के स्वस्थ ऊतकों को हानि पहुंचाने लगती है। ऐसे में व्यक्ति स्वस्थ नहीं महसूस करता है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटीन, बायोकेमिकल्स और कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जो हमारे शरीर को बाहरी बैक्टीरिया तथा वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी इस सिस्टम से भी गलती हो जाती है और यह शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को ही नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे रिमेटाइड अर्थराइटिस, ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। शोध के मुताबिक कुल जनसंख्या का 1% हिस्सा ऑटो इम्यून बीमारियों की चपेट में है, जबकि 10 में से 9 महिलाएँ और 1 पुरुष ऑटो इम्यून रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। यानी इस रोग में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही ग्रस्त हैं। जोड़ों के दर्द, लंबे समय तक बुखार रहना, रक्तस्राव रुक न रहा हो, और ये लक्षण युवा उम्र की महिलाओं में हो तो ऑटो इम्यून डिजीज होने की आशंका और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है समय पर सही इलाज और जीवन शैली में संतुलित बदलाव। ऐसे मरीजों को खाने में वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। खमीर युक्त भोजन जैसे डोसा, जलेबी, दही आदि से परहेज करना चाहिए। खट्टी व ठंडी चीज़ों से भी परहेज करें। वैसे किसी पदार्थ का सेवन न करें जो सुपाच्य न हो। लहसुन, जीरा, हल्दी, धनिया, अदरक, मूंग दाल और सौंठ का प्रयोग जरूर करें। खान पान के अलावा दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाकर ऑटो इम्यूनिटी की बीमारियों, खास रूप से रूमेटाइड आर्थराइटिस के लक्षणों पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। जैसे ठंडे पानी से स्नान करने से परहेज करें, क्योंकि इससे रक्त संचार प्रभावित होता है

0: हमेशा गुनगुना पानी से स्नान करें या स्टीम बाथ लें। दिन में नींद न लें, इससे मांसपेशियां कड़ी होती हैं और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। रात में सोने से पहले गर्म पानी से हाथ पैरों को धोएं या सेंकें, इससे रक्त संचार बढ़ता है। नीम और अरंडी के पत्तों से भी जोड़ों की सिकाई कर सकती हैं। दिन भर के तनाव से मुक्त और क्षतिग्रस्त मांसपेशियों को दुरुस्त करने के लिए नियमित और भरपूर नींद जरूर लें। अनावश्यक तनाव से बचें। ऑफिस या घर के काम के दौरान ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हों तो थोड़ी देर के लिए पैदल टहलने निकल जाएं या ध्यान करें, कोई मनपसंद किताब पढ़ें या संगीत सुनें। इससे आपके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर घटेगा, जो कि शरीर में सूजन पैदा करते हैं। इस तरह जीवन शैली में बदलाव लाकर आप अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जानकारी बस यहीं तक। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 6:40 हुए हैं।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सुबह 7 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम सेहतनामा। आज इसमें नवजात का सर्वोत्तम आहार मां का दूध विषय पर एक बातचीत सुनी जा सकेगी। संचालन रेणु तिवारी का होगा और प्रस्तुति होगी असीम सक्सेना की। इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे का समय रहेगा 7:31।

102.9 मॉर्निंग हिट्स। नए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 8:45 पर। उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:50 पर आज आप सुनेंगे मुन्ने खां का तबला वादन। आपके अनुरोध पर फिल्म संगीत का ये फरमाइशी कार्यक्रम होगा सुबह 10:00। धरोहर के अंतर्गत दिन में 11:00 आप सुनेंगे धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा। आज सुनिएगा इस धारावाहिक की कड़ी संख्या 10। मनभावन कार्यक्रम में 11:30 पर एक ही गायक के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे सोनू निगम के गाए कुछ फिल्मी नगमे। दिन में 1:15 पर धरती गाती है कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी प्रीति शर्मा। आंचल कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 1:30। हमारी दूसरी सभा में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा 6:20। विविधा के अंतर्गत आज शाम 7:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे वार्ता तकनीकी के साथ कदम मिलाना है। वार्ताकार होंगे फहीम जहां। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:31 पर आज सुनिएगा इंदिरा खरे के गाए कुछ गीत और भजन। रात 10:00 आप सुनेंगे सजीव फोन इन प्रोग्राम हेलो रामपुर। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

मीडियम वेव और एफएम पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 होने को हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज सुनिए इसकी कड़ी संख्या 294। गायक स्वर हैं।

0: श्रीकांत पारगांवकर और सुरेश वाडेकर के तथा संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।
1: एपिसोड नंबर 294।

जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिन्हें जानकी तथा महादेव ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, आज मुझे उन्हीं चरणों के दर्शन प्राप्त होंगे। इन्हीं विचारों में खोए हुए विभीषण समुद्र के इस पार आते हैं, जिधर श्री राम की वानर सेना के शिविर लगे हुए हैं। वानर समूह ने उन्हें देखा तो शंका हुई, शत्रु का कोई खास दूत उनके बीच आ पहुंचा है। विभीषण को श्री राम के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:55 होने को है। अब संस्कृत में समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिंगस्य श्री सोमनाथ महादेव मंदिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्री मोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुंभाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभांच संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पंचमंत्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मंडल दंडाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षी अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थं आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा गठबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतन मंत्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः

0: नवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। श्रोताओं, आप सुनिए कार्यक्रम सेहतनामा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नवजात का सर्वोत्तम आहार माँ का दूध विषय पर बातचीत। संचालन रेणु तिवारी का है और प्रस्तुति है असीम सक्सेना की।

0: श्रोताओं नमस्कार। एक सुखी परिवार की नींव स्वस्थ परिवार पर होती है। बच्चे किसी भी परिवार का भविष्य होते हैं और स्वस्थ बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। स्वस्थ जीवन की शुरुआत गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है और जन्म के तुरंत बाद स्तनपान इस नींव को सुदृढ़ बनाता है। गर्भ में 9 महीने तक रहने के कारण माँ और बच्चे के बीच एक जुड़ाव हो जाता है। जन्म के तुरंत बाद शिशु को प्राकृतिक रूप से स्तनपान का वरदान मिलता है। जन्म के शुरुआती 2 घंटे में शिशु अधिक सक्रिय रहते हैं, इसलिए जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर ही स्तनपान शुरू करने की सलाह दी जाती है। स्तनपान जितनी सरल प्रक्रिया है उतनी ही भ्रम की स्थिति भी होती है, खास तौर पर उन माताओं के लिए जो पहली बार शिशु को जन्म दे रही हैं। जन्म के 1 घंटे के भीतर शीघ्र स्तनपान करने के संबंध में कौन कौन से ऐसे उत्कृष्ट कार्य हैं जिन्हें किया जाना चाहिए, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है जन्म के 1 घंटे के भीतर शीघ्र स्तनपान व्यवहार अपनाए जाने वाले उत्कृष्ट कार्य। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फातिमा नूर, स्टाफ नर्स सुधा पांडे और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सुनीता सिंह, सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर फातिमा नूर जी से। जन्म के 1 घंटे के भीतर भीतर स्तनपान शुरू करने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है?
1: सबसे बड़ा लाभ तो यही होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है बच्चे को, जितने जल्दी दी जाए इतना अच्छा है। दूसरे, उस टाइम जो कोलोस्ट्रम बनता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी, शिशु के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले तो कोशिश की जाए कि 1 घंटे के अंदर ही अंदर बच्चे को माँ का दूध दे दिया जाए। जितना माँ कंफर्टेबल हो जितने जल्दी इतने जल्दी दे देना चाहिए।
0: लेकिन महिलाओं में स्तनपान को लेकर बहुत सारे भ्रम की स्थिति कई बार रहती है, खास तौर पर वो माएँ जो पहली बार शिशु को जन्म देती हैं तो उनमें खास तौर पर अनुभव का अभाव होता है। ऐसी माएँ स्तनपान कैसे आरंभ करें, सुनीता जी आपसे हम जानना चाहेंगे।
2: जी बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। जो पहली बार माँ बनी होती हैं महिलाएं, तो घर के जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे रीति रिवाज उनको करने होते हैं, तो वो इसी तरह से माँ को समझाती हैं कि नहीं ऐसा करना है ऐसा करना है। और जो शुरू का पीला गाढ़ा दूध होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, तो वो शिशु के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि उसको पीने नहीं दिया जाता है और कहती हैं कि नहीं ये बच्चे के लिए नुकसानदायक है। लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और एक आम भाषा में कहना चाहिए कि वो रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है और वो एक बच्चे में एंटीसेप्टिक का काम करता है। जैसे कि बच्चे को टीके की ज़रूरत होती है बीमारियों को भगाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी बच्चे को पिलाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और सेहतमंद रहे।
0: सुनीता जी, अक्सर ये होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बच्चे को पीने नहीं दिया जाता है।

0: घर के बड़े बुजुर्ग ही कई बार इसके बारे में ऑब्जेक्शन कर देते हैं, रुकावटें डालते हैं, तो बहुत सी भ्रांतियां हैं।
1: कहते हैं कि पीला गाढ़ा दूध नहीं देना है, शहद चटाना है या घुट्टी देनी है। तो किसी भी, जैसे आपने बोला कि घर का कोई भी सदस्य होता है, उसकी बुआ होती हैं या कोई ऐसा मान जिसको बोलते हैं हम आम भाषा में, उनके द्वारा कराया जाता है वो, तो ये चीज़ गलत है। उसको माँ का दूध ही बेहतर है, घुट्टी शहद कुछ नहीं, क्योंकि ये चीज़ें नुकसानदायक होती हैं बच्चे के लिए। इसकी सलाह हम परिवार में जा कर के, गृह ब्राह्मण होता है एक हमारे द्वारा क्षेत्र में, उसमें जाकर हम माँ को समझाते हैं, और जो महिलाएं होती हैं परिवार की, बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उनको बताते हैं। और पहली बात अलग थी, लेकिन इस समय संक्रमण का दौर है, इतना खान पान भी सही नहीं है, तो जो कुदरत ने एक उपहार दिया है माँ के दूध का, तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, ना कि शहद या घुट्टी।
0: शहद और घुट्टी की बात तो हमने कर ली, लेकिन कई बार ये भी होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, बच्चे का जो जन्म होता है वो सामान्य रूप से नहीं होता, सिजेरियन होता है। तो ये भी कहा जाता है कि जो अगर माँ जैसा खान पान रखती है वही असर बच्चे के दूध में जाता है। तो जब ऑपरेशन से बच्चा होता है, दवाइयों का असर होता है, एनेस्थीसिया का असर होता है, तो ऐसे में बच्चे को 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना क्या सुरक्षित है? डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे।
2: नहीं, सुरक्षित है और बहुत ज़रूरी है। वो सीजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके लिए, दोनों के लिए बच्चे को जन्म से फौरन बाद स्तनपान कराना ज़रूरी होता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या मेडिसिन लगी है, क्या कुछ है, उसको पोजीशन के ऊपर होता है। माँ अगर लेटी है सीजेरियन के बाद, वो उठ नहीं सकती है, हिल नहीं सकती है, तो उसके उल्टा, बच्चे को उल्टा लिटा दिया जाता है पेट के ऊपर, ताकि आसानी से वो स्तनपान कर सके। स्टाफ नर्स होती हैं, घर की बुजुर्ग महिलाएं होती हैं,
0: जी
2: वो लेकर उसको, बच्चे को पेट पर उल्टा करके लिटा देती हैं, प्रोन पोजीशन में, या मतलब पेट के बल लिटा दें बच्चे के, माँ के पेट पर, तो और वो स्तन से लगा देती हैं उसका मुंह, बच्चा खुद कंफर्टेबली वो सक करने लगता है। ये पोजीशन सही रहती है, और जैसे जैसे माँ सही पोजीशन में आती है तो उसी हिसाब से दिलवा दिया जाता है।
0: बच्चे को स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम ये कैसे जाने कि बच्चा स्तनपान ठीक से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या जन्म के समय जब बच्चे को स्तनपान कराया जाता है तो किस मात्रा में उसको दूध दिया जा सकता है, ये कैसे जान सकते हैं? सुधा पांडे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे।
3: जैसे बच्चा वो ब्रेस्ट फीड करता है, वो जब फीड कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट जितनी होती है, जैसे हम हाइजीन मेंटेन करेंगे, पहले माँ को हाइजीन मेंटेन करके उसको फीड कराएंगे, फीड कराने के बाद जब बच्चा के जितने रिक्वायरमेंट होती है वो खुद ही उसको ले लेता है। जब उसको रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो वहाँ से खुद हट जाता है। अगर नहीं हटेगा, अगर उसको फीड पूरा नहीं ले पा रहा है तो वो रोएगा, पता चलेगा कि हाँ ये सही से दूध नहीं पी पा रहा है, तो ये चीज़ सब देखना पड़ता है उसमें।
0: कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा दूध नहीं पी पाता है या वो सो जाता है दूध
3: जी जी
0: पीते
3: जी
0: हुए, और टाइम तो ज्यादा लग जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है। तो हम कैसे पता करें कि बच्चे के लिए कितना कोलेस्ट्रॉम जो है वो जरूरी होता है, कितनी मात्रा सही रहती है?
3: कोलेस्ट्रॉम के लिए तो बच्चा जैसे फीड कर रहा होता है उसका जैसे पेट भर जाता है, कभी सो जाता है फीड करते करते, तो उसको थोड़ा सा उसको हिलाना पड़ता है, उसको माँ को जैसे हमेशा माँ को अच्छी पोजीशन बैठना पड़ता है, उसको तब फीड कराना है। उसको जब फीड कराएगी, बच्चा सो जाता है तो उसको हाथ से हिलाना पड़ता है, वो फिर से फीड करता है, जब उसका पेट भर जाता है उसको अपने कंधे पे लेके उसको थपकी देके उसको डकार दिलानी होती कि हाँ बच्चे के पेट भर गया है, वो वॉमिटिंग ना करे, इसलिए उसको अच्छी पोजीशन में बैठ के दूध पिलाना पड़ता है।
0: कई बार ये होता है कि बच्चा जल्दी फीड नहीं कर पाता है और उसे दिक्कत होती है, तो उस दिक्कतों से कैसे हम पार पा सकते हैं, कैसे हम उस स्थिति से निपटें?
3: जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे प्रीमेच्योर होते हैं, बस अच्छे से फीड नहीं कर पाते, उनको हमेशा जो कंगारू मदर केयर एक वो चलता है उसमें बच्चों को, वो माँ को बताना पड़ता है कि कैसे बच्चों को रखना है, स्किन टू स्किन टच उसको कराना पड़ता है, माँ को हमेशा बच्चे के पास ही रखना पड़ता है। जब तक बच्चा अपनी मतलब उस अच्छी सी पोजिशन, वो वेट में नहीं आ जाता, तब तो उसको माँ अपने पास ही रखती है, हमेशा अपनी स्किन से लगा के ही रखती है कि हाँ बच्चा अच्छे से वो जब जब अच्छी उसमें हो जाता है, जैसे उसका वेट अच्छा हो जाता है, अच्छे से फीड करने लगता है, तब तक उसको माँ को अच्छे से, जैसे कंगारू अपने बच्चे को चिपका के रखती है अपने बच्चे को, वैसे ही माँ को रखना पड़ता है।
0: कंगारू केयर के द्वारा हम बच्चे को अच्छी तरह से फीड करवा सकते हैं। ये सवाल हम डॉक्टर साहब आपसे करना चाहेंगे, फातिमा नूर जी से, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें माँ को संक्रामक रोग लगे हुए होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे हम बच्चे को स्तनपान शुरू कराएं? क्या किसी भी हालत में बच्चे को स्तनपान कराया जा सकता है, या कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिसमें बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए?
2: ये फिर उसका जो भी उसको बीमारी या डिजीज लगी हुई होती है तो वो देखना पड़ता है कि इससे बच्चे को नुकसान तो नहीं है। अगर बच्चे को वो बीमारी ऐसी नहीं है जो बच्चे को नुकसान दे, तो वो उससे बच्चे को इस तरह से कवर करके बच्चे को फीड करा दिया जाता है।
0: कुछ बीमारियां तो जैसे हम ले सकते हैं स्किन डिजीजेस हो गई
2: जी,
0: या कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं कि जहां पर बच्चे को स्तनपान कराना ठीक नहीं है, ऐसे कौन कौन से इन्फेक्शन हैं कि जिसमें ये माना जाता है कि बच्चे को स्तनपान जन्म के तुरंत बाद नहीं कराना चाहिए? जैसे कि हम मान सकते हैं, कई बार हमने सुना है कि HIV पॉजिटिव माँ है,
2: HIV में दे सकते हैं, बच्चे को फीड करा सकते हैं, उसकी मेडिसिन चलती हैं, लेकिन दे सकते हैं,
0: सुरक्षित होता है पूरी तरह से।
3: बच्चे को हमेशा माँ को पलंग पे या कुर्सी पे बैठ के दूध पिलाना चाहिए। बच्चे का सर को अपने हाथ पे रख के, उसकी पीठ को अपने हाथों पे रख के, उसको गोद में लेटा के सर को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, फिर उसको दूध पिलाना चाहिए। अगर हम उसको, आप लेटे हो, बच्चा भी लेटा है और उसको दूध पिला रहे हैं, तो दूध उसके कान में चला जाता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह लगता है, उसको दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, तो हमेशा माँ को अच्छी पोजीशन में बैठ के ही बच्चे को दूध पिलाना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है, समय से पूर्व जन्म ले लेता है, उस समय कई बार स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि उसको बाहर की कोई चीज या कुछ भी नहीं दिया जा सकता, ऐसे में स्तनपान कैसे कराया जाता है?
2: तो उसे भी, बच्चे को माँ का स्तन से ही कराया जाता है, उसको पोजीशन ऐसे दी जाती है कि तो कोई बच्चा अगर 10 मिनट में फीड कर पा रहा है तो वो 1 घंटे में करेगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ धीरज से उसको स्तनपान करानी ही चाहिए।
0: ये तो हुई बात प्रीमेच्योर बच्चों की। कई बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय ही उसे किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, उसे इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में बच्चे को माँ से अलग रखा जाता है, ऐसी स्थिति में स्तनपान कैसे करा सकते हैं? कई बार ये भी देखा जाता है कि बच्चे को डब्बा बंद दूध दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है?
2: नहीं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे को दे ही नहीं सकते हैं, दूर नर्सरी है या माँ से ज्यादा दूर है, दूरी पर तो फार्मूला ये मिल्क दिया जा सकता है, लेकिन कोशिश फिर भी ये होनी चाहिए कि पंप के जरिए माँ का दूध लेकर फिर बच्चे को पिलाया जाए।
1: माँ का दूध जो शुरू का गाढ़ा पीला होता है वो अमृत के समान इसलिए माना जाता है क्योंकि कुदरत ने जो माँ का दूध दिया है और जो बच्चा न्यू बॉर्न है तो ऊपर वाले ने इतने उसमें मिनरल्स दिए हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर विटामिन्स हैं और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो तुरंत बच्चे को चाहिए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें ऊपर वाले ने माँ के दूध में सबमिट की हैं, तो वो अगर बच्चा पी लेता है तो वो सारी जो बीमारियां हैं और जो उसका विकास है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, वो उससे एकदम आगे बढ़ता है, उसका विकास अच्छे से होता है, इसीलिए कहते हैं कि माँ का दूध बहुत ज़रूरी है।
0: स्तनपान बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है जिसे जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। इससे न केवल माँ और बच्चे का भावनात्मक जुड़ाव होता है बल्कि बच्चे के स्वस्थ जीवन की नींव इसी से पड़ती है। आज हमने स्तनपान से जुड़े व्यवहारों को अपनाने और भ्रमों के निवारण का प्रयास किया अपने विशेषज्ञ टीम डॉक्टर फातिमा नूर जी, सुधा पांडे जी और सुनीता सिंह के साथ। आइए संकल्प लेते हैं स्वस्थ भारत के निर्माण का। आज बस इतना ही, नमस्कार।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सुबह के 7:15 हुए हैं।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ये आकाशवाणी रामपुर है, 7:18 हुए हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार।

0: सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ, 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने कहा परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा, कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रभास पाटन में धर्म, भक्ति, देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज सुबह 9 बजे सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव नियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल लखनऊ में कहा कि राज्य को बेहतर बिजली ढांचा देने के लिए लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि सरकार ने 165 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए हैं, 59 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और 26,000 किलोमीटर से ज्यादा पारेषण लाइन का विस्तार किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृत की सराहना पर केंद्रित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार

0: बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज अंडरस्कोर जीकेपी पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध तथा कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 1,92,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले 2 दिन के दौरान मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण लखनऊ सहित कई जिलों में उमस भरी गर्मी शुरू हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में 14 मई तक एक बार फिर मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुंदेलखंड, तराई और पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा, कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण। 7:31 होने को हैं। प्रस्तुत है इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। रागिनी है एक प्यार की जिंदगी के जिसका नाम है, गाकर गरकटे तो है सुबह, रोकर करकटे तो शाम है। शब्द और ज्ञान व्यर्थ हैं, पूजा और ध्यान व्यर्थ हैं, आंसुओं को गीत में बदलने के लिए लौ किसी यार से लगानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह सवेरे की इस महफिल में आप सभी का दिली इस्तकबाल करती है आपकी रेडियो साथी अपर्णा। जी हाँ, जिंदगी की राह आसान करनी हो तो खुशनुमा साथ से सफर की शुरुआत करनी चाहिए। कुछ अच्छा सोचकर मुस्कुरा लेना चाहिए और फिर थोड़ा गुनगुना भी लेना चाहिए। तो चलिए हम और आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से। आज 11 मई है। इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और अब जान लेते हैं आज की तारीख में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। आज ही के दिन 1784 में अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच संधि हुई थी। इसी दिन 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। इसराइल को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाया गया था, जिसे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परामर्श प्राप्त करने में सुविधाजनक भी बनाया गया। वर्ष था 1949, तारीख थी 11 मई। इसी दिन 1927 में पायलट चार्ल्स किंग्सफोर्ड स्मिथ ने पहली बार अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक की निर्बाध उड़ान भरी। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ था आज ही के दिन 1851 में, जब भारतीय सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया था 11 मई 1962 को। इसी दिन 1988 में फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 170 से अधिक देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर भी आज ही के दिन किए थे। वर्ष था 1995। इसी दिन 2008 में विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड मानव भ्रूण तैयार किया गया। आज का दिन और भी विशेष हो जाता है क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में शक्ति नामक परमाणु परीक्षण किया, जिसे पोखरण 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन 1918 को प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई का जन्म हुआ। प्रसिद्ध लेखक सादत अली मंटो भी आज ही के दिन जन्मे थे वर्ष 1912 में। और 1950 में इसी दिन बॉलीवुड अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर जन्मे। ये तो थी आज के दिन के इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 11 मई है, वो दिन जब भारत परमाणु शक्ति बना। वर्ष था 1998। भारत ने सफलतापूर्वक पोखरण में परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला को अंजाम देकर

बड़ी तकनीकी कामयाबी हासिल की थी। पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण भी किया गया और इसके बाद इसी तारीख को भारत ने त्रिशूल मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने सफलतापूर्वक 5 परीक्षण किए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में हुए इन परीक्षणों ने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया। इससे भारत ने अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमता को भी सिद्ध किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को मनाने के उद्देश्य से हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य है देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न मनाना, तकनीकी विकास को बढ़ावा देना और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरित करना। इस दिन भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी परमाणु क्षमता सिद्ध की है। निसंदेह यह अवसर उत्सव मनाने का है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में, मनु नहीं मनु पुत्र है ये, सामने जिसकी कल्पना की जीभ भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के हाथ में भी तलवार होती है, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ओर ही बढ़ते आ रहे हैं वे।

0: आकाशवाणी ने अपने प्रसारण के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे करने की ठान ली और अब वो पूरे करने भी जा रहा है। ये भारतीय सांस्कृतिक और सूचना इतिहास में एक मील का पत्थर है। 8 जून 1936 से ऐतिहासिक शुरुआत के साथ लोक प्रसारक की सशक्त भूमिका निभाई आकाशवाणी ने। रेडियो की गूंज देश के हर शहर तक पहुंची। गर्व होता है ये सोचकर कि हम भी इस गौरवपूर्ण सफर में भागीदार बने। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और फिर आकाशवाणी लोगों की ही आवाज बन गई। गर्व उन्हें भी जो श्रोता के रूप में जुड़े और उन्हें भी जिन्होंने अपनी सेवाएं देकर आकाशवाणी के इस लंबे सफर को खूबसूरत और सुगम बनाया। आज कार्यक्रम में आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने आकाशवाणी से जुड़कर कार्यक्रमों की सुंदर लड़ियां पिरोकर श्रोताओं को तोहफे के तौर पर दी। आज बात करते हैं आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक डॉक्टर करुणा शंकर दुबे से। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं अपने आकाशवाणी रामपुर के परिसर में और रामपुर के परिसर में मेरी आवाज है और मैं आकाशवाणी रामपुर से बहुत समय से जुड़ा रहा और एक अवसर ऐसा भी आया जब मैं वहाँ पर एक अधिकारी के रूप में नामित भी हुआ
0: जी।
1: वो दौर था जिस दौर में वहाँ पर निदेशक के रूप में आदरणीय शिवमंगल सिंह जी हुआ करते थे और उसके बाद मेरी यादों में जो रामपुर था, नवाब रजा अली खान ने 1965 में ये रामपुर आकाशवाणी को बनाया था
0: जी।
1: यूँ तो इसकी अवधारणा देश की आजादी के पहले से ही रख दी गई थी कि यहाँ एक आकाशवाणी बनेगा, क्योंकि रामपुर की विरासत में या तो एजुकेशन था, शिक्षा थी, या संगीत था। उसमें आकाशवाणी रामपुर का जो हल्का या एरिया जो था वो छोटा नहीं था, उत्तराखंड भी उसी में था और उत्तराखंड के साथ साथ पांचाल प्रदेश भी था
0: जी।
1: पांचाल प्रदेश के साथ साथ दिल्ली तक लगने वाली सीमा भी थी, बहुत बड़ा परिक्षेत्र था। जिन लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश से जाकर के रामपुर को

0: देखा है
1: जी।
0: उनका दिल इस तरह से रामपुर का हो गया तो उन्होंने रामपुर को छोड़ा ही नहीं, चाहे वो मुरादाबाद में बसे हों चाहे बरेली में बसे। मैं जब रामपुर में रहता था तो पट्टी टोला की तरफ होता था, हरियाणी चौकी की तरफ, तो मुझे टहल करके अपने आकाशवाणी आना और वो बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से रामपुर की यादें बहुत है, लेकिन रामपुर की यादों में आकाशवाणी का होना अपने आप में एक तरह से बहुत ही यादगार होते हैं।
1: ये तो रही आकाशवाणी रामपुर की बात। आकाशवाणी ने लोक प्रसारक की भूमिका निभाते हुए 90 वर्ष पूरे किए हैं सर, तो और किन किन जगह पर आकाशवाणी केंद्रों पर आपको कार्य करने का अवसर मिला, उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें भी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें।
0: मैं एक तरह से आकाशवाणी में जो है सबसे पहले हमारी पोस्टिंग जो है रायपुर उन दिनों रायपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, आजकल जो है वो तो मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश के 2 भाग हो गए
1: जी।
0: तो वो मध्य प्रदेश से मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश से मैं उत्तराखंड में आ गया, और उत्तराखंड जो है जो जिसको हम आज उत्तराखंड कह रहे हैं उस समय उत्तराखंड नहीं था, उस समय उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। 1991 की बात कर रहे हैं, 1991 में आया और वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, और उस समय हल्की सी जो है आहट थी कि उत्तरांचल राज्य बनेगा, उत्तरांचल का आंदोलन शुरू हो रहा था।
1: अच्छा।
0: और उस समय विश्वनाथ पांडे जी स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे, लेकिन अचानक उनका स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल नहीं रहा, अनुकूल न होने के कारण जो है प्रभार मुझे मिला, तो मैं वहाँ देखता रहा। और उसके बाद जो है फिर मुझे किसी कारणों से विदेश जाने का अवसर मिला, लेकिन मुझे रुचि नहीं थी, तो मुझे जो है सोनभद्र में ओबरा आकाशवाणी का प्रभार मिला। ओबरा आकाशवाणी तो उस समय अस्तित्व में था नहीं, लेकिन अस्तित्व में लाने का दायित्व सौंपा गया। उस दायित्व को जितना कर सका उद्घाटन तक मैं रहा। उस समय रामपुर के तत्कालीन जो केंद्र निदेशक थे गोविंद वर्मा जी, जो रामपुर में थे, उनके सानिध्य में उन्हीं के हाथ से उद्घाटन का कार्य हुआ, और उद्घाटन के तुरंत बाद वो उदयपुर चले गए। तो उसके बाद फिर मैं चला आया रामपुर से कानपुर। कानपुर से आने के बाद कानपुर करीब 4-5 महीने रहा, और वहां पर एक जांच हुई। जांच में पाया गया कि अरे आप कार्यक्रम के आदमी हैं और आप कहां विज्ञापन में आ गए। और जो है मैं फिर लखनऊ आ गया। लखनऊ में बहुत वर्षों तक रहा। मैं जब रामपुर आया तो रामपुर के बारे में मैं पहले से जानता था। जानता इसलिए था क्योंकि रामपुर से आकाशवाणी लखनऊ में जो है उर्दू कार्यक्रम आया करते थे। रामपुर का उर्दू कुछ अलग तरह का था, लखनऊ का उर्दू कुछ अलग तरह का था, और उस समय एक समन्वित कार्यक्रम प्रसारित होते थे उर्दू के। इलाहाबाद का अपना योगदान होता था, रामपुर का अपना योगदान होता था। सप्ताह में जो है 2 दिन रामपुर के होते थे, 2 दिन इलाहाबाद के होते थे, और लखनऊ करता था। इस तरह से समन्वित कार्यक्रम करके उर्दू के कार्यक्रम प्रसारित होते थे।
1: आकाशवाणी को सर आपने जीवन के कितने साल दिए, कार्यकाल कितने वर्षों का रहा आपका?
0: यूं तो मैं आकाशवाणी अपनी शिक्षा काल में ही मैंने दर्जा 10वीं में मैंने जब था तो मेरी पहली रिकॉर्डिंग आकाशवाणी बनारस में हुई थी
1: जी।
0: और उस समय डॉक्टर सतीश ग्रोवर जी ने ही मेरी पहली रिकॉर्डिंग की थी आकाशवाणी में, ये मेरा सौभाग्य है। और उसके बाद मैंने आकाशवाणी में मैं आ जाऊंगा तो ये मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं एडहॉक रूप में बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। उसके बाद मैं तिब्बती संस्थान सारनाथ में चला आया। उसके बाद मेरा जो है ये संघ लोक सेवा आयोग से मेरी नियुक्ति हुई आकाशवाणी के लिए, तो आकाशवाणी में लगभग 30 साल रहा, 30 साल का कार्यकाल रहा मेरा। मैं प्रोग्राम अफसर के रूप में आया और फिर सहायक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ, और सेवानिवृत्ति मुझे जो है ये मिली उत्तराखंड से।
1: सर आपने आकाशवाणी के साथ जीवन का एक अच्छा खासा समय गुजारा है, उसको अपनी सेवाएं दी हैं। बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से आपके संस्मरण जानकर आकाशवाणी से जुड़े हुए। सर आपने कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, पूरे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
2: आप थे आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक डॉक्टर करुणा शंकर दुबे। कामना यही है कि ये सफर मुसलसल चलता रहे, नए हमसफर साथ जुड़ते रहें।

रफ्तार मुसलसल है जिंदगी की साथियों, मिलते हैं यहाँ लोग बिछड़ने के वास्ते। श्रोताओं, आज के प्रोग्राम का समय अब खत्म हो चला है, लेकिन जल्द ही इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मिलने आएंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो साथी अपर्णा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का

0: एनएन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
4: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष में एसबी त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
5: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईते, ओइना प्रशांत, हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को

0: दो विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-01-01-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार। टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की जर मुबादला का तहफ्फुज़ करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत बिस्व शर्मा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर

0: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तहत ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाओ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के AFC एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन का कम इस्तेमाल करें और गैर मुल्की ज़रे मुबादला की बचत करें। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के तरीके को एक बार फिर अपनाने के लिए कहा। यह राजधानी कई मुल्कों में ईंधन की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के तनाजुर में की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह अपील ऐसे वक्त की है जब खाम तेल की आलमी कीमतों में मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुरमुज में रुकावटों की वजह से इजाफा हो गया है।
1: एक जमाना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों से अपील की है कि वो बेधड़क अखराजात पर गौर करें क्योंकि मुल्क को तवानाई की आलमी कीमतों के इजाफे से इक्तसादी दबाव का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने शहरियों से भी कहा है कि वो खुर्दनी तेल का भी इस्तेमाल कम करें। उन्होंने किसानों से जोर देकर कहा है कि वो बैरून मुल्क से दरामद की गई कीमियावी खादों पर इन्हेसार कम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में शिरकत करेंगे। ये तकरीब पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। जनाब मोदी भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, कुंभाभिषेक रस्म अदा करेंगे और बाद में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। एक रोड शो का भी एहतमाम किया गया है। इस मौके पर वजीर आला भूपेंद्र पटेल और नायब वजीर आला हर्ष सांघवी भी मौजूद होंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामनगर से सोमनाथ फजाई रास्ते से पहुंचेंगे। वो हेलीपैड पहुंचने के बाद एक रोड शो के दौरान आवाम को मुबारकबाद भी देंगे। इस रोड शो का इनेकाद वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक किया गया है। इसके बाद वजीर आजम सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर गुलाय अकीदत नजर करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को नए सिरे से तामीर करने का तस्वुर पेश किया था। इस मौके पर भारतीय फजाइया की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण सोमनाथ की फजा में एक सनसनीखेज एयर शो पेश करेगी। इस मौके पर वजीर आजम एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। वो एक खसूसी यादगारी डाक टिकट और 75 रुपये का एक खसूसी यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। सोमनाथ से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्बाद।
0: आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने रियासत में एनडीए की लगातार तीसरी मुद्दत कार के लिए राह हमवार करते हुए मुंतखब वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया है। बीजेपी की क्यादत वाली एनडीए कानून साज पार्टी का मुत्तफिका तौर से लीडर मुंतखब होने के बाद जनाब शर्मा ने इत्तेहादी पार्टियों के लीडरों के साथ लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की और बाजाब्ता तौर पर हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। गवर्नर मौसूफ जनाब शर्मा और वुजरा की कौंसिल के नए मेंबरों को कल ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। हलफबरदारी की तकरीब खनपाड़ा के वेटरिनरी कॉलेज प्लेग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। तवक्को है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर नितिन नवीन के अलावा दीगर मोजजीन इस में शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी आज नाबन्ना में रियासती सेक्रेटरिएट में वजीरों की कौंसिल की एक मीटिंग की सदारत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: کل حلف برداری کی تقریب منعقد ہو گئی، جس کے بعد اب مغربی بنگال کی نئی سرکار اپنی انتظامیہ کا سفر شروع کرنے کو تیار ہے. وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری آج نابنا میں اپنی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کریں گے. امکان ہے کہ میٹنگ میں ان پانچ نئے وزیروں کے قلمدان

0: मुख्तस किए जाएं जिन्हें कल हलफ दिलाया गया है। मुमकिन है कि दीगर महकमों के बारे में भी कोई फैसला किया जाए। जराए ने कहा है कि बीजेपी के इंतखाबी वादे एजेंडा में सरे फहरिस्त रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत, सेहत स्कीम और अन्नपूर्णा भंडार शुरू किया जाना और रियासती मुलाजिमीन के लिए 7वें तनख्वाह कमीशन पर अमल दरामद शामिल है। आज वजीर आला इंतजामिया के कामकाज की रफ्तार और नज्म जब्त की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरीज, जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस अफसरान से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी के 9 मुंतखबा कानून साजरकान से भी कहा गया है कि वो इस मीटिंग में शिरकत करें। कोलकाता से संदीपन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
1: इसी दौरान कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक मुत्तहिद अपोजिशन महास की टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी की अपील को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। मोहतरमा बनर्जी ने एक वीडियो पैगाम में कांग्रेस, सीपीआईएम और इंतहाई बाएं बाजू ग्रुपों समेत सभी अपोजिशन ताकतों से जोर देकर कहा है कि वो बकौल उनके सबसे पहले दुश्मन के खिलाफ यकजहत हो जाए। कांग्रेस तर्जमान सौम्य आईच राय ने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ से इंतहाई बाएं बाजू के ग्रुपों के जिक्र और 2013 में कांग्रेस कारकुनों के खिलाफ माओ नवाजों के तशद्दुद को याद करने पर सवाल उठाया है। सीपीआईएम की रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने भी इस तजवीज को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया है और मोहतरमा बनर्जी को एक बदउनवान और फिरका परस्त शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएम की रियासती सेक्रेटरी स्वपन बंदोपाध्याय ने भी कहा है कि ममता के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने उन्हें मनमाने तौर पर काम करने वाली और गैर जमहूरी शख्सियत करार दिया है। सीपीआईएमएल लिबरेशन के अभिजीत मजुमदार ने भी तृणमूल कांग्रेस को एक दाएं बाजू की तहकुमाना पार्टी कहा है। तमिलनाडु में 9 मुंतखबा असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू होगा। उबूरी स्पीकर एमवी करुपैया नए मुंतखब एमएलए को हलफ दिलाएंगे। अरकान के हलफ लेने के बाद आज या कल स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। टीवी के सरबराह सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत को इस महीने की 13 तारीख से पहले अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर टेक्नोलॉजी माहिरीन और जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ नौजवानों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत यकसर तब्दीली लाने वाले मुख्तलिफ इकदाम और इख्तराई सलाहियतों को बरूएकार लाकर भारत की तरक्की को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये दिन हर शख्स को मुल्क के अजीम सफर को मजीद तेज करने और अपनी सलाहियतों से फायदा उठाने की तरगीब देगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत अब काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत के लिहाज से दुनिया में तीसरे मकाम पर पहुंच गया है। मोर्गन स्टेनले की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत की काबिल तजदीद तवानाई की जानिब मुंतकिली बैरूनी इनेसार कम करने में मदद फराहम करेगी। ताहम इसकी कामयाबी इस बात पर मुनसिर होगी कि मुल्क शमसी सेल्स, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अहम शोबों को कितनी तेजी से मकामी सतह पर फरोग देता है। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में सोलर मॉड्यूल की पैदावार की सलाहियत मार्च 2024 में 38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में तकरीबन दो गुना होकर 74 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसी तरह सोलर सेल की सलाहियत भी 9 गीगावाट से बढ़कर 25 गीगावाट हो गई है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रा के यात्रियों और सयाहों से अपील की है कि वो पहाड़ी रियासत में मौसम के खराब हालात के पेशेनजर मोहतात रहें और महफूज तरीके से सफर करें। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन पहाड़ी खित्ते में कल और परसों बारिश और खराब मौसम के इम्कान के तनाजुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अकीदतमंदों और सयाहों से अपील की है कि वो अपने सफर के दौरान मौसम से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते रहें और इंतहाई एहतियात के साथ अपनी यात्रा की मंसूबाबंदी करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार दिया है। अलबत्ता मगरबी एशिया में कई महीने से जारी महाजाराई के खात्मे के लिए एक माहदे की कोशिशें जारी हैं। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि उन्होंने ईरान के जवाब को पढ़ा है जो उनके बकौल ईरान के नाम निहाद नुमाइंदों की तरफ से आया है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: इससे पहले ईरान ने कहा था कि उसने अमरीका की ताजा तरीन तजवीज के तहत जिसका मकसद मगरबी एशिया में तनाजे को खत्म करना है।

0: अपना जवाब भेज दिया है। ये जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा गया है, जो ईरान और अमरीका के दरमियान एक साजिश का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की इरना खबर एजेंसी ने कहा कि ईरान के जवाब में तनाज़े के खात्मे और अबनाए हुरमुज में समंदरी इलाके की सलामती को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है, जो तेल ले जाने वाले जहाज़ों का एक अहम आलमी रास्ता है। ईरान के सदर मसूद पेजिशियान ने कहा कि मगरिब के साथ मुज़ाकरात को हथियार डाल देने या फौज वापस बुलाने के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इसी दौरान इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान की तरफ से जवाब दिए जाने के बाद कल रात सदर ट्रंप से बातचीत की। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खीरों को ख़त्म करने की ज़रूरत से इत्तेफाक किया, जो मुज़ाकरात का एक अहम मौजू है। सदर ट्रंप ने फौजी सूरत हाल का जिक्र करते हुए ईरान को फौजी तौर पर शिकस्त खुर्दा करार दिया और दावा किया कि ईरान की दिफाई और हमला करने की सलाहियतों को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका ईरान के ताकतवर यूरेनियम ज़खीरे पर करीबी नज़र रख रहा है। न्यूज़ डेस्क से आशीष की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: फुटबॉल में आज सूचाऊ के मकाम पर 17 साल की उम्र तक के खवातीन एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इस मैच में कामयाबी से भारत 17 साल की उम्र तक की खवातीन फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेगा, जो खवातीन फुटबॉल में मेरिट की बुनियाद पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए पहली तारीखी रसाई होगी। फुटबॉल में भारत को कल जद्दा में 17 साल की उम्र तक के एएफसी एशियन कप के ग्रुप डी के अपने दूसरे मैच में उज़्बेकिस्तान के हाथों 0-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत की 17 साल की उम्र तक के फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज की तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अवाम पेट्रोल डीजल और गैस का इस्तेमाल किफायत शियारी से करें। वजीर आजम ने यह बात हैदराबाद में 5,400 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की तकरीब में कही। तमिलनाडु में नौ मुंतखब वजीर आला और टीवीके के सरबरा विजय की हलफबरदारी से मुतालिक खबर भी अखबारों में मुश्तरका तौर से नुमाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, टीवीके चीफ के अलावा नौ दीगर अराकीन असेंबली की भी हलफबरदारी, कई बड़ी शख्सियात की तकरीब में शिरकत। यूपी काबिना में तौसी से मुतालिक खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफे पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है कि यूपी काबिना में तौसी, 6 नए वुजरा शामिल, 2 नए वुजरा का प्रमोशन। एक बार फिर बतौर वजीर आला आसाम हेमंत बिस्वा सरमा 12 मई को हलफ लेंगे, ये खबर भी अखबारों में नुमाया है।
1: और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया बहरान के दौरान शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो एक साल तक सोना न खरीदें, ईंधन की खपत कम करें और गैर मुल्की जर मुबादला का तहफ़ करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे, वो वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह भी करेंगे। आसाम के गवर्नर ने हेमंत बिस्व शर्मा को रियासत में नई हुकूमत की तश्कील की दावत दी है। उत्तराखंड इंतजामिया ने चार धाम यात्रियों और सयाहों से कहा है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान चौकन्ना रहें और हिफाजत के साथ सफर करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की अमन तजवीज के तई ईरान के जवाब को पूरी तरह नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। और फुटबॉल में आज सोचाऊ में 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एएफसी एशियाई कप में अहम क्वार्टर फाइनल मैच में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म है द स्काई इज पिंक।

क्रैक फिल्म का गीत अभी आपने सुना, विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म डंकी से अरिजीत सिंह का गाया हुआ।

रेड टू, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल की आवाज में। आइए अब सुनते हैं शिल्पा राव और अरिजीत सिंह की आवाजों में गीत। फिल्म है जवान।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

तू झूठी मैं मक्कार, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं निकी कत्ता गांधी और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में।

102.9 मॉर्निंग हिट्स। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:15 होने को हैं। अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से बस अब से कुछ ही देर में।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और अम्बेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
1: प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने विगत 5 मई को बांदा पहुंचकर स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शिक्षा मित्र सम्मान कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के डेमो चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि
2: जो शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये कल के भारत के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, सजाने का।

0: की कैशलेस सुविधा भी दी है, जिसको लेकर शिक्षा मित्र के मन में सरकार के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड में इस समय पारे का कहर चरम पर है। आसमान से बरसती आग के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वैसे तो अप्रैल माह के बाद ही यहाँ पारा 45 के ऊपर पहुंचता था, लेकिन इस बार अप्रैल से ही अत्यधिक गर्मी की शुरुआत हो गई थी, जिसके चलते लोग घरों पर दुबक कर बैठ गए हैं और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के प्रकोप से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और बहुत मजबूरी होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों से बांदा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से तापमान में कुछ कमी आई है, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। बीते साल भी प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा बांदा जनपद का ही था। वहीं ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अस्पताल में डायरिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। खासकर बच्चे गर्मी की चपेट में अधिक आ रहे हैं। जनपद में गर्मी से निपटने के लिए प्रशासन भी चौकन्ना है। बांदा के जिला अधिकारी अमिता शेरी ने बताया कि
1: हीट वेव में जिला प्रशासन पूरी अपनी कमर कसे हुए है। पिछले कुछ समय से बांदा जिला प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का सबसे गर्म जिला उभर कर आ रहा है। लोगों ने जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल अपनी टीम्स तैयार की हैं, जो उनको टेक केयर करेंगी। इसके अलावा स्कूल के टाइमिंग्स हम लोगों ने चेंज किए हैं। शहर के अंदर भी शेड और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। बहुत जरूरी हो तो ही निकलें और अपने को कवर करके लाइट क्लोथ्स में तब वहां पर जाएं।
0: जनपद में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग और दस्तक अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत संचारी रोग से संबंधित बीमारियों जैसे मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और वायु जनित रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर उन्हें बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी व जनपद की जिला मलेरिया अधिकारी पूजा हिरवार ने बताया कि संचारी रोग अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अभियान है। यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया गया। इस अभियान में संचारी रोग से संबंधित, जिसमें मच्छर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के साथ ही वायु जनित रोग भी आते हैं, इन रोगों से बचाव के लिए इस अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। बांदा में साइबर अपराधियों द्वारा एक बड़ा घोटाला करने की साजिश रची गई, लेकिन बैंक मैनेजर की सतर्कता से मामला पकड़ में आ गया और इन अपराधियों की साजिश नाकाम हो गई। साइबर अपराधियों ने मुख्य विकास अधिकारी के खाते से नेट बैंकिंग के जरिए 1,68,00,000 रुपए निकालने का प्रयास किया। साइबर ठग ने अपने को DRDA का परियोजना निदेशक बताते हुए बैंक मैनेजर को मुख्य विकास अधिकारी के पैसे निकालने के लिए फोन किया। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति बैंक की शाखा में पहुंचा और खुद को विभागीय कर्मचारी बताते हुए खाते से संबंधित दस्तावेज जमा किए, जिनमें CDO समेत कई अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगी हुई थी। शाखा प्रबंधक को कागजात और प्रक्रिया पर संदेह हुआ तो उन्होंने गहन जांच शुरू की, जिसमें सभी दस्तावेज फर्जी लगे, जिसके बाद तत्काल शाखा प्रबंधक ने उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए पुलिस को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस के बैंक पहुंचने से पहले ही सातिर अपराधी वहां से फरार हो गए। बाद में DRDA के परियोजना अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV की मदद से पहचान कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है।
2: जनपद बांदा PDDRDA से प्राप्त तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम थाना बांदा में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साइबर अपराधियों के द्वारा PDDRDA के द्वारा एक संचालित खाते को इंटरनेट बैंक में लेकर के उसके खाते में पैसा निकालने का दुष्प्रयास किया गया है। ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों की जागरूकता और बैंक के अधिकारियों की सतर्कता तथा साइबर पुलिस के सहयोग से जो खाते में लगभग 1,68,00,000 रुपए था उसको बचाया गया है। विवेचना की जा रही, साक्ष्य संकलन कर और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके विवेचना का विधिक निस्तारण किया जा रहा है।
3: बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
4: अंबेडकर नगर में ईसा प्रिया ने जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ईसा प्रिया 2016 बैच की IAS है। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और अन्य आवश्यक जानकारी ली। नवागत जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन, शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी जवाबदेह एवं जन केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं IPS अफसर प्राची सिंह ने अंबेडकर नगर के SP पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के सफल संचालन के दृष्टिगत जनपद अंबेडकर नगर में स्वगणना अभियान को व्यापक रूप से संचालित किए जाने के लिए जिलाधिकारी प्रमुख जनगणना अधिकारी ईसा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला समन्वय समिति तथा विभागवार नामित प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। इससे पूर्व आमजन की सुविधा के लिए 7 मई 2021 से मई जनवरी 2026 तक 15 दिवसीय स्वगणना अवधि निर्धारित की गई है। इस अवधि में नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभिन्न वर्गों तक अधिकतम

0: सुनिश्चित करने के लिए विभागवार निर्धारित रणनीति के अनुसार व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को डिजिटल स्वगणना से जोड़ते हुए अभियान को सफल बनाया जाए। स्वगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण में नागरिकों को https://sc.census.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश का चयन करते हुए कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन करना होगा। इसके पश्चात परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज कर परिवार पंजीकरण किया जाएगा। ध्यान रहे कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही परिवार के लिए किया जा सकेगा तथा पंजीकरण के बाद परिवार के मुखिया का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। द्वितीय चरण में नागरिक अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करेंगे। इसके बाद जिले, गाँव, नगर एवं स्थानीय क्षेत्र का विवरण भरना होगा तथा मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करना होगा। लाल मार्कर को सही स्थान पर स्थापित कर निवास की पुष्टि की जाएगी, जिससे आवास की सटीक पहचान सुनिश्चित हो सके। तृतीय चरण में नागरिकों को जनगणना प्रश्नावली भरनी होगी। प्रश्नावली में मकान सूचीकरण एवं परिवार संबंधी आवश्यक जानकारियां दर्ज की जाएंगी। पोर्टल पर उपलब्ध आवश्यक सूचना एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQS की सहायता से प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। जानकारी भरने के बाद पूर्वावलोकन स्क्रीन पर दर्ज विवरण की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जा सकेंगे। पूर्ण संतुष्टि के बाद अंतिम प्रस्तुतिकरण फाइनल सबमिशन करना होगा। अंतिम प्रस्तुतिकरण के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कार्यालयों में स्वगणना हेल्प डेस्क भी बनाए जाने के निर्देश दिए।
1: जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 7 मई से लेके 21 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त जो इस जनपद के गणमान्य लोग हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है, जो माननीय गण हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है, और जितने भी यहाँ अधिकारी हैं जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे, उन सबसे अनुरोध किया गया है कि वो ये इंश्योर करें कि समस्त लोग अपने सेल्फ एन्यूमरेशन को सेंसस की जो वेबसाइट है उस पर उसको फीड करके अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कराएं। इसको हम लोग एक व्यापक अभियान के रूप में चलाएंगे और उसके बाद 22 तारीख से लेकर आगे फिर उसका एन्यूमरेटर्स के द्वारा जनगणना की कार्रवाई की जाएगी। समस्त कार्यालय इंक्लूडिंग कलेक्ट्रेट एक सेल्फ एन्यूमरेशन हेल्प डेस्क बना लें, जिसमें जो लोग ट्रेन किए गए हैं एन्यूमरेशन कराने के लिए, उनके द्वारा उस कार्यालय के समस्त कर्मचारी अधिकारियों का सेल्फ एन्यूमरेशन कराने में सहयोग किया जाए और व्यापक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें प्रतिभाग किया जाए।
0: अम्बेडकर नगर में शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया। सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के बाद जिले में 1911 शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिला है। अम्बेडकर नगर में बाढ़ आपदा से प्रभावित ढंग से निपटने, जनहानि एवं धनहानि को न्यूनतम रखने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ईसाप्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाढ़ पूर्व तैयारियां, राहत प्रबंधन, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों तथा कटान रोधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अम्बेडकर नगर में बाढ़ से प्रभावित जिन किसानों की खरीफ की फसल नुकसान हुई थी, उन्हें फसल बीमा का लाभ मिला है। जिले में लगभग 4000 ऐसे किसान हैं जिनका नुकसान हुआ था। फसल बीमा की तरफ से इन किसानों को 53,80,000 रुपए वितरित किया गया है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:25 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए प्रेरक प्रसंग। आज का प्रसंग अकबर इलाहाबादी के जीवन से संबंधित है।

बात मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी के जीवन की है। उनके समकालीनों का कहना था कि उनमें जिंदा दिली इस कदर समाई हुई थी कि वो विकट परिस्थितियों में भी हास परिहास का वातावरण पैदा कर देते थे और अपने रंगों से सबको सराबोर कर देते थे। वृद्धावस्था थी, आंखों की रोशनी कुछ कमजोर हो चली थी तो उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ गया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने आंखों पर पट्टी बांधी और अपनी फीस लेकर चलते बने। थोड़ी देर बाद

कि साहबजादे हशरत हुसैन कमरे में दाखिल हुए और अपने वालिद का हालचाल पूछा। ऐसे मौके पर भी अकबर इलाहाबादी परिहास करने से ना चुके। उन्होंने जवाब देते हुए साहबजादे को ये शेर सुनाया, रोशनी आए तो हम देखें कहीं अपना हिसाब, वो तो 200 ले गए आंखों पे पट्टी बांध के। ऐसे जिंदा दिल शायर थे अकबर साहब, जो उदास दिलों को भी हंसा देने की कला जानते थे। अकबर इलाहाबादी हर दिल अजीज थे। हास्य व्यंग के जरिए समाज की उन्होंने खूब खबर ली। उनके व्यंग श्रेष्ठ होते थे, प्रभावपूर्ण होते थे और गाहे बगाहे वो महफिलों की जान बन जाते थे। 1911 की बात है, इलाहाबाद में एक प्रदर्शनी लगी थी। देश के कोने कोने से लोग उसे देखने आए थे। मशहूर गायिका और नर्तकी गौहर जान भी कलकत्ता से आई हुई थी। गौहर जान ने श्रोताओं से भरे हुए खचाखच हॉल में अकबर की एक गजल बड़े ही अनूठे अंदाज से सुनाई। श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठे। अकबर साहब के एक दोस्त ने गौहर जान की गायकी की इस अदा पर अकबर की जब प्रतिक्रिया पूछी तो अकबर ने निराले ढंग का ये शेर कह सुनाया, खुश नसीब आज कौन यहाँ है गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। शायर डॉक्टर इकबाल आमों के बहुत शौकीन थे, इसलिए उनके जिगरी दोस्त और चाहने वाले उन्हें यहाँ से अच्छे अच्छे आमों का पार्सल भेजा करते थे। एक बार जब वो लाहौर में थे तो बनारस के लंगड़ा आमों का पार्सल मिला, जिसे भेजा था मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने। डॉक्टर इकबाल ने उन्हें आमों के पार्सल के लिए शुक्रिया अदा किया, वो भी एक मजेदार शेर के रूप में, तेरे फैज मसीहाई का है ये सब असर, अकबर इलाहाबाद से लंगड़ा चला और लाहौर तक पहुंचा।

0: अभी आप सुन रहे थे अकबर इलाहाबादी के जीवन पर आधारित प्रेरक प्रसंग।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से बस अब से कुछ ही पलों में।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सुनने वालों को शमीम का आदाब। हजरात, उर्दू अदब की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त की गर्द में दबने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ मजीद निखर कर सामने आते हैं। इन्हीं में एक नाम ऐसा है जिसने समाज के उन चेहरों से नकाब नोश डाले जिन्हें देखना दुनिया को गंवारा न था। हम बात कर रहे हैं सआदत हसन मंटो की। मंटो जिन्हें किसी ने फूहश निगार कहा तो किसी ने बागी, लेकिन आज जब हम अहद जदीद की पेचीदा मसाइल, इंसानी नफ्सियात की गुत्थियों और माशरती मुनाफिकतों का जायजा लेते हैं तो मंटो की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती है। जदीद दौर में मंटो महज अफसाना निगार नहीं बल्कि एक ऐसी खुली आंख है जो हमें सच्चाई का सामना करना सिखाती है। मंटो के किरदार आज भी हमारे आसपास सांस लेते हुए महसूस होते हैं। आज उनकी योम विलादत है और इसी को जहन में रखते हुए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है प्रोफेसर अली अहमद फातिमी को। समाप्त करिए मकाला

करती है और अक्सर मुतखालिफ रवैया अपनाकर एक अलग राह अख्तियार करती है। शायद यही वो नाजुक मोड़ है जहां मंटो तरक्की पसंद अफसाना निगारों से अलग हो जाता है और उसकी समाजी हकीकत निगारी भी मुख्तलिफ और मुनफरिद हो जाती है। जो लोग सिक्का बंद समाजी हकीकतों और इखलाकी रवैयों से अपने आप को अलग नहीं कर पाते, अक्सर वो इस बात को समझ नहीं पाते कि जिंदगी इतनी हसीन नहीं है जितनी कि आदर्शवादी अपने तखय्युल में सजाते हैं, हालांकि उतनी भयानक और मायूस कुन भी नहीं है जितनी बास कुनूती और अफसोदर दिल करार देते हैं। बकौल एच फॉस, सच्ची हकीकत तो इन दोनों के दरमियान एक कड़ी होती है। खलाकाना व फनकाराना हकीकत वो अदबी करिश्मा है जो इंतखाब और तखलीक के हवालों से अपने असल रूप को कारीन के सामने पेश करती है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग तखलीक की सतह पर हकीकत को कोरे आदर्श या कोरे आदर्श को ही हकीकत मानते हैं लेकिन तकल्लुफ महसूस करते हैं। उसकी वजह यही है कि हकीकतों के अनेक रूप होते हैं, वो साबित होती है और सयाल भी, वो साकित होती है और फ़ाल भी। किस फन और कौन सी हकीकत, कौन सी शय अहम है और कौन सी गैर अहम है, ये तय करना भी एक मुश्किल काम होता है। बाबू गोपीनाथ, मोहम्मद भाई, ईश्वर सिंह या मंगू कोचवान, इन बुरे और मामूली आदमियों में अचानक नेकी का फरिश्ता जाग उठना और सफ़ेद पोशों का बातिन स्याह हो जाता है। शरीफ इंसान में शराफत और जलील इंसान में जलालत तो सभी देखते हैं, लेकिन बुरे से बुरे इंसान में इंसानियत और अच्छे इंसान में खवासत देख पाना और दिखला पाना एक ऐसी पेचीदा हकीकत यानी कॉम्प्लेक्स रियलिटी की तलाश है जो किसी तरह भी आसान नहीं। ये वो फेल मुहाल है जो तलवार की धार पर चलने के मुतरादिफ है, किरदार मर्द के हों या औरत के। मंटो के यहाँ ऐसे मामूली बिखरे और पामाल किरदारों की भीड़ है, लेकिन इसमें चौंका देने वाली बल्कि रोंगटे खड़ी कर देने वाली हकीकतों की नई दुनिया, नई गुत्थियाँ, इंसानी नफ्सियात की पेचीदा तर उलझने और अजियतें जज्ब पैवस्त हैं। मंटू की यही हयात है और यही कायनात और यही जमालियात भी। मंटू के जज्बात व फसादात और जिन्स और जिस्म को भी अलग करके देख पाना मुश्किल है। एक सच ये भी है कि मंटू की समाजी हकीकत नगारी में एक बगावत, जिद और तलखी थी। कुछ उसके जाती हालात भी ऐसे थे जिसने उसे तलख बना दिया था। कुछ ये भी कि 20वीं सदी की चौथी और पांचवीं दहाई तक पहुंचते पहुंचते क्लासिकियत और रोमानियत के खिलाफ वाकियत निगारी और माशरती हकीकत निगारी का एक नया रुझान शुरू हो चुका था। अंगारे के अफसाने, प्रेमचंद के आखिरी दौर के अफसाने वगैरह तक एक नए एहसास शऊर का बिगुल बजा चुके थे। यह अलग बात है कि नई हकीकत निगारी के इस रुझान में मंटो जाती व माशरती असबाब अवामिल मुहरिकात के बिना पर सबसे अलग था, शायद सबसे ज्यादा जाहरे और शफाक भी, जहां फर्द और माशरा दोनों की तलखियां व कमजोरियां एक हो जाएं, जिद और जुर्रत फिक्रफन का नागुजीर हिस्सा बन जाएं, वहीं फनकार का भी फर्द व माशरे के तई अमीक मुतालिया मुशाहदा अशिया अफराद से करीब तरीन रिश्ता उस्तवार कर लेता है, क्योंकि वो अगर ऐसा न करे तो अफसाना निगार अपने जहन और अफसाना अपने मरकज से बिखर जाए। इसलिए कि अफसाने की शक्ल या फन मन माने ढंग से इर्तका नहीं पाते बल्कि नफ्स अफसाना से जज्बाती गहरे तौर पर वाबस्ता होकर नमू पजीर होते हैं। किसी फन की कदर शनासी में समाज और सियासत का बिल वास्ता या बिला वास्ता दखल तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा उसका दारोमदार उस हकीकत पर होता है जिसे फनकार ने दोनों हवालों से अपने बातिन में जज्ब पैवस किया हो और फिक्र फन का हिस्सा बनाया हो। अगर कोई फनकार सही मानों में तरक्की पसंद और हकीकत पसंद है तो उसका ताल्लुक निचले तबके और उसके किरदारों से मुखलिसाना व हमदर्दाना है तो इस हकीकत को समझने और समझाने के बेशुमार रास्ते खुल जाते हैं। यह अलग बात है कि बाज राहें राह रास की मिसदाक होती हैं और बात पर गुमराही का इल्ज़ाम लग जाता है, लेकिन ये दोनों हकीकतें एक ही सिक्के के दो रुख होती हैं। अब ये सवाल उठता है कि हकीकतों के इस नाजुक फर्क को किस कदर और किस तरह गिरफ्त में लिया जाए, हकीकत का सच्चा और तीखा इरफान किस तरह हासिल किया जाए। ये बहस तलब मसला है और गौर तलब भी। मंटो से मुतालिक वकार अजीम, हसन अस्करी, मुमताज़ शीरी से लेकर वारिस अलवी तक ने बड़ी जर्फ निगाही के साथ मंटो की हकीकत निगारी को समझने की कोशिश की है, लेकिन सवाल हनोस कायम है कि क्या मुकम्मल मंटो समझ में आ गए या मंटो की तमाम हकीकतें

0: तह दर तह आश्कार हो गई। जिस दिन मुकम्मल मंटू समझ में आ जाएंगे उसी दिन मंटू की मौत हो जाएगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जैसे जैसे समाज की नाहमवारियाँ नाइतफाकियाँ कमींगी हरमजदगी बढ़ती जाएगी, मंटू की तहदार और पेशदार मानवियत के दर वाह होते चले जाएंगे। बड़े फन और फनकार की यही असल पहचान होती है कि हर दौर में उसकी पहचान अपने आईने में होती है, वो हर अहद का साथ निभाता है। मंटू की अजमत का यही राज है। क्या वजह है कि आज के अफसानों में इंसान दोस्ती हकीकत निगारी का ये रंग नजर नहीं आता और वो किरदार भी नजर नहीं आते जो सिर्फ मंटू के ही नहीं पूरे अफसानवी अदब के लाजवाल किरदार हैं। हकीकत निगारी का वो रुझान भी नहीं रहा जो मंटू और हम असरों के दरमियान था। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि आज के अफसानों में अमंगू कोचवान मम्मद भाई गोपीनाथ कालू भंगी घेसु माधो जैसे मर्द किरदार और धनिया लाजवंती सौगंधी मुजिल आपा जैसे औरतों के किरदार दूर दूर तक नजर नहीं आते? उर्दू अफसाने के ये सारे किरदार कहाँ गायब हो गए? क्या इस पर गौर करने की जरूरत नहीं? और इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि महज लफाजी लफ्जों के गोरख धंधे या लम्हाती सिचुएशन पेश करने से अच्छे अफसाने और पुरअसर किरदार जन्म नहीं लेते। एक ख्याल मबनी बर हकीकत है कि आज के बेशतर अफसाने समाजी हकीकतों व पेचीदियों को नहीं बल्कि उन लम्हाती और अक्सर सतही लम्हों का अक्स पेश करते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उर्दू अफसानों में पेचीदा समाजी हकीकत निगारी क्यों रुखसत हो गई, किरदार क्यों गायब हो गए? मंटू की समाजी हकीकत निगारी सवाल करती है। मुश्किल यह है कि इस सवाल का जवाब भी आम हकीकत आम जिंदगी आम जद्दोजहद को समझे और उसमें शामिल हुए बगैर नहीं मिल सकता, जैसा कि खुद मंटू जला और पिघला था और सुकरात की तरह जिंदगी का जहर पी गया था। तभी तो मुमताज शीरी लिखती हैं कि माशरे की बदी बदसूरती और गंदगी को उसने बहुत करीब से देखा और जिंदगी के जहराब को इस तरह चखा कि उसकी तलखी कामोदहन से गुजर कर रगोपय में उतर गई। जिंदगी के मुशाहदे और तजुर्बात में मंटो ने अपने आप को मोमी शमा की तरह पिघलाया और जिंदगी के ऐसे पहलुओं को पूरी जुर्रत बेबाकी और बेरहम सदाकत के साथ पेश किया जिन्हें छूने की हमारे यहाँ बहुत कम अदीबों की जुर्रत हो सकी।
1: अहदे जदीद में सआदत हसन मंटो की अहमियत, अभी आप इस मौजू पर प्रोफेसर अली अहमद फातिमी से मकाला समाअत फरमा रहे थे और अब कलाम शायर के तहत समाअत फरमाइए आफताब अहमद अंसारी से उनका कलाम।

0: उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपने मुन्ने खां से तबले पर झपताल सुनी। सारंगी पर संगत की थी जाकिर खां ने। यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का फरमाइशी प्रोग्राम आपके अनुरोध पर।

ये वादा रहा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। अनुरोध आप सभी श्रोताओं का था। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। सरगुजा मेनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा और आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन, कुमारी वली और इनके परिवार के सभी लोग। जेल रोड मथुरा के हमारे श्रोता हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्ला आसमा बेलदार। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी, शमा, मिक्की, बुशरा और आसिम। इन्हीं के साथ जिला अस्पताल के पास से गजन खान, शमा परवीन, शमशाद अली अजम, गुलफशां, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी। परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम खान। मीरा सराय बदायूं के हमारे सुनने वाले हैं आफरीन खान और जमीर खान। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विर्क, जयदेव विर्क और मीका विर्क। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमड़े, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से फरमाइश भेजी है राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, बबीता और अंशु गौतम ने। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभय, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय। पंडित नंगला बाईपास कोहिनूर तिराह के पास से अख्तर हुसैन, बहरुन निशा, असलम हुसैन, महमूद हसन और इन्हीं के साथ बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुइना मुन्नी, पवित्रा, आंचल आकांक्षा, आकाश, विक्की, दक्ष, छवि, रुद्र, खमानी सिंह और मझोली से हीरावती देवी। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हीना कौसर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। इन्हीं के साथ दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, और शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत। पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्र प्रभा वाड़ोदे। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, रही सरिता गवाणकर और प्रिंस एकांश गवाणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर और प्रणीता। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, श्वेता, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर के साथ टुक टुक। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से वंदना मराठा, गणेश दादा, कार्तिक, परी, संजना, मालती, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नास, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नास। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज परवीन। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और पांगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से

कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता और समस्त बत्ता परिवार। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और रेयांश ठाकुर। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। लेवाखेल मोहल्ला चांदुर बिस्वा से नारायण खर्चे, ललिता, परी, गणेश, कार्तिक, देविका कुमारी, खुशी और वाणी। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश। मेन रोड तलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा, सनिल, साहिल और सुजाता पोहरकर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के हमारे श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप और अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। और जामरून से दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी और गणेश। आप सभी के लिए आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में, फिल्म है जहरीला इंसान।

आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह के गाए फिल्म जहरीला इंसान के इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अपर्णा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आपके अनुरोध पर अभी आपने सुना फिल्म संगीत का ये फरमाइशी प्रोग्राम। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
1: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
3: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
1: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
3: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
3: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
3: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
1: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
3: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टान

0: मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं?
0: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
0: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
1: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
0: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
0: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink
9: and mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: Do it again, please.
3: Trin, trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friends move aside.
3: Makes my friends move aside.
2: The seat is blue in color.
3: The seat is blue in color.
2: The tires and pedals are black.
3: The tires and pedals are black.
2: Sometimes fast.
3: Sometimes slow.
2: But my bicycle is always on track. To keep my bicycle moving.
3: All I need is some air.
2: I put on my little helmet. And I go happily everywhere. Well, children, you have now heard this poem and recited with me. How did you find it? Isn't it lovely?
3: Yes, sir. It's lovely.
2: So now let's listen.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसाइकिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में

0: जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।

और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर, सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। साहब,
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह, निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर!
4: सर,
3: ये तो गया, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर!
4: सर, सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर 2 टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं।

0: और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम। सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा की कड़ी संख्या 10।

प्रस्तुत है आकाशवाणी के लिए डॉट स्पॉट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध असमी लेखिका इंदिरा गोस्वामी के उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा। रूपांतरकार हैं सुधांशु गुप्ता और राजीव गुप्ता। निर्देशक हैं कैलाश भूटानी।

इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित दक्षिणी कामरूप की गाथा एक अनूठी और असाधारण अनुभव यात्रा है। तीन विधवाओं के अभिशप्त जीवन के इर्द गिर्द घूमती इस अनुभव यात्रा में 19वीं शताब्दी के आरंभिक काल से लेकर ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने तक का परिवेश दर्शाया गया है। अमरंगा सत्र का भावी गोसाई युवा इंद्रनाथ इन तीनों विधवाओं का एकमात्र सहारा है। इन विधवाओं में एक उसकी छोटी बहन है, दूसरी उसकी बुआ और तीसरी उसकी चाची है। धारावाहिक में एक ओर जहां इन युवा विधवाओं की वेदनाओं को दिखाया गया है, वहीं सत्र के अधिकारियों के विलासपूर्ण जीवन और तड़क भड़क वाले जीवन के पतन को भी चित्रित किया गया है। असमी परिवेश, मार्मिक संवाद और दिलचस्प घटनाक्रम धारावाहिक को जीवंतता प्रदान करता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है दक्षिणी कामरूप की गाथा की 10वीं कड़ी।

0: लीजिए मालिक, गाड़ी लगा दी है। क्या मालकिन के साथ कोई नहीं जाएगा?
1: क्यों, तुम्हें इससे क्या मतलब? कोई जाए या ना जाए,

0: जितना कहा जाए उतना करो, समझे?
1: आप गलत समझे मालिक, मैं तो इसलिए पूछ रहा था, एक तो वो पागल हाथी इधर उधर घूम रहा, और दूसरे वो भूत जो अक्सर लोगों का सामान छीन लेता है, उन्हें डरा के भगा देता है।
0: देखो उस भूत की तुम चिंता मत करो
1: जी,
0: और जहां तक हाथी की बात है वो अब घने जंगल में चला गया है, और वैसे भी थोड़े रास्ते तक मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ही।
1: ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन इतना जरूर बताए देता हूं कि हाथी जंगल में नहीं है, यही आसपास ही है, ये खबर आज सवेरे ही मिली है।
2: अरे नानी चंपा, सुना है दुर्गा गोसाई ने अपनी ससुराल चिकार हाटी जा रही है। वो देखो देखो देखो, बैलगाड़ी पर सामान रखा जा रहा है उनका।
3: नजर तो मुझे भी आ रहा है।
2: देखो इंद्रनाथ यहीं आ रहा है, अपना सिर तो रख ले।
3: प्रणाम छोटे गोसाई।
2: प्रणाम छोटे गोसाई।
0: प्रणाम प्रणाम। कहो क्या हाल है तुम दोनों बहनों के? और नानी चंपा तुम, लगता है तुम्हारा अपने ससुराल में जी नहीं लगता
3: जी। वो
0: तुम्हें इस गांव से और अपनी बहन से बहुत लगाव है।
3: इंद्रनाथ बाबू, क्या दुर्गा गोसाई जा रही है? उन्हें कोई लेने तो आया नहीं, क्या जाने का उनका ये अपना फैसला है?
0: देखो तुम्हारे इन सवालों का अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है, अभी मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ।
4: हरी भूमि, इंद्रनाथ से क्या पूछती है? ये बात तो पूरे गांव में फैली है कि ये फैसला खुद दुर्गा का है, और वो ये फैसला ले भी क्यों नहीं? अरे देख नहीं रही कैसी बुढ़िया हो गई है वो? अपने पति की अस्थियां नदी में प्रवाहित नहीं कर सकी, इसलिए इतनी दुबली हो गई है। देखो कैसे कंकाल सी लग रही है। अरे इसका दुख ही इसे खा गया।
2: अरे चाची, सुनने में तो ये आया है कि इसे तपेदिक रोग भी हो गया है।
3: हाँ,
2: इंद्रनाथ ने इन्हें अस्पताल में दाखिल कराने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने सुनी नहीं।
3: हाँ,
2: और अपने कमरे में जिंदा लाश की तरह पड़ी रही, ना ढंग से खाती ना ढंग से पीती।
3: देखो देखो वो देखो, दुर्गा दुर्गा अंदर से बाहर आ गई।
4: अरे ये तो बड़ी गोसाइन की ओर जा रही है। बेचारी कितनी दुबली हो गई है। जब विवाह हुआ था तो कितनी सुंदर थी, आज इसकी हालत को देखकर तो रोना आता है।
3: सच
5: बड़ी गोसाइन, मुझे क्षमा कर दीजिए, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो।
6: और कुछ मत कह, मुझे और लज्जित न कर। तेरे भाग्य में क्या लिखा था हमने तो सोचा भी नहीं था। और देखा, तूने अपनी आंखों से संकट के दिन देखे हैं, इसलिए सारा इल्जाम मुझे मत देना।
5: नहीं बड़ी गुस्सा,
6: नहीं देखो दुर्गा, तुम एक धार्मिक और ईश्वर से डरने वाली स्त्री हो, इसलिए तुम जो चाहो मुझे कह सकती हो।
5: नहीं बड़ी गोसाइन, कोई बात नहीं।
6: गिरी बाला, अरे इतनी चोरी छिपे अंदर क्यों जा रही हो? देखो गिरी बाला, तुम्हारी बुआ चिकार हाटी अपनी ससुराल जा रही है।
5: गिरी बाला आओ, इधर आओ ना मेरे पास, मुझसे इतना बचो नहीं, अब शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी।
3: मैं ये दृश्य देखना नहीं चाहती थी, तुमने मुझे क्यों बुलाया बुआ? मेरी अच्छी बुआ, ईश्वर ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बस।
6: अरे चंपा, इतनी दूर क्यों खड़ी हो? जरा गिरी बाला को

0: लेकर जाना।
1: जी बड़ी गोसाइन, जैसी आपकी आज्ञा।
2: कैसी है भागन हूँ मैं, जाते जाते भी दुख देकर जा रही हूँ। खेरी बाला के साथ मैं रुक सकती तो अच्छा। बड़ी गुस्साई, चलती हूँ।
0: दुर्गा, कम से कम एक बार छोटी गुसाइन से मिल लेती।
2: नहीं नहीं, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। चलती हूँ बड़ी गुसाइन, अब मत रोकना मुझे।
0: अच्छा दुर्गा, अच्छा, हमें क्षमा करना दुर्गा। तुम्हारा बाकी जीवन सुख से बीते, इसकी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
3: वो देखिए पुजारी जी, वो जा रही है दुर्गा बेचारी बैलगाड़ी में बैठकर। जा रही है बेचारी अपने कुंठित भाग्य को लेकर। नहीं, अब यह बचेगी नहीं, तपेदिक तो इसे खा कर ही रहेगा।
4: हाँ भैया, इसका सब कुछ चला गया है, इसका सोना, इसकी जमीन। ये बेचारी अब अपनी सूखी हड्डियों को आराम देने के लिए चिकार हाटी जा रही है। हर कोई कह रहा है कि जमीन की हदबंदी होने वाली है, गुसाई लोग बड़ी जल्दी में अपनी जमीन बेच रहे हैं। चिकार हाटी के गुसाई ने भी इसी तरह दुर्गा की जमीन बेच डाली है।
3: दुर्गा यहाँ रहती रही, इसीलिए तो ये सब हुआ है, नहीं तो आज ये सब थोड़े ही होना था। चलो जी, अब तो वो खुद ही यहाँ से जा रही है, देखो अब क्या होता है। माँ,
0: गुसाई।
5: माँ, मैं दुर्गा बुआ को आधे रास्ते तक छोड़ने जा रहा हूँ।
0: ठीक है गुसाई, चले जाओ। तुम्हारी बुआ है, तुम्हें तो घर तक छोड़कर आना चाहिए।
5: बस माँ, मुझे मालूम है कितना और कहां तक छोड़ना है।

0: कभी कितना मान था मेरा यहां पर। बचपन के दिन गुजारे थे यहां। कैसी हरियाली दिखाई दे रही है। मन प्रसन्न किया करती थी ऐसी हरियाली। मेरे साथ मेरी सहेलियां भी हुआ करती थी। कैसे अच्छे दिन थे वो।
1: जा रही हो दुर्गा गोसाई? जाओ कुछ पालकी पर जाते हैं, कुछ हाथियों पर। तुम अकेले ही बैलगाड़ी पर जा रही हो? जाओ, हर आदमी अपना अपना भाग्य लेकर आता है। जहाँ तुम हो वहाँ तुम नहीं हो बल्कि तुम्हारा भाग्य है, और जहाँ तुम्हारा भाग्य है वही तुम हो।
2: पागल है ये, आप इस पर ध्यान ना दें, इसको कोड है इसीलिए गांव से बाहर कर दिया है।
0: किस किस का मुंह बंद करूंगी मैं, किस किस को समझाऊंगी।

0: कह रहा है वो, ठीक ही तो कह रहा है।
1: गिरी
0: बाला इतनी दूर से भागी हुई आ रही है। रोको, मेरे गिरी बाला आ रही है।
2: गिरी बाला, लौट जाओ, मैंने कहा लौट जाओ, हम मिलने से कोई फायदा नहीं है। अरे बुआ को तो जाना ही था।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी।
2: मैं ऐसे बाज नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें बात घर छोड़ जाऊं। चलो मेरे साथ।
3: मालकिन चले चले,
0: चलो अब वही क्या है रुकने के लिए।
3: जी
0: चलो।
2: कोचवान
4: जी,
2: मैं गिरिवाला को घर छोड़ के वापस आ रहा हूँ, तुम आहिस्ता आहिस्ता चलो।
4: जी मालिक।

0: Buah?
1: Buah?
2: आ गए इंद्रनाथ, छोड़ा है गिरी बाला को।
1: जी।
2: सुनो, तुम भी लौट जाओ, अब मुझे अकेले ही जाना है, यही मेरी नियति है। और सुनो इंद्रनाथ, मेरा आशीर्वाद है, तुम मारा भीटा वाली जमीन फिर पा जाओगे, तुम अपने परिवार की प्रतिष्ठा फिर वापस लाओगे, पूरा विश्वास है मुझे तुम पर। और देखो, अगर मैं मर गई तो तुम जरूर आना
1: बुआ,
2: और मेरा अंतिम संस्कार करना।
1: बुआ, बुआ ऐसा क्यों कह रही है? तुम्हें कुछ नहीं होगा बुआ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाने में असफल हूँ। बुआ, जब तुम ठीक हो जाओगी ना, तो तुम्हें दादा के श्राद्ध के लिए वापस लेवाने आऊंगा, ये मेरा वचन है बुआ।
2: इतना
1: बुआ,
2: बस ये बस है।

0: अच्छा अब मैं चलता हूँ बुआ, अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना बुआ।
1: चले जाओ चले जाओ चले जाओ।
0: बुआ चली गई, कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर जा रही है। हे ईश्वर, बुआ को सही सलामत चिकारा हाटी पहुंचवा देना।
2: अरे
0: ये आवाज तो जगन्नाथ हाथी की है, और वो भी भूसी ओर से है जहां जहां दुर्गा बुआ गई है।
3: इंद्रनाथ, इंद्रनाथ
0: कौन है, कौन है?
3: अरे डरो नहीं इंद्रनाथ, कोई तुम्हारा अपना ही है।
0: ओह मार्क, तुम
3: इस समय तुम्हारे अपने ही तुम्हारे करीब आएंगे।
0: हाँ मेरे अपने ही मेरे करीब आएंगे, और फिर इतनी दूर चले जाएंगे कि लौट कर कभी नहीं आएंगे।
3: इंद्रनाथ, तुम्हें दुर्गा गोसाइन के जाने का बहुत दुख पहुंचा है।
0: दुख किस किस का नाम लू मार्क, किस किस का नाम लू जिसने मुझे दुख दिया। जानते हो सुख का अभाव ही दुख का कारण होता है। जो आपके बहुत करीब हो वही अगर आपसे दूर चला जाए।
3: मैं
0: तो
3: तुम्हारे दुख को समझ सकता हूं इंद्रनाथ, जो इस वक्त तुम्हारे ऊपर गुजर रही है वो तुम्हारी नियति है, और नियति बड़ी बलवान होती है इंद्रनाथ। हम केवल उसके विरुद्ध संघर्ष करते हैं बस, और कुछ भी नहीं।
0: इस सांत्वना से कुछ नहीं होने वाला मार्क।
3: देखो इंद्रनाथ, जो लोग भावना के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाते उन्हें अंत में निषाद का सागर अपने साथ बहा ले जाता है।
0: मार्क, क्या तुमने बुआ के चेहरे को गौर से देखा? क्या वो वास्तव में जाना चाहती थी या क्या हुआ? मार्क बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो गए?
3: इंद्रनाथ, तुम इसी पर अभी तक सोचे जा रहे हो?
0: मार्क, मेरे अंदर एक तरह की ग्लानि धीरे धीरे पनपती जा रही है। पता नहीं क्या हूं कि अंदर से सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। खैर छोड़ो छोड़ो ये सब, तुम बताओ तुम्हारा काम खत्म हो गया?
3: नहीं, अभी मुझे काफी काम करना है। मैं भोला गांव जाऊंगा, अफीमचियों के पुनर्वास शिविर में कुछ समय बिताऊंगा, लेकिन
0: हाँ बोलो ना मार्क, चुप क्यों हो गए? बोलो क्या कहना चाहते हो?
3: मैं कह रहा था कि अगर मेरे साथ गिरी वाला काम करे तो काम बहुत तेजी से खत्म हो सकता है। 3-4 पांडुलिपियां ऐसी हैं जिस पर हमने अभी तक कोई काम नहीं किया है। इंद्रनाथ, इसमें तुम्हें कोई एतराज तो नहीं?
0: देखो मार्क, उसके ससुराल वाले उसे ले जाने के लिए आ रहे हैं। वो लोग गिरीबाला के आचरण से खुश नहीं है।
3: क्या ले जाने के लिए आ रहे हैं?
0: अब तुम तो जानते ही हो मार्क, उसके ससुराल वाले बहुत ही संकीर्ण विचारों वाले हैं, और फिर अब उनके लिए मान

0: मर्यादा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है।
1: क्या कह रहे हो इंद्रनाथ?
0: मैं समझ सकता हूँ मार्क, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी भावना को ठेस पहुंची है, मैं जानता हूं इस बात को। लेकिन मार्क, तुम मुझे भी तो समझने की कोशिश करो।
1: लेकिन इंद्रनाथ, क्या उसके लिए हम किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकते जिससे उसका समय अच्छा व्यतीत हो जाए? अभी उसकी उम्र ही क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि
0: तुम यही कहना चाहते हो ना कि हम लोग उसकी कब्र खोद रहे हैं। मार्क, तुम एक यायावर विद्वान हो, तुम ज्ञान की तलाश में भटकने वाले एक घुमंतु हो, तुम्हें यहां बहुत सारे अनुभव हुए होंगे, तो बस तुम गिरिबाला को भी एक अनुभव मानकर चलो।
1: इंद्रनाथ, गिरिबाला इतनी सस्ती नहीं है, वो गोसाई परिवार की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको इस तरह के शब्दों में बांधना ठीक नहीं है। और इंद्रनाथ, तुम्हें तो यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि तुम।
0: बस मार्क, बस, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है। इस बात को मुलम्मा चढ़ाकर मैं तुम्हें नहीं कहना चाहता था कि
1: ठीक है इंद्रनाथ, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि
0: बस अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है मार्क। मैं जो कुछ भी कह सकता था मैंने कह दिया।
1: ठीक है इंद्रनाथ, जाता हूं, लेकिन तुम्हारे अमरंगा सत्र के इतिहास में गिरिबाला का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा, क्योंकि मैं खुद इस इतिहास में गिरिबाला का नाम दूंगा।
0: मार्क,
1: तुमने शायद पहचाना ना हो इंद्रनाथ, लेकिन गिरिबाला में असीम क्षमताएं हैं जिनको मैंने महसूस किया। अच्छा इंद्रनाथ, अब मैं चलता हूं। शायद तुमको मेरी ये बातें तीर की तरह लग रही हों, लेकिन इंद्रनाथ, तुम एक समझदार आदमी हो, इसीलिए मैंने ये बातें तुम्हें बताना उचित समझा। अब मैं चलता हूं इंद्रनाथ।
0: जाओ मार्क, चले जाओ, यही अच्छा है, यही अच्छा है कि तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम भी हमारे इसी भाग्य में लिप्त हो जाओगे। छोड़ जाओ हम सबको अकेला, छोड़ जाओ, मेरा भाग्य तुम क्यों भोगो मार्क, तुम क्यों भोगो। जाओ मार्क, जाओ, चले जाओ, सब चले जाओ।

0: कैसा लग रहा है? मजा आया ना आज? अगर हाथी का डंडा होता ना तो तुम्हें नदी के और आगे तक ले जाती। वो जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी है।
1: अच्छा, मैं तो कभी वहां गई ही नहीं। अरे सुन, ये तो पागल हाथी की आवाज है। लगता है वो हमारे करीब ही है।
2: इधर आ जाओ जल्दी, वरना इस पागल हाथी के पैरों तले कुचल जाओगी। अगर बचना है तो इन झाड़ियों में आ जाओ। चुप रहना, बिल्कुल मत बोलना। इस हाथी के कान बहुत तेज हैं। अगर इसे हमारी भनक तक पड़ गई तो ये हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा।
1: बाबा, वो सब तो ठीक है, लेकिन यार

0: से बैठे हो?
1: वो यही देख रहा है। चुप।
0: लगता है हाथी चला गया। चल चल चल उसे बाहर निकल। ओफो भूमि, आज तो समझो मर ही गए थे। हमें इस बूढ़े बाबा का धन्यवाद करना चाहिए जिसने आज हमें बचा लिया। बाबा कौन हो तुम? झाड़ियों में हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, जरा बाहर तो आ जाओ।
1: देखो मैंने तुम्हें बचा लिया, बस इतना बहुत है।
0: नहीं बाबा, जिसने हमारी जान बचाई है हम उसे देखना चाहते हैं।
2: हाँ बाबा, तुम बाहर क्यों नहीं आ जाते? तुम्हें बाहर आने में क्या आपत्ति है?
1: देखो मैं अगर बाहर आ गया तो तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मुझे देखना भी पसंद नहीं करोगी। इसलिए कहता हूँ बच्चों, यहाँ से अब तुम सीधे घर चले जाओ। बस यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ।
0: बाबा हमें कम से कम एक बार धन्यवाद कहने का मौका तो दो। अगर हम आपको नहीं देख पाए ना तो हम अपने आप को धिक्कारते ही रहेंगे। बाबा
1: देखो मैं अब तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं तो मैं चुपचाप ही चला जाऊंगा।
0: बाबा तुम बाहर नहीं आना चाहते तो हम खुद ही झाड़ियों में आ रहे हैं।
1: नहीं, तुम्हारे आने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही बाहर आता हूँ।
0: ये

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लिए डॉट स्पॉट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा की 10वीं कड़ी। मूल लेखिका इंदिरा गोस्वामी, रूपांतरकार सुधांशु गुप्ता और राजीव गुप्ता, निर्देशक कैलाश भूटानी, संगीत दिया है टिन्नू ने, ध्वनि मुद्रण राजेंद्र नाथ। भाग लेने वाले कलाकार हैं सुचित्रा गुप्ता, वीना होरा, हर्ष बाला, कुमकुम जैन, श्याम अरोड़ा, कीमती आनंद, बीएल टंडन, कमल साथी, एसके बत्रा और बाबला कोचर। तो अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे दक्षिणी कामरूप की गाथा की अगली कड़ी में।
1: अभी आपने सुना धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा की कड़ी संख्या 10। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सोनू निगम द्वारा गाए कुछ लोकप्रिय गीत। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। उन्होंने मात्र 4 साल की उम्र से अपने पिता अगम कुमार निगम के साथ मंच पर गाना शुरू कर दिया था। 18 साल की उम्र में वे गायक बनने का सपना लेकर मुंबई आए और शुरुआती दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी के गानों के कवर गाकर अपनी पहचान बनाई। तो अभी हम सुनते हैं फिल्म चोर मचाए शोर से यह गाना।

सोनू निगम की असली पहचान 1990 के दशक के मध्य में मिली। फिल्म बेवफा सनम के गीत और टी सीरीज की एल्बम किस्मत ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद बॉर्डर और कभी खुशी कभी गम जैसे गानों ने भी उन्हें बॉलीवुड का शीर्ष गायक बना दिया।

सोनू निगम को उनकी रेंज के लिए जाना जाता है। वे शास्त्रीय से लेकर पॉप और रोमांटिक से लेकर दर्द भरे नगमे बड़ी आसानी से गा लेते हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल और तेलुगु सहित 10 से अधिक भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं। उन्होंने सारेगामा जैसी मशहूर रियलिटी शो की मेजबानी भी की, जिसने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। उनकी गायकी के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्हें फिल्म साथिया के टाइटल ट्रैक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें कई फिल्म फेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया।

अभी आपने सुना कार्यक्रम मन भावन, और आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी सोनू निगम द्वारा गाए कुछ लोकप्रिय गीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

हमीर जी गोहिल सर्कल तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत पर्व के तहत धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बना

0: बढ़ाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में गतिरोध जारी रहने के कारण प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत में $100 से अधिक बनी हुई है।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया। श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने का भी आह्वान किया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के साथ वर्चुअल बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि उन्होंने सम्मेलन समिति COP31 की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। फुटबॉल में FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर वर्ष 2025-26 का ला लीगा खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मिनी वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए गुमशुदा व्यक्तियों की सूचनाएं। प्रभारी निरीक्षक थाना बबराला जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि गुलवाहर पत्नी नसरुद्दीन शाह निवासी बाघों के घेर हालपता मोहल्ला यादवान चक्की के सामने कस्बा बबराला जनपद संभल विगत 24 अप्रैल 2026 से लापता हैं, जिनकी उम्र 24 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गोरा, ठोड़ी पर चोट का निशान है, गुलाबी रंग का सूट, गोल्डन ट्राउजर, सैंडल पतले गोल्डन कलर के पहने हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना बबराला जिला संभल प्रभारी निरीक्षक थाना कुटफतेहगढ़ जिला संभल हमें सूचित करते

हैं कि अनेकपाल शर्मा, उम्र करीब 56 वर्ष, निवासी ग्राम भगतपुर, पहली थाना कुढ़े फतेहगढ़, जिला संभल, विगत 26 अप्रैल 2026 से लापता हैं, जिनका रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला, सिर के बड़े हैं बाल, सिर पर लाल गमछा है, हरे रंग की टी शर्ट पहनी है, हल्के काले रंग की पैंट व जूते पहने हुए हैं तथा नीले रंग का बैग है इनके पास। यदि किसी भी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें। मोबाइल नंबर है 7292055671 अथवा तथा थाना कुथे फलेगढ़ जनपद संभल को भी सूचित करें। थाना प्रभारी निरीक्षक थाना केमरी जिला रामपुर हमें सूचित करते हैं कि अरमान, उम्र करीब 15 वर्ष, एक इकहरा चेहरा, पतला वदन, गेहुआ रंग, लंबाई लगभग 5 फीट, विगत 24 अप्रैल 2026 से लापता है, जिन्होंने काले रंग का बनियान, काला तोअर व नीली चप्पल पहनी हुई हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके बारे में कोई इनके संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना प्रभारी कैमरी जिला रामपुर। आइए सुनते हैं अब एक संदेश।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं के अनुरोध पर कार्यक्रम गीत आपके नाम। आप सभी श्रोताओं को दीक्षा कुलश्रेष्ठ का प्यार भरा नमस्कार। तो कार्यक्रम में यह गीत पहला सुनने की फरमाइश की है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बीनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह ने। इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहा है ऊपरकोट मोहल्ला खैन चौरखुट्टी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों ने। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वे गीत है फिल्म बाजार से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अगला गीत सुनने की फरमाइश की है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, साथ ही सुनना चाहा है स्वाति प्रयाग चौधरी ने। इन सभी के साथ इस गीत को सुनना चाहा है गांव व डाकघर निमानाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर ने। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे से उदित नारायण, प्रमिला जैन व उन सभी उनके साथियों की आवाज़ों में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम। कार्यक्रम में यह अगला गीत सुनने की फरमाइश की है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना चाहा है इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां और उल्लाह अकरम नूरजहां ने। राजनांदगांव से इस गीत को सुनना चाहा है याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा ने। जेल रोड रायगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिपा तिवारी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत को सुनना चाहा है हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, चैतिक बीरक और मीका बीरक ने। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है फिल्म बागी से अभिजीत की आवाज़ में। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

अगला गीत सुनने की फरमाइश की है ग्राम नारक कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुनी देवी साहू प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहा है। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। बोराला धड़ा मालेगांव दत्ता से सुनना चाहा है दत्ता घायल सुनीता बाई सानिका और गजानन ने। इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू तस्नीम निप्पी सहानी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। जमशेदपुर से इस गीत को सुनना चाहा है डॉक्टर तस्नीम कौसर डॉक्टर इशिता सहानी डॉक्टर प्रियंका मोदी डॉक्टर सोनम वली और मोहम्मद अफजाल मलिक। इन सब ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है चलते चलते फिल्म से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम। कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की फरमाइश की है रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशूर कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहिन, तूबा आफरीन और शमीम अख्तार अंसारी ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बेटी अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान ने। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है फिल्म दीवार से अलका याग्निक और कैलाश खैर की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की फरमाइश की है मालियान सरगना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जिव्यम जैन और सरथना मेरठ से इस गीत को सुनना चाहा है आदि जैन अंश जैन और भव्य जैन ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है गंज डुंडवारा से समशूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान ने। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है फिल्म दिल्ली 6 से मोहित चौहान की आवाज़ में।

अगला गीत है सात रंग के सपने फिल्म से बाबुल सुप्रियो और प्रिया की आवाजों में। आइए पहले सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

इस गीत को सुनना चाहा था जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला और गायत्री धनजय ने। खुर्दी रोड मानपुर से इस गीत को सुनना चाहा था विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निशा असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन और बीबीपुर से इस गीत को सुनना चाहा था मकसूद हुसैन और नाजिम अली ने। साथ ही दूसरा गीत है वह सुनना चाहते हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। पंजू सराय संभल से इस गीत को सुनना चाहा है छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी ने। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है फिल्म स्वीटी वेट्स एनआरआई से पलाश मुंजल, पलक मुंजल और आतिफ असलम की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत आपके नाम को यहीं संपन्न करने की दीजिए इजाजत अपनी साथी दीक्षा कुलश्रेष्ठ को। नमस्कार। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया।
1: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में पर्यटकों को ले जा रहे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 885 अंक गिरकर 76,443 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम धरती गाती है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे प्रीति शर्मा द्वारा गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम आंचल का समय रहेगा 1:30। आज इस कार्यक्रम में भेंटवार्ता परिचर्चा होगी, किस परिवार में बच्चे संस्कारवान होते हैं, संयुक्त या एकल परिवार। कार्यक्रम सुनहरा दौर में आज आप सुनिएगा 60 के दशक के फिल्मी गीत 2:30 पर। आज शाम कार्यक्रम का समय रहेगा 5:00। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकते हैं 5:15 पर। गुमशुदा व्यक्तियों की सूचनाएं प्रसारित होंगी 6:05 पर। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा 6:10। 6:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें चर्चा होगी मिट्टी की उर्वरता और खाद का सही उपयोग। भेंटवार्ता होगी बेल वाली फसलों में कीट व रोग प्रबंधन। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम होगा ब्लॉक उज्जयानी बदायूं से। 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम विविधा में, वार्ता होगी तकनीकी के साथ कदम मिलाना है। सुगम संगीत में कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीत भजन कार्यक्रम, आप सुन सकते हैं।

शाम 7:31 पर। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम गीत गाता चल। रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस, जिसमें लोकगीत कलाकार होंगी आयुषी, हारमोनियम पे साथ देंगे सरन बाबू वाल्मीकि और ढोलक पर साथ देंगे गिरधर सिंह वर्मा। रात 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेलो रामपुर। यह था आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं प्लास्टिक। चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
1: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
0: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
1: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
2: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
1: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
3: से नो टू प्लास्टिक।
2: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
1: सामने है इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
0: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
1: ये प्लास्टिक कचरा, खासकर पॉलीथीन, पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध,
2: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
1: जागिए और जगाइए,
0: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए,
2: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
1: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
3: से नो टू प्लास्टिक।
4: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
5: अरे अरे सुनो, देखो देखो, एक्सीडेंट हो गया।
6: अरे अरे, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट।
7: अरे भाई, कोई 100 नंबर डायल करो, 100 नंबर, 100 नंबर डायल करो भाई साहब, जल्दी जल्दी।
8: 100 पे नहीं, 108 लगाओ, 108
9: नहीं, 112 लगाओ।
10: अरे भाई, इसकी जान चली जाएगी, आप लोग एक ही नंबर बताओ, बार बार कंफ्यूज मत करो।
9: अरे भाई, एक ही नंबर पर सारे काम, 112 लगाए, तत्काल पुलिस बुलाए, फायर एम्बुलेंस की सर्विस तुरंत पाए।
11: हेलो 112,
12: नमस्कार, 112 UP
11: गांधी समाधि रामपुर पर एक्सीडेंट हो गया है।
12: कृपया अपना शुभ नाम बताइए।
11: सुनील।

0: एम्बुलेंस के साथ साथ आपको पुलिस और फायर की भी जरूरत है?
1: नहीं सर, सिर्फ एम्बुलेंस की।
0: आपको सहायता शीघ्र भेजी जा रही है। डायल 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, अब 112 पर मिलेगी आपको जीवन रक्षा संबंधी हर आपातकालीन सेवा। एसएमएस करें या कॉल, ईमेल भेजें या 112 इंडिया मोबाइल ऐप पर मिलेगी आपको तुरंत सहायता। अब सिर्फ एक ही नंबर याद रखें, 112, और समझदारी से काम लें।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे प्रीति शर्मा द्वारा गाए कुछ लोकगीत।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम लोकगीत, लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाई प्रीति शर्मा द्वारा गाए कुछ लोकगीत।
1: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।

मिडवेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम आंचल।

नमस्कार बहनों, आप सभी का हमारे आंचल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहनों, जानते हैं क्या कुछ खास है आज के आंचल कार्यक्रम में? तो आज चर्चा को विषय रहेगा एलपीजी गैस यानी गैस चूल्हा और सिलेंडर से सावधानियों के बारे में। साथ ही साथ परिचर्चा सुनवाई जाएगी और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम भी सुनवाया जाएगा, मनोरंजन लोकगीत से कराया जाएगा। बहनों, अब बात करता है एलपीजी गैस की। आजकल लगभग हर घर में एलपीजी गैस चूल्हा इस्तेमाल करते ही हैं। अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं, क्योंकि एलपीजी गैस जितनी ज़रूरी है उतनी खतरनाक भी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सुरक्षित रूप से गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही में आर्थिक और शारीरिक नुकसान होने को खतरा रहता है। इसलिए आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर खाना बनाएंगी और ध्यानपूर्वक काम करेंगी तो रसोई गैस से होने वाली दुर्घटना से बच सकती हो। बनो, आप बात आता है वे छोटी छोटी बातें होत कौन सी हैं, हम आपको वे भी बताते हैं। बहनों, भले ही हर घर में रोजाना गैस सिलेंडर को इस्तेमाल होते हो, लेकिन सिलेंडर से जुड़ी तमाम बातें ऐसी होता है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। जैसे खाने पीने के सामान और दवाओं की तरह गैस सिलेंडर में भी एक्सपायरी डेट होती है, यानी का तारीख होती है, और एक्सपायरी तारीख देखने को अधिकतर लोग ना जानते हैं। वाकई सिलेंडर को बिना डेट देखे ले लेते हैं, ऐसे सिलेंडर से हादसे भी हो जाते हैं और बहनों आग लगन को और सिलेंडर फटन को जय कारण होता है। इसलिए बहनों सबसे पहले ध्यान रखें, गैस सिलेंडर पे एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। बहनों, एक्सपायरी डेट सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से जहाँ पकड़ने की रिंग होती है उस पर लिखे होता है, वहाँ एक कोड मिलता है, जैसे D25, D26 या D23, उसी से हम सिलेंडर की डेट देख सकते हैं। अगर जो बहनें पढ़ी लिखी ना हैं और देखना ना जानती हैं, वे एजेंसी वाले से पूछ कर सिलेंडर लें। सिलेंडर लेते समय सील को हटाकर पानी डालकर देख लें। अगर सिलेंडर की सील लीक कर रही हो और उसमें रबड़ लगी हुई भी चेक कर लें, कहीं फटी भी तो ना है। अगर रबड़ कटी फटी हो तो सिलेंडर को तुरंत बदल लें। और हाँ, एक बात को और ध्यान रखें, सील को ढक्कन को यानी कि हटाए का उस पर पानी डालकर जरूर देख लें। बहनों, जब सिलेंडर को रसोई में लगावे तो रेगुलेटर की गोलियों पर मशीन वालों तेल लगा लें, जिससे रेगुलेटर आसानी से लग जाता और उसकी पकड़ अच्छे से हो जाती है, जिससे गैस लीक ना होती है। अगर संभव हो सके तो सिलेंडर को रसोई के बाहर दीवार में सुराख करके लगावा, जिससे आग लगन को खतरा न रहता। सिलेंडर को रसोई में नीचे की तरफ रखें। कई जगह हमने देखी है सिलेंडर को ऊपर वाले स्लैब पर रख देते हैं। बहनों, ऐसो बिल्कुल ना करें। बहनों, एक बात को और ध्यान रखें, पाइप में चूल्हे की तरफ और रेगुलेटर की तरफ सेफ्टी क्लिप जरूर लगा लें। सेफ्टी क्लिप गैस ना निकलन देते हैं। सेफ्टी क्लिप बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद ही चूल्हे को जलाएं और खाना बनाएं। सिलेंडर को सीधा खड़ो रखें। हमने कई जगह देखी है कुछ बहनें सिलेंडर को गिराकर जलाती हैं, तो बहनों सिलेंडर को गिराकर ना जलाएं, क्योंकि सिलेंडर गिराने से दुर्घटना हो सकती है। और हाँ बहनों, खाना बनाने के बाद गैस चूल्हे को रेगुलेटर बटन दोनों से बंद करें। अधिकतर बहनें केवल

0: गैस चूल्हा से बटन बंद कर देती हैं, इसलिए वे दुर्घटना से मार खाती हैं। बनो जब भी किचन गार्डन में खाना बनाएं तो खिड़कियों और दरवाजों को खोल कर खाना बनाएं। गैस जलाने से पहले पाइप जरूर चेक कर लें। और हाँ, एक बात को और ध्यान रखें, गैस खोलने से पहले माचिस लाइटर जलाएं, फिर गैस को खोलें। खाना बनाते समय गैस चूल्हा छोड़कर ना जाएं। ध्यान रखें कहीं पाइप कटो-फटो तो ना है। जो हमारी बहनें सिलेंडर पे मोमबत्ती जला कर रख लेती हैं, वे ऐसो बिल्कुल ना करें। अगर गैस लीक होती हो तो सिलेंडर को रेगुलेटर तुरंत बंद कर दें, दरवाजे खिड़कियाँ को खोल दें जिससे गैस बाहर निकल जाए। बहनों, खाना बनाते समय बीड़ी सिगरेट का प्रयोग ना करें। ध्यान रखें, अगर आग सामने जलती हो तो गैस चूल्हों को वहाँ ना जलाएं, हटा बचा के जलाएं। और हाँ, एक बात को और ध्यान रखें, गैस चूल्हे से बच्चों को दूर रखें। बहनों, पाइप को समय समय पर बदलते रहें। अगर आपको गैस की बदबू आए तो गैस चूल्हा तुरंत बंद कर दें। बहनों, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर गैस का प्रयोग करेंगी तो आप दुर्घटना से बच सकती हो। बहनों, जो तो बात रही एलपीजी गैस से सावधानियों की, बहनों अब वो सुनवाता परिचर्चा जिसको विषय है किस परिवार में बच्चे संस्कारवान होते हैं, संयुक्त या एकल परिवार में। प्रतिभागियां श्रीमती लता मंगेश, सरोज और मीरा देवी, उनसे बातचीत करी है हमारी बहन गुंजन ने, तो सुनते जाओ परिचर्चा।
1: बहनों, कहते हैं कि परिवार ही बच्चे को संस्कारवान बनाता है, लेकिन आज के इस बदलते दौर में जहाँ परिवार संयुक्त थे, आज एकल होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ा है। क्या एकल परिवार या संयुक्त परिवार, ऐसा कौन सा परिवार है जो हमारे बच्चों को संस्कारवान बनाता है? आज इसी विषय पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है श्रीमती सरोज, मीना और लता मंगेश। आज इन सभी से हम बात करते हैं कि किस परिवार में बच्चे संस्कारवान होते हैं, संयुक्त परिवार या एकल परिवार में। आप तीनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि संयुक्त परिवार क्या है और एकल परिवार क्या है। सरोज, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है?
2: सासें, ससुरें, देवरें, नंदे, बच्चे हमारे दो छोटे छोटे, बस यही है।
1: आपकी नजरों में संयुक्त परिवार क्या है?
2: जो ज्यादा परिवार होता है,
1: परिवार में सब लोग होना,
2: हाँ,
1: जैसे आपका परिवार,
2: हाँ,
1: संयुक्त
2: जो
1: परिवार,
2: बड़ा परिवार होता है वो ही अच्छा है।
1: अच्छा है, संयुक्त परिवार कहलाता है।
2: हाँ,
1: मैं आप जानना चाहूंगी मीरा जी कि आपके परिवार में कौन कौन है?
3: हमारे परिवार में सास, ससुर, जेठ, देवर, जिठानी,
1: यानी आपका भी संयुक्त परिवार।
3: हाँ।
1: है। लता जी, आपके परिवार में कौन कौन है?
4: हम तीन या चार लोग रह रहे हैं, दो बच्चे हैं, एक हमारा आदमी है, एक हम।
1: यानी कि आपका परिवार जो, हाँ, वो एकल परिवार। देखिए, संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों ही परिवार हर व्यक्ति की नजर में सही भी हैं और गलत
2: भी
1: हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी सरोज कि संयुक्त परिवार अच्छा है या नहीं?
2: अच्छा है।
1: अच्छा है,
2: हाँ।
1: क्या फायदे हैं संयुक्त परिवार के?
2: क्यों, हम सुबह के लिए झाड़ू या पोछा लगाएं, बच्चा रोए तो हमारी नंद भी ले सकती है, सास भी ले सकते हैं, ससुर भी ले सकते हैं, देवर भी ले सकते हैं, जो हम काम कर सकें। और अकेले हम होते तो हम काम करें या बच्चों को खिलाएं, ये नहीं हो पाता।
1: तो संयुक्त परिवार अच्छा है?
2: हाँ, बड़ा परिवार अच्छा है।
1: ठीक है, जैसे आप सबके साथ मिलकर रह रही हो, आपने
3: हाँ।
1: आपकी सास है, जिठानी है, देवरानी है, तो सबके साथ मिलकर रहना अच्छा है?
3: हाँ, अच्छा है। लड़ाई झगड़े भी नहीं होते, खुश से रहते हैं।
1: अच्छा।
3: खुशी से खूब सब मिलकर रहते हैं। बच्चे हों तो वे संभाल भी लेते हैं, कभी रोए तो आराम उठा भी लेते हैं बच्चों को।
1: मतलब जिम्मेदारियां भी बटी हुई है संयुक्त परिवार में। लता जी, जैसे आपने कहा कि आपके परिवार में आपके बच्चे हैं, पति हैं और आप, तो एकल परिवार आपको सही लगता है?
4: सही भी लगता है, गलत भी लगता है।
1: किन किन परेशानियों का आप सामना कर रही है एकल परिवार में रहकर?
4: अभी तो कुछ परेशानी नहीं होती है, बच्चे आते हैं, उनको नाश्ता पानी बनाते हैं, खाना खिलाते हैं, आराम करते हैं।
1: कितने बड़े हैं आपके बच्चे?
4: मेरे बच्चे एक BA कर रहा है।
1: अच्छा।
4: और एक 10वीं में भी।
1: तो आप शुरू से ही एकल परिवार में रही हो या पहले कोई बड़ा परिवार था?
4: नहीं, पहले बड़ा था, जिठानी भी थी, सास भी थी, दीरानी भी थी, देवर भी थी और जेठ भी थी, नंद भी थी। जब हम घर में रहते थे छोटे थे।
1: अच्छा।
4: फिर खेती भी करना पड़ता था, फिर क्या कहते हैं, बच्चों को संभाल

0: भी पड़ता था,
1: अच्छा
0: फिर अपने दूध भी नहीं था छाती का, फिर उसको दूध भी ला के बनाना पड़ता था, फिर खेत को जाना पड़ता था। खेत को नहीं जाते टाइम से तो जिठानी जेठ गाली करते थे, तो मेरे को अच्छा लगता।
1: यानी कि आपके लिए जो है, आपकी नजरों में जो है वो एकल परिवार ज्यादा अच्छा है, सही लोगों के साथ मिलकर रहने से अच्छा है कि आप अलग रह रही हैं,
0: हाँ
1: एकल
0: जी,
1: परिवार आपको
0: हाँ जी,
1: पसंद है।
0: जैसे घर के सही होते हैं तो परिवार में अच्छा भी लगता है, परिवार के जब नाराज उराज होते हैं बच्चे के साथ तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, कि एक ही परिवार में अच्छा लगता।
1: मीरा जी, संयुक्त परिवार के क्या फायदे हैं?
2: फायदे तो बहुत हैं, सास ससुर रहते हैं, घर में कोई चीज नहीं है, सास ससुर भी लाकर दे देते हैं, अपने पास पैसे उसे नहीं है तो जेठानी जेठ भी सहायता कर देते हैं।
1: सब सहायता करते हैं, खाना
2: हाँ
1: पीना सबका एक साथ ही
2: हाँ
1: बनता
2: एक ही
1: है।
2: साथ होता है।
1: जैसे बात आती है कि बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना, तो संयुक्त परिवार में हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखा सकते हैं?
2: हाँ हमारे परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, मतलब किसी से गलत बातें सीख नहीं सकते हैं बच्चे।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: तो बच्चे जैसे सबके साथ मिलकर रहते
2: मिलकर
1: हैं।
2: रहते हैं, कोई चाचा उचा ले लेता है, कोई दादा दादी सब ले
1: कितने कितने
2: लेते
1: बड़े
2: हैं।
1: बच्चे हैं आपके?
2: एक तो 5 साल का है, एक 2 साल
1: बच्चों
2: एक
1: को
2: है।
1: किस तरीके की बातें, जो जैसे बच्चों के दादा हैं ताऊ हैं, वो उन बच्चों को सिखाते हैं?
2: बच्चों को यही सिखाते हैं कि मतलब तू तड़ाक नहीं बोलना चाहिए बच्चों के लिए, आप करके बोलो।
1: किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए,
2: हाँ
1: वो बच्चा जी कहते हैं कि परिवार को देखकर ही सीखता है, जैसे उसके माँ बाप कर रहे हैं या परिवार में
2: हाँ
1: जो लोग हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, बच्चा भी वही सीखता है जो परिवार में हो रहा है। कहते हैं बच्चा जो है एक नकलची बंदर की तरह होता है, जैसे बड़े करेंगे बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। बच्चा अगर परिवार के साथ में है, परिवार के लोग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं
2: बच्चा भी
1: अच्छी
2: ऐसे ही
1: बातें,
2: बोलता है
1: अच्छी
2: जैसे
1: बातें।
2: परिवार में बोलते हैं, अच्छे ही बोलते हैं परिवार में ऐसे
1: बिल्कुल।
2: बच्चा बोलता है।
1: सरोज, आपकी नजरों में संयुक्त परिवार कैसा है,
3: अच्छा है।
1: क्या फायदे हैं संयुक्त परिवार के?
3: घर में ये फायदे हैं कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ या खाना बना रही हूँ तो मेरा बच्चा रो रहा है या कोई चीज़ के लिए परेशान है तो ला देते हैं, सास है देवर है ससुर है वो ला देते हैं।
1: आपका बच्चा कितना बड़ा है?
3: मेरा एक बच्चा 4 साल का है और एक 10 महीने का है, छोटा
1: तो
3: सा।
1: आपके बच्चे के पालन पोषण में कोई परेशानी हुई संयुक्त परिवार में लेकर, कि आपको ये सोचना है कि आज मुझे अपने बच्चे के लिए कपड़े लेने हैं, लेकिन परिवार में लोग मना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा आ जाती है कि आज हम अलग होते तो शायद हम ले आते।
3: नहीं कोई मना नहीं करता है, मुझे कहने नहीं पड़ती, उससे पहले आ जाते हैं।
1: अच्छा, सारी जिम्मेदारियां
3: हाँ
1: अच्छे से निभाते
3: सब
1: हैं।
3: जिम्मेदारी अच्छे से सास ससुर के ऊपर है सारी अभी।
1: ठीक। अच्छा, ये बताइए कि बच्चा एकल परिवार में ज्यादा सीखता है या संयुक्त परिवार में ज्यादा सीखता है?
3: सही परिवार में ज्यादा सीखता है,
1: क्या क्या बातें, किस तरीके की बातें हमारा बच्चा सीखता है?
3: यही सीखता है कि बेटा किसी से गलत मत बोलना, तुम करके बोलना, ये बड़ी मम्मी है ये बड़े पापा हैं, ऐसे बोलते हैं।
1: देखिए आजकल क्या हो गया है, जहाँ परिवार धीरे धीरे टूटते चले जा रहे हैं, परिवार एकल होते चले जा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उस पर सबसे ज्यादा असर पड़
3: असर
1: रहा
3: पड़ता
1: है।
3: है, बच्चे गाली दे रहे हैं फिर गाली भी देने लगते हैं।
1: बिल्कुल, बच्चे बाहर जा रहे हैं, माँ बाप दोनों काम करने वाले हैं, बच्चा अकेला घर में है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहीं ना मोबाइल देख रहा है, ज्यादा से ज्यादा समय जो है मोबाइल
3: हाँ
1: पर बिता रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत ज्यादा
3: बहुत असर
1: प्रभाव
3: पड़ता
1: पड़ता
3: है।
1: है। तो एकल परिवार के बच्चों को किस तरीके से हम संस्कारवान बना सकते हैं?
3: जब घर में कोई नहीं होगा तो बच्चा तो कुछ ना कुछ करेगा ही, जब सब लोग होंगे तो वो देखभाल अच्छी कर सकते हैं।
1: अच्छा, बात आती है बच्चों के खान पान को लेकर, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से पूरे परिवार के जो लोग हैं वो उनके खान पान का ध्यान रखते हैं?
3: जी रखते हैं, सब लोग जब खाना खाते हैं तो उसको खिला देते हैं साथ में।
1: साथ में खिलाते
3: हाँ
1: हैं।
3: जो छोटा बच्चा है वो दूध पीता है।
1: मीरा जी, कभी आपके मन में आया ऐसा विचार, अगर हम अलग रह रहे होते तो हम अपने बच्चे की जिम्मेदारियां काफी अच्छे से निभा रहे होते?
2: मन में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं आया है, मैं तो परिवार में अच्छा लगता है, परिवार में बच्चे भी गलत नहीं बोलते हैं, हर कोई बता देता है कि गलत मत बोलो, चिल्ला भी देते हैं, परिवार में ही सही लगता है।
1: अच्छा, और क्या फायदे हैं संयुक्त परिवार के?
3: परिवार के ये फायदे हैं, हमारा बच्चा कोई बीमार है या कोई बात है तो हमारे सास ससुर देख सकते हैं, हमें बाहर जाना नहीं पड़ता है, वो ही लेके जाते हैं, या हमारे पति घर पे नहीं है कोई चीज की जरूरत है तो वो देखभाल करते हैं।
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब बच्चा एकल परिवार में होता है तो उसके अंदर भावात्मक बदलाव भी होते हैं, बच्चा एक दूसरे से चीजें शेयर करना भी जानता है।
3: जी
1: और एकल परिवार में क्या बच्चा होता है कि उसको परिवार में कोई नहीं मिलता, या एक ही बहन है या एक ही भाई है, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है बच्चों को एक दूसरे को देना या हमें किस तरीके से क्या बात करनी है, ये चीजें नहीं सीख पाता है। लता जी, आपको इन सब चीजों की परेशानी हुई कभी जिंदगी में?
2: नहीं
1: नहीं हुई? बच्चे अच्छे से पल गए
2: हाँ
1: आपके,
2: जी
1: और
2: घर में हुई थी परेशानी,
1: घर में परेशानी हुई थी आपको?
2: लेकिन खेत में देखना पड़ता, खेत में जाना भी पड़ता था, बच्चों को भी देखना पड़ता, संभालना पड़ता था।
1: तो आपकी नजरों में एकल परिवार ज्यादा अच्छा है?
2: लेकिन

0: परिवार भी अच्छा है, वैसे भी परिवार अच्छा है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे ये अच्छा लगता।
1: अच्छा, एकल परिवार के क्या फायदे हैं? जैसे आप बड़े परिवार से छोटे परिवार में आई, कुछ तो फायदे नजर आए होंगे आपको, क्या फायदे हैं उसके?
0: एकल परिवार में ऐसा है आप रहे आराम से रह सकते हैं, बड़े परिवार में तो ऐसा है बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, भाई हम अपनी जिम्मेदारी निभाए, बच्चे बड़े हो गए अपनी जिम्मेदारी अपने आप खुद देखी, हम अपनी देखी, छोटे थे तो हम जिम्मेदारी निभा रहे थे बच्चों की।
1: तो बच्चे एकल परिवार में ज्यादा खुश हैं आपके,
0: हाँ
1: उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे भी दादा दादी होते या ताऊ ताई होते या हमें उनसे
0: लगता
1: मिलना
0: है
1: चाहिए?
0: वही है, अब बच्चे छोटे थे खाना बनाओ फिर खेत के जाओ, खेत के नहीं जाते तो फिर नाराज होते थे, यही परेशानी थी,
1: अच्छा,
0: बस कुछ परेशानी नहीं थी।
1: मतलब पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर आपके मन में जो मनमुटाव था उसी को
0: हाँ
1: लेकर आपने ये निर्णय लिया कि हम संयुक्त तो परिवार से अलग होकर हम एकल परिवार में आ जाए। उसमें आपने बच्चों की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया और आपके बच्चे भी जो है उन चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी बच्चों के मन में ये आता होगा कि हमारे जो माता पिता हैं वो अपने परिवार से अलग रहकर रह रहे हैं, बड़े होंगे तो हम भी अपने माँ बाप से अलग रहेंगे।
0: पता नहीं, फिर परिवार भी अच्छा भी हो ना तब तो सही है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, कभी सरोजी ऐसा हुआ कि आपको संयुक्त परिवार छोड़कर एकल परिवार में आना पड़ा, तो किस तरीके से आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाएंगी?
2: अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं और नहीं हो, वैसे हम सब लोग साथ में अच्छे हैं।
1: अच्छा, साथ में ज्यादा अच्छा
2: हाँ,
1: है।
2: क्यों, वो हमारे बच्चों की देखभाल करते हैं तो हम उनकी सेवा अच्छे से करते हैं, खाना लिए उन्हें टाइम से देते हैं, दोपहर को शाम को सुबह के लिए टाइम से खाना देते, हमारे बच्चों को रखते हैं सही
1: देखिए,
2: से।
1: हमारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं रहती कि हम बच्चों को हमें क्या सिखाना है, क्या पढ़ाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके कपड़े लत्तों से लेकर हम हर जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं। क्योंकि परिवार में जब बड़े होते हैं ना तो उनसे हमें कुछ अनुभव भी मिलते हैं।
3: हाँ, बड़े ही लोग मतलब ये सब खर्चा पानी हमारे बड़े ही भी उठा रहे हैं, सास ससुर जे जे टूट
2: अभी
3: जे
2: है, कोई
3: सभी।
2: टेंशन नहीं है हमें, अभी सब लोग वही कर रहे हैं।
1: अच्छा, एकल परिवार में टेंशन होती
2: पर
1: है?
2: हाँ, जैसे मैं कढ़ाई करती हूँ तो मेरे बच्चों को खिलाते रहते हैं,
1: अच्छा,
2: जब वो काम करने लगते हैं मैं अपने बच्चों को ले लेती हूँ, कढ़ाई छोड़ देती हूँ, ऐसे होता है।
1: जिम्मेदारियां भी हैं
2: हाँ,
1: और बच्चों को भी देखना है,
2: देखना है।
1: तो संयुक्त तो परिवार में इतनी परेशानियां नहीं है कि आप अगर कुछ काम कर रहे हो तो आपको अपने बच्चे की जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाना है। घर में परिवार में और लोग भी होते हैं जो हमारे बच्चों को अच्छे से सिखा सकते। देखिए, संयुक्त तो परिवार में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो संस्कारवान बनते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको भी जानते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे बच्चे जो हों संस्कारवान बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि एकल परिवार में बच्चा संस्कारवान नहीं होता, एकल परिवार में भी माँ बाप हर संभव कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो संस्कारवान बने, बड़ों का आदर सत्कार और उनका सम्मान करे। लेकिन कहीं ना कहीं एकल परिवार में बच्चा जब अकेला हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं के मन में विचार आते हैं कि हमारे भी दादा होने चाहिए, हमारे भी ताऊ होने चाहिए, ताई होने चाहिए, हम परिवार में अकेले हैं, बच्चा मोबाइल में व्यस्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो जो है गलत संगति में पड़ जाता है, माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते। वहीं जो है संयुक्त परिवार जो है बच्चों की जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे से निभाते हैं और बच्चे एक संयुक्त परिवार में कारवान बनते हैं। आप तीनों
3: हाँ,
1: हमारे स्टूडियो में आई, इस विषय पे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: बहनों, अभी आपने जो परिचर्चा सुनी, हमें उम्मीद है आप इस परिचर्चा को सुनकर कुछ सीख लेंगे और अपने बच्चन को संस्कारवान बनाएंगी। बहनों, आगे सुनवाता क्षेत्र संकलित कार्यक्रम गांव की बात है। हमने काका बात करी, हम आपको सुनवाते हैं। आप हैं रामलली, ग्राम दुनका, बिला शेड़गढ़, तहसील मीरगंज, जिला बरेली से। रामलली जी, आप बच्चों की किस तरह से देखभाल करती हैं?
5: बच्चों की देखभाल मानी जैसे जब गर्भ में बच्चा होता है तो माँ को विशेष ध्यान रखने पड़ता है, अपना भी और साथ साथ अपने बच्चे का भी, खान पान का भी ध्यान रखने पड़ता है और बच्चे का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें वजन नहीं उठाना है, और परिवार वालों को भी ध्यान रखना पड़ता है, खान पान का भी ध्यान रखने पड़ता है, पानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, दूध है दही है ये चीजें माँ को पौष्टिक जरूर खाना चाहिए,
4: जब माँ खाएगी तो बच्चा
5: तभी बच्चा भी स्वस्थ होगा। माँ को विशेष ध्यान रखना है अपना खान पान का, अगर माँ ध्यान नहीं रखेगी तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं होगा, और माँ अगर अपना ध्यान रखेगी खान पान का तो बच्चा भी स्वस्थ हो, हष्ट पुष्ट रहेगा और स्वस्थ बच्चा होगा, मानी जन्म लेगा। उसके साथ साथ जब बच्चा जन्म देता है तब भी माँ को विशेष बच्चे का भी ध्यान रखना चाहिए कि माँ को अपने आंचल से लगाना चाहिए, क्यों, माँ आंचल से लगाती है तो बच्चे को बहुत ज्यादा गर्माहट मिलती है और बच्चे को अपने आप को बहुत अच्छा फील होता है।

0: ले ही बच्चा वो जन्म ले, पर
1: हम्म,
0: उसको माँ से लगने से बहुत ज्यादा फील हो चिपकने से।
1: जैसे माँ
0: माँ
1: केवल हाथ फिरा
0: हाथ,
1: देती है तो
0: हाँ
1: बच्चा
0: माँ,
1: को
0: हाँ माँ
1: तंदुरुस्ती सही हो
0: तंदुरुस्ती
1: जाती
0: सही
1: है।
0: रहती है, ऐसे ही समझ लीजिए। और उसके बाद भी माँ को दूध का भी विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले माँ 24 घंटे के अंदर अपना दूध माँ को पिलाना चाहिए, तभी बच्चा स्वस्थ रह पाएगा। और उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 3 घंटे बाद माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और जब थोड़ा बच्चा 2 महीने का, तब माँ को बराबर पानी भी थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिए बच्चे को। समय
1: ऐसा
0: समय
1: करा
0: पर टीकाकरण भी बच्चे
1: कराना
0: का
1: चाहिए।
0: कराना चाहिए, तभी बच्चा स्वस्थ रह पाएगा। टीका का तो विशेष ध्यान रखने पड़ता है कि गर्भ में हो तब भी माँ को भी अपना ध्यान रखने पड़ता है
1: माँ को भी अपने
0: कि
1: सब सारे टीका लगवाने
0: सारे
1: चाहिए।
0: टीका लगवाना चाहिए, और बच्चे के भी सारे टीका लगवाना चाहिए। बच्चा गर्भ में है तब भी, और बच्चे जब जन्म ले ले उसके बाद समय समय पे
1: टीका
0: वो
1: जरूर
0: जरूर
1: लगवाना
0: लगवाना
1: चाहिए।
0: चाहिए। हमारे समय पे तो इतना था भी नहीं, अब तो इतना टीका उके चल रहे हैं, हमारे समय पे तो कुछ भी नहीं था, बच्चों के कोई टीका ही नहीं लगता था। और माँ अपने विशेष ध्यान अपना खुद अपने आप रखती थी, इतना खान पान का भी ध्यान नहीं रहता था। माँ के काम इतना होता था, गाँव में इतना काम रहता था, माँ को पीसना है, कूटना है, खाना चूल्हे पे बनता था। अब तो विशेषकर माँ अपना खुद मानी जैसे रखती है ध्यान, पढ़ी लिखी माँ है, पहले इतना पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी और इतना पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान भी नहीं था। अब तो मानी शायद है माँ अपने पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान, खान पीन पे भी ध्यान रखती हैं। और पहले क्या था, पहले दूध मट्ठा छाछ यही घर में, फल आ गए तो आ गए, नहीं तो वो भी
1: हाँ,
0: कोई
1: वो ही
0: जरूरी
1: खाती
0: नहीं
1: थी
0: थे।
1: माँ।
0: माँ वही अपना ध्यान दूध का विशेष, दही का मट्ठे का दूध ध्यान रखती थी,
1: फल की पूर्ति
0: फल की
1: उसी से
0: पूर्ति
1: करती थी।
0: करती थी। बस सब्जियां, हाँ सब्जियां पौष्टिक मिलती थी, कि आजकल जो
1: हाँ
0: सब्जी दवाइयां लगी आ रही हैं,
1: हाँ हाँ
0: पहले कोई दवाई नहीं थी, बस
1: देस
0: देसी खाद लगता था, उसी से मानी उपलब्ध होती थी।
1: अंग्रेजी दवाई
0: अंग्रेजी
1: प्रयोग ना
0: दवाइयां कोई
1: करते
0: नहीं
1: थे।
0: लगती थी। खान पान का विशेष माँ को तो इस समय पे ध्यान रखना चाहिए, और परिवार वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बहू है या बेटी है क्या चीज किस समय चाहिए रही है, और मानी जैसे कोई टेंशन नहीं घर में, खुश रखना चाहिए, तभी हमारा बच्चा खुश रह पाएगा,
1: हाँ, तभी निरोग
0: निरोग
1: रहेगा।
0: रहेगा।
1: और जैसे बात आती है बच्चे को खान पान कैसे रखना चाहिए बच्चे को।
0: खान पान बच्चे को पानी अच्छे से रखना चाहिए, दूध है बच्चे को, फल है, दलिया है, मूंग की दाल है, बच्चे को ये विशेष कर ध्यान रखना चाहिए। माँ के लिए पहली गुरु माँ ही है बच्चे की, माँ ही ध्यान रख सकती है बच्चे का विशेष, क्यों पिता तो मानी कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई खेती का काम कर रहा है, पिता इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, माँ ही ध्यान रख पाती है। और कहीं दादी बाबा घर में होती है तो बच्चे का वो विशेष ध्यान रख लेते हैं कि बेटा को ऐसी चीज नहीं खिलाई, कि बेटा को ऐसी चीज खिलानी है, अरे ऐसी चीज नहीं दी आपने बच्चे को, दूध नहीं पिलाया, तो विशेष ध्यान माने घर वाले भी ऐसा नहीं है रखते हैं, दादी बाबा भी, और
1: हाँ,
0: माँ को तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ता है।
1: आजकल के बच्चे बाहर की चीजें ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आप हमारी बहनों से क्या कहना चाहेंगे।
0: मैं बहनों से यही कहना चाहती हूँ, मेरी बहनें यही विनती है मेरी कि बाहर की चीज नहीं खिलाएं तो ज्यादा ही अच्छा है। जो बच्चा अगर पसंद है तो आप घर में बना के खिला सकती हैं, और विशेषकर दाल दलिया, दाल चावल रोटी सब्जी, इस पे विशेष ध्यान दें, फल है दूध है ये
1: हाँ,
0: खिलाएं, बाहर की चीज नहीं खिलाएं।
1: आजकल के तो बच्चे चाउमीन टिक्की बतासे ये ज्यादा पसंद करते हैं,
0: पसंद
1: समोसे
0: करते
1: वगैरह।
0: हैं, बच्चों को नहीं खिलाएं तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। अगर टिक्की बच्चे खा रहे हैं घर में बना दो, और के बतासे घर में बना खिलाओ, बाहर की पता नहीं खुली होती है कैसी चीजें कैसी बनती हैं, आप देख
1: और
0: तो नहीं रही हैं, तो इसलिए
1: आजकल के
0: घर
1: तेल वगैरह वो डालते हैं तो
0: उसी में
1: बिना
0: बार बार
1: बार
0: उसी
1: बार
0: में
1: बार।
0: हाँ बनाते रहते हैं, तो वो नहीं खिलाना चाहिए, उससे हमारे बच्चों को स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है, पेट भी सही नहीं रहता है।
1: पढ़ाई लिखाई हमें बच्चों की किस तरह से करवावा।
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। 3 साल का बच्चा अगर हमारा है तो हम आंगनबाड़ी में ही भेज सकते हैं, छोटा ही है तो उसको मानी, या पास का कोई ऐसा स्कूल है जो बच्चों का है उसमें भी भेज सकते हैं। तो उसका क्या है भाई, लंच में हमारे बच्चे को हमें क्या देना है, कैसे मानी हमें भेजना है, बच्चे को सुबह जल्दी उठाना है, प्यार से उठाना है उसको, गुस्सा नहीं करना है उसके ऊपर, अगर आप गुस्सा करें तो बच्चा भी फिर वैसे ही सीखेगा। बच्चे को प्यार से ही आपको उठाना है, और सुबह की बेटा दादी के पैर छू के जाओ, बाबा के पैर छू के जाओ, माँ के पैर छुओ, पिता के पैर छू के जाओ, भगवान के हाथ जोड़ के जाओ, सबसे पहले भगवान है, भगवान के बेटा मंदिर में खड़े हो हाथ जोड़ के जाओ, तभी बच्चा अच्छा कि हमारी माँ ऐसे करती थी, और माँ को तो सामने बच्चे के जरूर करना चाहिए। हमारी सास ससुर के पैर वो छुएंगी तो वो भी एक बार छुएगी तो बच्चा चार बार छुएगा, कि वो देखता है हमारी माँ पिता कैसे कर रहे हैं, तो वैसे ही बच्चा भी सीखता है। एक बार अगर गाली देंगे तो बच्चा बहुत जल्दी ये ग्रहण करता है।

0: है तो वो चार बार कहेगा,
1: अच्छी बात नहीं
0: सीखेगा, नहीं सीखेगा गलत बात, बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है। पहले गुरु बच्चे के माँ बाप ही होते हैं कि सबसे पहले बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। और बच्चे का ये भी ध्यान रखें कि लंच में पराठा है, सब्जी है, फल है, ये बच्चे को देना चाहिए, पानी की बोतल है, ये रखना चाहिए। और कितनी हमारे टाइम टेबल के हिसाब से बच्चे को, ज्यादा तो किताबें नहीं है कि बच्चे को टाइम टेबल के हिसाब से किताब भी
1: इसको
0: देखभाल करना चाहिए।
1: टाइम टेबल
0: बच्चा छोटा है तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चे।
1: हमारी बहनों से क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं बहनों से यही कहना चाहूंगी कि अपने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करें, कि अच्छी परवरिश करेंगी तो बच्चा भी अच्छा ही स्वस्थ रहेगा, अच्छा बनेगा, बाहर निकलेगा तो देखो उनका बेटा कितना अच्छा है या उनकी बेटी कितनी अच्छी है, देखो कितनी संस्कार मान है ये बेटी, तो बहुत अच्छा लगेगा, अपने आप को भी अच्छा लगेगा, पास पड़ोस वाले भी बच्चे की तारीफ करेंगे। और अगर
2: बहनों अभी आपने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम सुनो, प्रसव पूर्व और प्रसव बाद बच्चे की देखभाल पर शिक्षित ग्रामीण महिला से बातचीत करी गई। आप भी, हमें उम्मीद है आप भी अपने बच्चन को अच्छे से देखभाल करेंगी। बनो अब कार्यक्रम के अंत में कर लेता मनोरंजन, तो सुन लेता जो लोकगीत। कलाकार हैं योगेश कुमारी।

बहनों, अभी आपने जो लोकगीत सुनो, हमें उम्मीद है आपको लोकगीत पसंद आओ हो। बहनों, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, उससे पहले लिख लें हमारे कार्यक्रम को पतो पतो है आंचल कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 24490। अब अपनी बहन मीना को दे अनुमति। राम राम।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम आंचल।
1: राष्ट्र, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। माँ, मातृभाषा, मातृभूमि हमको प्राणों से भी प्यारी है। शहीद, सैनिक और संस्कृति पर हम सबको अभिमान है। तिरंगे के रंगों में हर एक रंग का मान है। तिरंगे की रक्षा में तन मन धन कुर्बान है। धर्म, जाति और नाम से पहले भारतीयता पहचान है।
0: मिनीवेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And in IPL cricket, Punjab Kings to take on Delhi Capitals in Dharamshala this evening. Prime Minister Narendra Modi offered prayers and performed puja at Somnath Temple in Gujarat during the Somnath Amrit Parv celebrations. The Mahapuja marks 75 years since the inauguration of the restored temple. The Mahapuja was followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the Somnath Temple stands as a beacon of unwavering faith, divinity and a sacred symbol of the country's eternal soul. He said, Somnath Amrit Parv is not just a festival to celebrate the past. It will be the country's inspiration for the next 1,000 years.
3: आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
2: The Prime Minister said Somnath reminds the people that any nation can remain strong for a long time only when it stays connected to its roots. He said no power in the world can make India bow down or suppress it. On National Technology Day, Prime Minister said on this day the first 3 nuclear tests were conducted and the country's scientists showcased India's capabilities to the entire world. He said these tests demonstrated to the world just how unwavering the country's political will truly is.
3: देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई

0: Final match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में

0: यात्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीर सेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण

0: खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनोर राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के

0: पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मिनी वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 60 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में यह पहला गीत फिल्म तीसरी मंजिल से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म श्रीमान फंटुश से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

आइए सुनते हैं फिल्म सावन की घटा का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 60 के दशक के फिल्मी गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, राजकुमार फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में।
1: ये सितम

आइए सुनते हैं आज इस कार्यक्रम का यह आखिरी गीत फिल्म वही फिर वही दिल लाया हूँ, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में।

0: कार्यक्रम सुनहरा दौर, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। इन्हीं मीटर्स पर शाम 5 बजे तक FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर विविध भारती के प्रसारण उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस थोड़ी ही देर में।

0: ही सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मंजरी क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी, गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है। या आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही।
1: बिल्कुल।
2: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर तालाब है तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं। तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसे एक साथ नहा रही हैं। गर्मी इतनी चिलचिलाती, धूप होती, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी
1: ठंडी रहती
2: है, तभी निकलती है। तो हमसे जितना हो सके हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं।
1: नहीं बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गांव में तो इस तरह की छपरा बना दिया जाता है जहाँ भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलीथीन को भी वो चबाते रहते हैं।

0: के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं और यही पॉलिथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है जो उनकी बीमारी का भी अस्वस्थता का कारण यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
1: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें कि पॉलिथीन वगैरह प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें या कचरा जहां डालते हैं वहां डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें। और पशुओं का बहुत ख्याल रखें क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर दी
0: है,
1: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी।
0: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या?
1: नहीं नहीं
0: है ना, तो ये गलत बात है ना,
1: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे अगली बार खिलाएंगे, है ना। कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
0: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था,
1: जी
0: और वैसे तो देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना, तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं.
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं ना ऐसे जब
0: बिल्कुल.
1: धुन सुनाई देती है, ऐसे बोल सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाच ही लो,
0: नाच ही लो, तब तो खैर
1: है
0: मन का हाल ही क्या होता होगा, ये तो वही
1: ना.
0: जानते हैं जिसके साथ ये होता होगा.
1: जी जी बिल्कुल.

0: कथा सुधा में हम आज कहानी
1: हम्म,
0: सुनाने वाले हैं अपने साथियों को। कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक। जी
1: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।

0: उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी, लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे, इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे, वो उसे पूरी आजादी से पाथे, उपेले बनाए, घर लीपे, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाए। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया, कितना ही उबालो न कहीं मलाई का पता न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था, शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही किया। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो, आठ आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह ना लगाता, पीना तो दूर रहा, आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है इतना खराब दूध, ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता, वो कहती,
1: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती, क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो, भला से बदबू

0: आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना, रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
1: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। ये हरकत उनकी जानकारी में होती हो, ये बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी? सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी, और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया, गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दुहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दुह लेगा, थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहां जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया।
2: अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कमखोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही भी आई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
1: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा, जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती? पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था, लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता, देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी, बात क्या है? पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
2: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
1: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां? इसलिए यह तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गांव की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का

0: ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी लेकिन बाग और खेत में घुस गई। आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
1: बाबूजी इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कांजी हाउस भेज देंगे।
0: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
2: अरे मैं हाँ हाँ करती रही मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहाँ कोई तुम्हारा दबैल नहीं है। हाँ हकीम होंगे अपने घर के होंगे। देखो बाबू अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बताए देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंट दूंगी।
0: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था। बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
3: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
0: बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
3: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है। उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
0: खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
4: अरे साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
0: मैंने कहा तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है। जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
4: देखिए मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
0: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था।

0: और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी। थक गया मगर मेहनत सफल हो गई, आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से? पेड़ों से तोड़ू तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे, राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा? चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला,
1: अरे ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? लाइए मैं काट देता हूं।
0: मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह? जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
1: ये पत्तियां कहां रख जाऊं?
0: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
1: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रख देता हूं।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं।
2: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
3: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार, दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार, अंत में जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं। ये सोच करके ये आसान होगा, परिणाम बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लिखकर दीजिए इन्होंने।
4: बिल्कुल सही कहा। और देखिए वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु है जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है, यहाँ से लिखा इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
0: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और इसके साथ ही ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का भी दिन है। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था
1: जी। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर है। ये दिन जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है, यानी कि जो हमारी तकनीकी है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे वैज्ञानिक, इंजीनियर जो भी योगदान देते हैं, तो उनको एक कहना चाहिए एक सम्मान देने के दिवस मनाया जाता है। और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है। तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं गीत

0: देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है। तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आजादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी, मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं। हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुंच जाती, परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या है, जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज्यादा फ्रीडम महसूस करते
0: जी
1: हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है, जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहां एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है, आप खुले खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने
0: बिल्कुल
1: देखा है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो
0: जी,
1: सहेलियां थी, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे,
0: उनकी
1: और
0: डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे,
1: हाँ
0: और रूठना मनाना तो चलता था।
1: चलता ही
0: लेकिन
1: था।
0: रिश्तों में क्या होता है, जब कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में
1: हाँ
0: भी खटास
1: तो
0: आती है,
1: आती है,
0: लेकिन
1: लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं
0: हाँ
1: समझती हूँ अगर दोस्ती में खटास आती है तो
0: जी
1: कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब
0: बिल्कुल,
1: दोस्ती में खटास आती है, वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्त ही रहते हैं।
0: दोस्ती रहती है,
1: जहां दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ
0: स्वार्थ
1: या
0: उनके
1: मन में कुछ
0: अंदर।
1: था,
0: बिल्कुल सही
1: वरना
0: बात,
1: आज भी हमारी कुछ सहेलियां या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम
0: जी
1: बात करती हो ना,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है।
0: बिल्कुल, 100 की सीधी एक बात कि आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या, जलन है, तो
1: तो आप नहीं
0: अहंकार है,
1: निभा
0: तो आप
1: पाओगे,
0: दोस्ती नहीं निभा
1: नहीं निभा
0: पाएंगे, है ना।
1: पाओगे।
0: तो हमारे
1: दोस्ती शब्द तो बहुत बड़ा है
0: बहुत
1: मंजरी,
0: बड़ा है
1: मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते,
0: जी,
1: जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं।
0: आ गए जी,
1: लेकिन अगर वो नहीं आई हैं तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है। और बहुत अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात है, जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप है या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं, पुराने पुराने कहाँ गए कहाँ
1: हाँ, सही बात है। कुछ मित्रों
0: गए,
1: ने हमें खोज लिया, अरे आप
0: है
1: कहाँ रहती हैं, आप
0: ना।
1: वही मंदाकिनी है
0: हमने
1: जो
0: खुद
1: कभी साथ
0: अपने
1: पढ़ा करती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है ये कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी,
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: वो
0: बात
1: एक
0: है,
1: बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहां
0: बिल्कुल
1: उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है।
0: कुछ भी नहीं। अगर
1: तो
0: वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ
1: हाँ
0: लीजिए आपने सब कुछ समझ
1: समझ लिया,
0: लिया।
1: तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाए तो समझ
0: बहुत
1: लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है ना।
0: जी जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं, रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधनकारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त हैं। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं, और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं, इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावनात्मक रिश्तों से ज्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज्यादा होती। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी इन्होंने।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दौर में रिश्तों रक्त संबंध से ज्यादा दोस्तों का करीब होना एक आम हकीकत बन गया है। इसके पीछे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कई कारण हैं। यहाँ कुछ मुख्य वजह हैं, क्योंकि दोस्त अक्सर परिवार से ज्यादा करीब होते हैं बिना शर्त स्वीकृति के। दोस्त हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, और रिश्तेदारी में अक्सर अपेक्षाएं, सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक रहते हैं, स्वैच्छिक संबंध होते हैं। परिवार हमें मिलता है लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारी रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी रहती है।
0: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खून के रिश्तों से ज्यादा करीब और गहरी होती है, जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिसे हम खुद को चुनने का मौका मिलता है। जो रिश्तेदार से ज्यादा असरदार होता है, इसमें शुक्रिया या सॉरी की औपचारिकता नहीं होती, जबकि बेहद अनौपचारिक और सुकून देने वाली होती है। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते बहुत मिलते हैं पर सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, है ना। और कहें तो एक गाना सुनवाएं पहले।

0: तो
1: हाँ तो
0: देखिए,
1: मंजरी बताइए, दोस्ती
0: हमारे
1: में और क्या क्या होता है?
0: दोस्ती में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, और कभी कभी एक साथ घूमने भी जाते हैं तो दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपस में खर्चे भी शेयर कर लेते हैं, है ना।
1: मतलब दोस्ती में भी हम खर्चा देखते
0: भाई
1: हैं? मुझे
0: देखते
1: तो
0: हैं,
1: लगता
0: लेकिन
1: है
0: चलो
1: दोस्ती में हम खर्चा देखते ही नहीं
0: नहीं,
1: है।
0: आजकल दोस्तों में क्या होता है कि चल थोड़ा तू लगा थोड़ा मैं लगा, ऐसा करते हैं और खूब इंजॉय कर लेते
1: दे, मैं तुम्हारे
0: हैं।
1: साथ जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें सारा खर्चा करना पड़ेगा।
0: देखती हूँ।
1: हाँ
0: चलिए ठीक है, कर लेंगे।
1: हाँ
0: और हमारे साथी लिखते हैं, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह। मुझे लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों की अपनी अपनी जगह है, और दोनों को बनाए रखना जरूरी है। दोस्ती में विश्वास और समझ होती है, जबकि रिश्तेदारी में प्यार और बंधन होता है।
1: ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं, रिश्तेदारी में भी कई लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं
0: जी
1: जिनसे बहुत लंबे समय तक हमारा नाता जुड़ा होता है। एक हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे हमें आधार देते हैं, लेकिन मित्रता उस ठंडी छांव की तरह है जो सफर की थकान मिटा देती है। मित्र करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं, और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वहीं सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहां वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है।
0: बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और ऐसे ही हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए रिश्ते हैं जो जहां दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, लेकिन मित्रों के साथ हम अपनी रूह से जुड़े होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा बेहतर समझ ले, शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज्यादा करीब महसूस होते हैं। बहुत सुंदर
1: बिल्कुल
0: बात
1: सही।
0: है।
1: और एक आखिरी हम और ले लेते हैं, उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा और अपेक्षाओं का बोझ होता है, वहां गलतियों पर टोकने या उपदेश देने का डर रहता है, लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं। मित्रता में जज किए जाने का डर कम और स्वीकार किए जाने का एहसास ज्यादा होता
0: जी
1: है ना?
0: बिल्कुल सही बात लिखी है। तो हम लोग
1: तो
0: सुनते हैं गीत।
1: हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम उन्हें गीत सुनवा लें।

0: तो मंजरी भाई, ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें, कि दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है
1: जी।
0: और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठकर खाते हैं तो कितना
1: बनाते
0: मजा
1: हैं तो
0: आता
1: बहुत
0: है
1: अच्छा
0: ना।
1: लगता है जी। बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन है हमारे, दाल पीठा और सत्तू का शरबत। तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखते हैं कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगोकर लहसुन मिर्च के साथ पीस कर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है, फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं, इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं, या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही हैं चने की दाल से, तो इसी तरह का है, बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना,
0: नहीं आप पढ़िए ना क्या कह
1: लिखते
0: रही
1: हैं कि
0: हैं।
1: सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू दो तीन तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना मसूर मक्का जौ होता है, जिसे लोग खाते हैं। सतुई यह सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है, यानी सत्तू और सतुई। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो हमें पता चल गया है कि हम
0: दोनों
1: किससे
0: में क्या फर्क
1: क्या
0: होता
1: फर्क
0: है।
1: होता है।
0: हाँ, जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है,
1: जी
0: कि बिहार की व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई।
1: क्या बात है। यानी आप इतने से ही निकल नहीं पाते।
0: तो अगली बार, आप मेरी अच्छी दोस्त है ना,
1: जी
0: तो अगली बार आप ये सत्तू और सतुई बनाकर लेकर आने वाली हैं।
1: पक्का।
0: ठीक है, तो अब सुन लेते हैं गीत।

0: जाना। तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
0: प्यार भरा
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया।
0: हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं, कई बार हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं, जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो गया है, तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है।
1: थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीत्या संक्रमित होती है आगे चल के, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है। अगर हम देखेंगे तो इतिहास जो होता है, देखिए कि बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं पर हमें वो कभी ज्ञात हुई, यह ज्यादा जरूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहाँ से आया? वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है। थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू
0: जी।
1: तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसी के आजू बाजू में पाई गई, और एमिया मतलब खून की बीमारियां। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर के आजू बाजू में कंट्रीज थी इसमें ये पाई गई। लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियां पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में छठे दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जैसे अपना ज्ञान बढ़ते गया और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चलते चला गया है। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था तो वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में कुछ कुछ जगह पर ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है वहां की जो जनता भारत में स्थलांतरित माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद में, तो सिंधीज और पंजाबीज में ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है। नॉर्थ रीजन में गुजरात में यही बीमारी पाई जाती है, महाराष्ट्र में, नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी पाई जाती है। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में ये बीमारी इतनी ज्ञात नहीं थी। लेकिन
0: अच्छा, लेकिन मध्य भारत जो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है?
1: देखिए कैसे होता है कि ये जो बीमारी है अपने हीमोग्लोबिन यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं है उससे निगड़ित होती है, तो मध्य भारत में इसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है। मध्य भारत में सिकल सेल नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी और थैलेसीमिया जब एक साथ आते हैं तो एक सिकल थैलेसीमिया नाम की नई बीमारी जन्म लेती है। आज के दौर में जहां पे माइग्रेशन इज वेरी कॉमन, हर जगह पे सब लोग अपने काम की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेशन करते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए अभी उतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है इस बीमारी के बारे में।
0: डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी को अगर हम तौलें और एक अनुपात लगाएं तो क्या पाते हैं आप, कितना प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है?
1: देखिए पूरी भारत दुनिया का हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो पूरी दुनिया में करीबन हर साल 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं जो है जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होते हैं, और इसमें भारत का है ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हर साल। तो 10,000 बच्चे जो होते हैं हर साल थैलेसीमिया मेजर यानी पूरा थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं एक टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन होता है कि जो ऊपर दिखता है उससे तो काफी गुना तो नीचे होता है पानी के। क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया आधा ही होता है जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, इनका जो होते हैं इनको थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर 25 के पीछे एक थैलेसीमिया कैरियर होगा।
0: अच्छा,
1: तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती जाती है। अगर हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से और हर साल ऐसे ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल रीत्या जो थैलेसीमिया का पूरी तरह से उपचार नहीं होने के कारण ये बच्चे उम्र के 15 से 20 साल में गुजर जाते हैं, तो भी हर वर्ष करीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं इंडिया में।
0: देखा जाए तो ऊपरी तौर पर एक अनुपात बताया आपने, हम आगे बढ़ेंगे और थैलेसीमिया बीमारी का जो स्वरूप क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम चाहते हैं कि कोई संगीत की बात हो जाए, तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगे?
1: देखिए, हिंदी संगीत तो जैसे श्रवणीय रहा है, और आप जानते हैं पुराने दशक में जितने पुराने अच्छे गाने रहे, देवानंद जी उनमें से मेरे एक फेवरेट रहे हैं, तो उनका ही प्रेम पुजारी पिक्चर का फूलों के रंग से ये गाना मैं सुनना चाहूंगा।

0: बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया आपने। वैसे ये बताइए, थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका मुख्य स्वरूप क्या होता है और इसके लक्षण क्या-क्या हैं?
1: देखिए, थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, इसके जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया कि हर 25 इंसानों में एक इंसान कैरियर होता है, यह आज भारत की स्थिति है। जो कैरियर होता है उसे नॉर्मल तौर पे तो कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है 7 से 13 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। इनमें थोड़ा सा सफेदपन आ जाना मुंह के ऊपर, थोड़ी सी ग्रोथ में कमी होना, या तो कभी हल्का सा पीलिया दिखना या हल्की सी कमजोरी मालूम पड़ना, ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं। अन्यथा इनमें कोई लक्षण की इतना अभाव ही रहता है। दूसरा जो होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, अभी ये जो होता है इसमें पूरी तरह से थैलेसीमिया तो नहीं आ जाता है, ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो काफी बढ़ जाती है, जिससे
0: अच्छा,
1: इनका जो शरीर में, अब सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियां आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं, पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है।
0: अच्छा
1: सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है,
0: जो मेजर होता है।
1: जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफेद दिखने लगते हैं, माए देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूअसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से रक्त संक्रमण ना दे तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियां होती है, बचपन में मेनली होती है अपने सर की हड्डियां, ये बढ़ने लगती है साइज में, और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती हैं, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं, तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर भी होता है, तो क्या दो ही प्रकार के थैलेसीमिया पाए जाते हैं?
1: देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये भारत में इतना पाया नहीं जाता है, ये जो दिखता है मेनली अरब रीजन में देखा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया इंडिया के पॉपुलेशन में तभी प्रॉब्लमेटिक होता है जब सिकल सेल या किसी अन्य बीमारी के साथ में वो जुड़ जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है भारत में इतना मुख्य कारण नहीं है जितना है कि बीटा थैलेसीमिया।
0: बीटा,
1: हम लोग जो आज बात कर रहे हैं मेनली वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में है, तो वही मैं बताना चाहता हूं कि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है, या हम लोग जिसे ट्रेट कहते हैं या कैरियर स्टेज कहते हैं, इसमें उस व्यक्ति को विशेष तकलीफ तो नहीं होती है, पर किसी ठराविक अवस्था में, जैसे कि शरीर में लोहे की कमी हो गई या किसी और चीज की कमी हो गई, तो उसका हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ नीचे आने लगने लगता है। दूसरी जो व्यवस्था होती है, जो हमने बताया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, जिसमें थैलेसीमिया के साथ और कोई बीमारी जुड़ने के वजह से या किसी वजह से व्यक्ति को बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती है। और तीसरा जो बताया मैंने, जो थैलेसीमिया मेजर जो होता है, उसमें हर महीने या कभी कभी 3 से 4 हफ्ते में ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है।
0: ये भी होता है कि साथ में एनीमिक होने के साथ में वो थका हुआ सा दिखता है बच्चा?
1: हाँ, मतलब वही होता है कि जो बच्चा थका हुआ सा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उसकी जो बढ़त होती है वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है, तो ये अलग अलग लक्षण दिखते हैं, बच्चे में पीलिया दिखता है। जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया से प्रभावित होते हैं, उनमें लीवर और प्लिया यानी स्प्लीन की साइज भी बढ़ जाती है, कभी कभी उसकी वजह से पेट दर्द या पेट में गांठ लगना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं।
0: जैसे आपने ये भी बताया, तो यहाँ जिक्र करना होगा दोस्तों आपके लिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि अनुपात में शरीर सिकड़ा हुआ होता है और पेट निकला हुआ सा दिखाई देता है।
1: अब देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ढंग से रक्त संक्रमण नहीं मिला होता है, और ढंग से उनका उपचार नहीं चल रहा होता है, या तो इस बीमारी को ना जानने के कारण, या तो किसी अलग विषय जैसे कि फैमिली गरीब हो और वो ढंग से इसका इलाज नहीं कर पा रही हो।
0: अच्छा, इसके कारण पे यदि हम जाएं मूल रूप से, इसका रीजन जो है कि भाई क्यों होता है, तो अक्सर पारंपरिक रूप से लोग ये कह देते हैं भाई इनके माँ बाप को भी बीमारी थी। तो ये सत्य है कि अनुवांशिकता, जैसे कि आपने कहा, हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है उसमें, तो माँ को होता है या पिता को होता है या दोनों को होता है?
1: इसमें अभी देखिए, ये जरूरी है कि जैसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो कहते हैं, ये माँ और पिताजी दोनों से ही आती है। ये जो बीमारी है मूल रूप से आधी बीमारी पिताजी से और आधी बीमारी माँ से आती है। कैसे होता है कि बहुत बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब माँ पिता कहते हैं, हमारे तो पूरे खानदान में बीमारी किसी को नहीं थी और हमारे बच्चे को कैसे आ गई। अभी ऐसे है कि जो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर स्टेट होता है वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उनमें तो ये आधी

0: सारी होती है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग बनाएंगे कि माँ के जीन्स के दो सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, पापा के दो जीन्स के सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, तो 50-50% बीमारी पापा और मम्मी दोनों में है। अब बच्चे जो पैदा होंगे उसमें, तो उसमें 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त होते हैं, 50% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर अपने माँ पिताजी से होंगे, पर अगर नॉर्मल हिस्सा दोनों साइड से आ गया तो वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है।
1: अच्छा
0: तो माँ पिताजी अगर दोनों में ये बीमारी आधी आधी है तो 25% चांस है कि बच्चे को आगे चल के थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है। ये बीमारी इसीलिए माँ से और पिता से दोनों साइड से ही आती है। बहुत कम बार, मतलब लाखों में एक हाथ कैसे ऐसे होगा जिसमें सिर्फ माँ को या पिताजी को ही बीमारी है, और जो माँ से या पिताजी से जो नॉर्मल जीन आ गया उसमें वो शांति रह गया और जो दो क्षतिग्रस्त जीन है वही चल गया तो बीमारी आती है। पर मुख्य रूप से माँ और पिताजी दोनों से ही आधी आधी बीमारी आके एक पूरी बीमारी तैयार होती है बच्चे में।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है कि जैसे आपने बताया कि माता पिता दोनों को होती है और जीन्स में जेनेटिकली ये समावेश होता है गर्भ के दौरान। जैसे कई माँ बाप आते हैं मरीज को लेकर बच्चे के रूप में आपके सामने कि भाई हमारे बच्चे को ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या कंडीशन आप पाते हैं, कितना होना चाहिए, कैसे आपको पता चलता है कि वाकई थैलेसीमिया है?
0: क्या होता है कि जो शुरुआती जो हीमोग्लोबिन रहता है, इसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में HbF, यानी जो माँ के पेट में रहते वक्त जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा पैदा होते वक्त काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए तकलीफ नहीं होती है। 3 से 6 महीने में जो अपने युवा अवस्था का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तभी हीमोग्लोबिन नीचे चले जाने लगता है तो बच्चा सफेद दिखने लगता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग या और किसी चीज की तकलीफ होती हो या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम लोग, मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूँ तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा, हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं।
1: अच्छा भाई, देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है।

0: अच्छा
1: भाई देखिए, बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमजोरी कितनी है और किस ढंग से इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे।
0: देखिए, धर्मेंद्र जी जो है वो हीमैन के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का, और गाना है पल पल दिल के पास।

0: आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। जब अंग्रेजों ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला तब आसफ अली ने एक वकील के रूप में उनका केस लड़ा और उनकी मदद की। वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए और जेल गए, लेकिन देश के लिए उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। आसफ अली की पत्नी अरुणा आसफ अली भी स्वतंत्रता आंदोलन की एक बड़ी नेता थी। दोनों ने मिलकर देश के लिए संघर्ष किया।
1: साथियों, आजादी के बाद भी उन्होंने देश की सेवा जारी रखी। वे भारत के पहले अमेरिका में राजदूत बनी। इसके अलावा उन्होंने उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी काम किया और देश के विकास में योगदान दिया। आसफ अली की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी देशभक्ति और इंसानियत। वे हमेशा एकता और भाईचारे की बात करते थे।
0: उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इरादे मजबूत हों तो इंसान देश और समाज के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, आज हम उनकी भी बात करेंगे जिसने अपने कलम की सियाही से समाज का चेहरा ही नहीं बल्कि समाज का सच भी लिखा। एक ऐसा लेखक जिसे दुनिया शहादत हसन मंटो के नाम से जानती है। दोस्तों, मंटो ने एक बार कहा था, अगर आपको मेरी कहानियाँ गंदी लगती हैं तो इसका मतलब है कि आप जिस समाज में जी रहे हैं वह गंदा है। मंटो सिर्फ एक कहानीकार नहीं थे, वे एक आईना थे।
2: उन्होंने वो लिखा जो उन्होंने देखा, चाहे वो विभाजन की त्रासदी हो या सड़कों पर घूमते आम इंसान की बेबसी, टोबा टेक सिंह, खोल दो और ठंडा गोश्त जैसी कहानियों ने न सिर्फ साहित्य को हिलाया बल्कि हुकूमतों को भी परेशान कर दिया। उन पर कई मुकदमे चले पर हर बार उनकी कलम की सच्चाई की ही जीत हुई। साथियों, क्या आप जानते हैं मंटो का रेडियो से बहुत गहरा रिश्ता था। 1941 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में काम शुरू किया। वहां बिताए गए करीब 1.5 साल उनके करियर के सबसे शानदार साल थे। उन्होंने आओ और तीन औरतों जैसे रेडियो नाटकों से सुनने वालों के दिलों में अपनी जगह बनाई।
0: दोस्तों, मंटो कहते थे कि वो समाज को गंदा करने वाले नहीं बल्कि उस समाज को गंदा करने वालों को बेनकाब करने वाले इंसान हैं। आज भले ही मंटो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी कहानियाँ आज भी उतनी ही कड़वी और सच्ची हैं।
2: तो दोस्तों, एक तरफ जय कृष्णमूर्ति ने लोगों को सोचने और खुद को समझने की नई दिशा दिखाई
0: और वहीं दूसरी तरफ आसफ अली ने अपने साहस और संघर्ष से देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
2: और वहीं मंटो ने हमें समाज का वो हिस्सा पढ़ाया जिसे अक्सर छुपाने की कोशिश की जाती है।
0: तो दोस्तों, ऐसी महान हस्तियों की जयंती हमें ये याद दिलाती है कि ज्ञान, ईमानदारी और साहस इंसान को महान बनाते हैं।
2: तो आइए आज के दिन हम भी उनसे प्रेरणा लें और अपने जीवन में अच्छे विचारों और जिम्मेदारियों को अपनाएं।
0: दोस्तों, आज हम उनकी भी बात करेंगे जिसने अपने कलम की
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।
5: चलिए दोस्तों, आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अब चलते हैं हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट करियर डायरी की ओर, जिसमें हमारा पहला सब सेगमेंट है जॉब अपडेट।
1: दोस्तों, आज के हमारे जॉब अपडेट में पहली जॉब अपडेट है CRPF, जिसमें कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2026 के तहत कुल पद 9,195 के लिए तकनीकी ट्रेडमैन और पायनियर के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। बात की जाए आयु सीमा की तो 18 से 23 वर्ष, और चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण और पोस्टल टेस्ट PET कंप्यूटर आधारित परीक्षा आदि के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन शुल्क जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये, SC ST और वुमेन्स के लिए कोई शुल्क नहीं। इसकी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
2: साथियों, अगली जॉब अपडेट है RBI ऑफिसर ग्रेड B 2026 की। आवेदन प्रक्रिया की तिथि 29 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 20 मई 2026 शाम 6 बजे तक है। योग्यता की बात करें तो स्नातक में न्यूनतम 60%, SC ST दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 50%। साथियों, आवेदन शुल्क की बात करें तो जर्नल OBC EWS के लिए 850 रुपये है और SC ST PWD के लिए 175 रुपये है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट IBPSREG.IBPS.IN पर विजिट कर सकते हैं।
1: दोस्तों, हमारी अगली जॉब अपडेट है UPSSSC सहायक सांख्यिकी अधिकारी ASO और ARO के लिए पदों की संख्या 1,565, जिसकी आवेदन तिथि 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुकी है और अंतिम तिथि 15 मई 2026 है, जिसके आवेदन शुल्क की बात की जाए सभी श्रेणियों के लिए 25 रुपये है और योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय से मैथ्स सांख्यिकी में स्नातक या

0: स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। इसकी आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: साथियों, हमारी आज की आखिरी जॉब अपडेट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2026 के लिए 1865 अप्रेंटिस पदों की घोषणा की है। इसकी आवेदन तिथि 29 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 19 मई 2026 तक है। योग्यता की बात करें तो किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क जर्नल ओबीसी मेल 944 रुपीज है और जर्नल ओबीसी फीमेल 708 रुपीज है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ट्रांसजेंडर के लिए 236 रुपीज है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .bank.in पर विजिट कर सकते हैं।
2: साथ ही हमारे सब सेगमेंट जॉब अपडेट्स में बस इतना ही।

0: साथियों, अब आपको लेकर चल रहे हैं हमारे आज के अगले सब सेगमेंट सफल व्यक्तित्व की ओर, जिसमें हमारी साथी मेघा ठाकुर ने बात की है पीएचडी स्कॉलर देवेंद्र कुमार जी से।
1: स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सब सेगमेंट सफल व्यक्तित्व में। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से बात करने जा रहे हैं जिनकी पहचान शब्दों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से है। नमस्कार सर।
2: नमस्कार मैडम।
1: आप हमारे श्रोता साथियों को अपना परिचय दीजिए।
2: जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं मथुरा से हूँ और मैं एक शोधार्थी।
1: हम आपसे जानना चाहेंगे आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं।
2: मैं वर्तमान में हिंदी विषय से पीएचडी कर रहा हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से।
1: बहुत अच्छी बात है सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पीएचडी तक का सफर कैसे शुरू किया।
2: इसकी शुरुआत हुई मेरी ग्रेजुएशन को लेके। पहले मैं हिंदी विषय को लेकर इतना नहीं था, न मुझे ये थी कि मुझे इस लाइन में जाना है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, एक व्यक्तित्व तो आपको प्रभावित करता है।
1: जी,
2: उस व्यक्तित्व में एक हमारे डॉक्टर राजेश कुमार, तो मेरे इस रास्ते के चयन में उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे लिए। उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ था ग्रेजुएशन में। वो मेरे टीचर रहे थे।

0: कि सर आपने बताया आपके जीवन में भी एक व्यक्तित्व ऐसे हैं उनसे आप प्रभावित हुए। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने नेट की परीक्षा को कैसे क्वालिफाई किया और आज आप PhD कर रहे हैं।
1: इसका श्रेय भी मैं उन्हीं को देना चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ अगर आप अपनी तैयारी शुरुआत से अच्छी करके चलते हैं तो आपको ऐसा नहीं कि एक साथ इतना बर्डन झेलना पड़े।
0: जी जी
1: ऐसा होता है कि हम पहले ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे मैंने ग्रेजुएशन में हमारे सर पढ़ा दे तो मैंने उन्हीं को पढ़ते पढ़ते मेरा इतना हो गया कि मैंने बस थोड़ा बहुत अपना पोटेंशियल लगाया और मेरा हो गया। मास्टर पहली ईयर में ही मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने 5-6 बार मैं क्वालिफाई किया है, 2 बार दोबारा किया है।
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप हम आपसे जानना चाहेंगे आपने जो तैयारी की किस तरीके से की।
1: दरअसल हुआ ये था कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए पहले मैं नेट की ना करके मैं कंपटीशन में कूदा था। तो जनरली जो 1 डे एग्जाम होते हैं उनकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था और उसी से थोड़ा बहुत जो समय मिलता था मुझे 1-2 घंटे हिंदी को देता था।
0: सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि विद्यार्थियों में भी यही रहता है कि हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए।
1: तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पहले एक अपना लक्ष्य निश्चित कर लीजिए जिससे भटकाव कम हो। फिर एक अपनी दिनचर्या बनाइए और उसका एक सिलेबस अपने पास रखिए और उसके हिसाब से अगर आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो आप जल्द ही अपनी मंजिल पा पाएंगे। और उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका टाइम टेबल या आप अपने टाइम टेबल के अनुसार ही चलें डेली। हो सकता है आज आप 10 घंटे पढ़ लें, कल आपको समय न मिले 10 मिनट पढ़ने के लिए, तो वो सब बैलेंस करना पड़ता है। बस
0: जी जी
1: वो आप बस उस कड़ी को मत टूटने दीजिए। ये मत कहिए आज मैं नहीं पढ़ पाया तो कल से फिर मैं और कोई नया टाइम टेबल लूँ। नहीं, जो पुराना है उसे ही चालू रखिए। आप उतार चढ़ाव आते हैं उन्हें आने दीजिए, कोई उसमें बड़ी बात नहीं होती है।
0: जी जी सर हमारे श्रोता साथियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो जब इस फील्ड में आना चाहते हैं।
1: जी फील्ड के लिए जैसे तैयारी आपको ग्रेजुएशन से ही शुरू करनी पड़ेगी। जहाँ तक अब जो हालांकि मैंने लेट करी थी, मैं नए साथी हूँ उनसे कहना चाहूंगा आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए आपका वैसा चयन क्या होगा और आप किसमें मास्टर्स करेंगे। और मास्टर्स की पहली साल से ही आप परीक्षा दे सकते हैं तो उसकी तो आप तैयारी ग्रेजुएशन से ही कर लीजिए, शुरू कर दीजिए। और बेसिक चीजें हैं आप पहले अपनी ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लीजिए। हालांकि आप ज्यादातर यूनिवर्सिटी में नेट का लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं, बाकी जो कुछ है आप मास्टर्स में जाएंगे वहाँ पे आप 40% वहाँ क्लियर हो जाएगा। बचा जो कुछ है आप अलग से 1-2 बुक लेके उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं।
0: सर हमेशा ये रहता है कि कौन सा विषय हम लें।
1: जी मेरा मानना है कि 2 चीजें होती हैं, एक अटा लगना और एक होता है अच्छा होना। दोनों में अंतर है। जनरली पॉलिटिकल पसंद है या हिस्ट्री पसंद है या सारी, लेकिन हमें ये पहचानना होता है कि हमारे लिए हमारी ताकत कौन बन सकता है। अब जैसे हिंदी है, कुछ जब ग्रेजुएशन या इंटर में जब तैयारी करते हैं तो हमें ये दिखता है कि भाई हमारे सारे सब्जेक्ट बैलेंस है, 70+ आ रहे हैं सब में नंबर, तो वहाँ हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है कौन सा। फिर हम देखते हैं रुचि किसमें है, हम किसको इतना समय तक पढ़ सकते हैं। ऐसा होता है कि एक विषय को लेकर हम अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें रुचि होती है शुरुआत में, फिर उसके बाद में बोरियत होने लगती है। तो ये लंबा सफर है, तो आप ये देखो कि हम सफर ऐसा होना चाहिए जो लंबा चल सके साथ। उसी हिसाब से आपको विषय चयन करना चाहिए के साथ वो लंबा चल सके और जिसके साथ आप लंबा चल सके।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोता साथियों के साथ अपनी जर्नी से रिलेटेड शेयर करी। आपने इतना कीमती वक्त हमारे आकाशवाणी रामपुर को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद।
2: दोस्तों अभी हमने सुना देवेंद्र कुमार जी को, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हमारी सफलता के पीछे किसी न किसी का मार्गदर्शन होता है। वो कहते हैं कि पहले हमें एक लक्ष्य चुनना चाहिए और फिर उसे प्राप्त करने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर किसी दिन ये कार्यक्रम टूट जाए तो निराश नहीं होना है और निरंतर प्रयास करते ही रहना है।

0: साथियों, अभी हमने सुना ये खूबसूरत सा गीत। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब सेगमेंट स्टार्टअप की ओर।
1: आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार्टअप आइडिया की जो बच्चों की मुस्कान के साथ साथ हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखता है। पर्यावरण अनुकूल खिलौनों का उत्पादन यानी कि इको कॉन्शियस टॉय ब्रांड स्टार्टअप।
2: दोस्तों, आजकल बाजार में ज्यादातर खिलौने प्लास्टिक से बने होते हैं। ये खिलौने जल्दी टूट जाते हैं और बाद में कचरे का हिस्सा बनकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, कई बार इन खिलौनों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स बच्चों की सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। इसीलिए अब लोग ऐसे खिलौनों की तरफ बढ़ रहे हैं जो सुरक्षित हों और प्रकृति के अनुकूल हों।
1: साथियों, पर्यावरण अनुकूल खिलौने ऐसे खिलौने होते हैं जो लकड़ी, बांस, मिट्टी, कपड़े, रिसाइकल पेपर या फिर ऑर्गेनिक कॉटन जैसे प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते हैं। इसमें हानिकारक प्लास्टिक और केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम होता है।
2: और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि ये खिलौने बच्चों की रचनात्मकता और सीखने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। जैसे लकड़ी के पजल, हाथ से बनी गुड़िया, शैक्षणिक एक्टिविटी किट और DIY क्राफ्ट किट बच्चों को मोबाइल और स्क्रीन से दूर रखकर उनकी कल्पना शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं।
1: अब बात करते हैं इस स्टार्टअप के स्कोप की। आजकल माता पिता अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद चाहते हैं। सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली चीजों की मांग तेजी से बढ़ रही है, इसलिए आने वाले समय में ऐसे खिलौनों की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगी।
2: और भारत में वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया जैसे अभियान भी स्थानीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार भी इस क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रही है। MSME योजना, मुद्रा लोन योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए छोटे व्यवसायों को आर्थिक सहायता और ट्रेनिंग दी जा रही है।
1: साथियों, अगर आप ये स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले बाजार को समझिए। ये जानिए कि बच्चे और माता पिताओं को किस तरह के खिलौने पसंद आ रहे हैं। फिर तय कीजिए कि आप लकड़ी के बने खिलौने बनाएंगे

0: शैशव खिलौने बनाएंगे या फिर छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित सॉफ्ट टॉय बनाएंगे।
1: और इसके बाद अच्छी गुणवत्ता वाले प्राकृतिक कच्चे माल का चुनाव कीजिए और ऐसी पैकेजिंग रखिए जो रिसाइकल हो सके। और आज के डिजिटल दौर में किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से अपने उत्पाद आसानी से बेच सकते हैं। अगर आपके खिलौने यूनिक, सुरक्षित और आकर्षक होंगे तो लोग आपके ब्रांड पर भरोसा जरूर करेंगे।
0: तो दोस्तों, पर्यावरण अनुकूल खिलौनों का उत्पादन एक ऐसा बिजनेस है जो बच्चों की खुशी, प्रकृति की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत तीनों को साथ लेकर चलता है।
1: और यही कारण है कि आने वाले समय में ये स्टार्टअप युवाओं के लिए एक शानदार अवसर बन सकता है।
2: साथियों, ये था हमारा आज का सब सेगमेंट स्टार्टअप। अब चलिए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अब वक्त है कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव का, यानी कि स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल के जवाब बताने का। हमने आपसे सवाल किया था, डोर्जी लुंग जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? और इसका सही जवाब है भूटान। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी,
1: गंगा सिंह रावत, गुरमीत सिंह, लालगिरी गोस्वामी, विमल सक्सेना भारती, श्री कृष्ण बाठे, भाई रफत साहब, सत्येंद्र चंसौलिया पजौनिया, मुकेश कश्यप, मिसबा शमशी, आकाश रस्तोगी, नबी हसन अब्बासी, जॉन डी कैस्ट्रो, सुनील पाठक, दुर्गाराम साहू, हीरा मणि वर्मा, नंद कुमार ठाकुर, बलवंत।

कुमार वर्मा, चौधरी राजवीर सिंह, जाकिर मंसूरी, अभिजीत गवांकर, हाजी गफ्फार खान, धीरज भाई रावाड़ी, रवि कुमार राहुल, नितेश कुमार देवांगन, देवशंकर तामूरिया, धर्मेंद्र छिपा, ताज अंसारी, सिद्धार्थ गोंडाने, शाहजी भोड़के, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, जगदीश धाकड़, आर्यन राज, इरशाद अहमद, दिग्दर्शन गौण, जागर राम साहू, लाल मोहम्मद अंसारी, अजीत कसाना, संजय ढींगिया, सुरेश खन्ना, भगवत चौबे लाडला जी, शाहरुन नूर अंसारी, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, पुंजा जी नापकर, पीएस नापकर, निर्मला नापकर, विशाल नापकर, नारायण प्रधान, राघव भेगाल, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, मसरूर हसन, एमडी यासिन अंजान, निसार सलमानी, मोहम्मद सईद अब्बासी, फागुराम यादव, विजय सुरलकर, प्रवीण चौहान, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। आप सभी श्रोता साथियों ने दिया है हमारे पूछे गए सवाल का सही जवाब, जिसके लिए आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में अब आपको सुनवा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा हमारे पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901। हमारा ईमेल एड्रेस है patramilaaarrampur@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा साथियों, नंबर है 9410087876। दोस्तों, अब दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की इजाज़त अपनी रेडियो साथी नव्य अग्रवाल
1: और मेघा ठाकुर को।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। हिंदी समाचार अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को

0: पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से एक वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक आवश्यक सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना कुड़फतेहगढ़ जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि अनेक पाल शर्मा पुत्र योगराज निवासी भगतपुर पहेली थाना कुड़फतेहगढ़ जिला संभल विगत 24 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 56 वर्ष, रंग सांवला, शरीर की बनावट औसत और चेहरा गोल है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना कुड़फतेहगढ़ जिला संभल मोबाइल नंबर 8077731349। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 8077731349। सूचना

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:10 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में ये खूबसूरत नगमा फिल्म आपकी कसम से।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में अभी आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था आपकी कसम। कार्यक्रम का अगला गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में फिल्म आर पार से।
1: मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो।

0: राग नैन मिलता है चैन, मूरख क्यों रोता है, मूरख क्यों रोता है।
1: मोहब्बत कर लो भी भर लो, मज किसने रोका है।

इसी के साथ कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति में अब आइए सुनते हैं अनामिका फिल्म का ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम था चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 होने को है। कृषि श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: आबो आबो अब्दुल हफी भैया, राम राम।
1: राम राम अखिलेश भैया, और हमारे किसान साथियों को भी हमारी दोनों भाइयों की तरफ से
0: राम राम। और भैया सब ठीक ठाक हैं घर पर? सब कुशल मंगल हैं
1: जी? अखिलेश भैया सब ठीक ठाक हैं, अपने सुनाइए।
0: हाँ भैया, हम भी ठीक हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारे सभी किसान साथी हैं वो भी कुशलता से होंगे और स्वस्थ होंगे। और हबीब भैया, अपने जो कृषिगत कार्यक्रम आजकल मई से जो शुरुआत हुई है ना, उनमें भैया कुछ बदलाव हुए
1: हैं। हाँ भैया, पहली तारीख से बदलाव हुआ है। तो क्या क्या बदलाव हुआ है
0: भैया? बुधवार के दिन हम अपने किसान साथियों के लिए सफल कृषक से भेंट सुनवाते हैं।
1: हाँ अखिलेश भैया, जो दूसरा बुधवार होता है उसमें सफल महिला कृषक से वार्ता सुनवाई जाती है,
0: और तीसरे बुधवार को जो हमारी मासिक कृषि गोष्ठी होती है उसका आयोजन किया जाता है,
1: चौथे बुधवार को सफल कृषि स्टार्टअप सुनवाया जाता है,
0: और इसी तरह पांचवें बुधवार को सफल कृषक से बातचीत सुनवाई जाती है यदि हो तो।
1: हाँ अखिलेश भैया, गुरुवार की बात करें तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष पर चर्चा की जाती है,
0: और दूसरे गुरुवार को

0: उससे जुड़े समाधान होते हैं वो सुझाए जाते हैं।
1: और इसी तरह तीसरे गुरु शुक्रवार को भी लोकमंजरी कार्यक्रम फरमाइशी लोकगीत पर आधारित कार्यक्रम सुनवाया जाता है।
0: हाँ कलेश भैया, अगर हम चौथे शुक्रवार की बात करें तो कृषि संघ का समाधान और समस्या व उससे जुड़े समाधान,
1: और पांचवें शुक्रवार को लोकमंजरी कार्यक्रम फरमाइशी लोकगीत पर आधारित यदि हो तो सुनवाया जाता है। और भैया, कुछ हमारे जो किसान साथी फोन के द्वारा अपने, जैसे फोन इन कार्यक्रम हमारा चलता है, उसके लिए हमारा फोन इन कार्यक्रम का जो नंबर है वो हमारे किसान साथी नोट कर लें, 0595-2324-326।
0: हाँ भैया, व्हाट्सएप SMS नंबर 9410087876।
1: और अगर हम ईमेल की बात करें तो हमारा ईमेल आईडी नंबर जो है patrmila@rampur.gmail.com।
0: हाँ भैया, इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और आकाशवाणी रामपुर से भी प्रोग्राम सुन सकते हैं।
1: और जैसे हमने पत्रों की बात करी, पत्राचार के लिए हमारा जो पता है वो है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901। तो भैया ये सूचना जो थी वो समाप्त हुई। और भैया अब बात थोड़ी सी कर ली जाए खेती बाड़ी की।
0: हाँ भैया, इस समय किसान भाइयों के लिए जो खेत हैं वो खाली हुए हैं, और हमारे किसान भाई इस समय गहरी जुताई करें। गहरी जुताई का मतलब है कि जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी अखिलेश भैया नीचे चली जाती है, तो हवा का संचार बना रहता है और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी होती है और जो मृदा का स्वास्थ्य होता है वो अच्छा होता है।
1: हाँ भैया, और मृदा की उर्वरता हमें बनाए रखने के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे भैया, अगर हम जैविक खादन को प्रयोग करेंगे तो हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है ना वो बरकरार रहेगी और हमें वहां अच्छी पैदावार मिलेगी।
0: हाँ, जैसे गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है, ये सब कंपोस्ट खाद कहलाती है और ये मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ाती है।
1: और इसी तरह जैसे आपने बात करी खाली खेतन की, तो जा समय हमारे गेहूं की कटाई के बाद बहुत से खेत खाली हैं क्योंकि धान की बुवाई में समय है, तो जा समय हमारे किसान साथी अपनी खेतन की अच्छी तरीके से जुताई करके वहां में हरी खाद उगा सके हैं, वो हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति को कायम रखने में बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं।
0: हाँ अखिलेश भैया, अगर हम फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र हमारे किसान भाई अपनाएं। फसल चक्र से क्या होता है कि जो हेर फेर से फसल बोई जाती है उसको फसल चक्र कहते हैं, तो इस तरीके से अगर फसल चक्र अपनाते हैं हमारे किसान भाई तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है और उर्वरता बढ़ती है जिससे जीवाश्म कार्बन बढ़ता है।
1: और साथ ही भैया, फसल अवशेष प्रबंधन की अगर हम बात करें तो फसल काटने के बाद उनके जो अवशेष जैसे पराली है, डंठल है, उनको भैया जलाए ना, उन्हें खेत में ही जोतकर सड़ा दें जिससे मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और इससे हमें कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं।
0: हाँ भैया, अगर हम बात करें मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की तो जो जैव उर्वरक होते हैं उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर रासायनिक डालते हैं, तो जैव उर्वरकों में एजोटोबैक्टर जो कि दलहनी जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उसके लिए आता है। अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो राइजोबियम कल्चर आता है, और अगर हम एसिटोबैक्टर की बात करें तो वो गन्ने के लिए आता है, तो और एक PSV कल्चर होता है अखिलेश भाई। ये PSV कल्चर फास्फेटिक जो हम डालते हैं रासायनिक खाद या पहले से पड़ी हुई मौजूद हैं खेतों के अंदर, तो वो PSV जो होता है वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको चूसने के बाद वो पौधों को देते हैं और हमारे जो मृदा की शक्ति है वो बढ़ती है और पौधों का जो विकास होता है वो तेजी से होता है।
1: और भैया, इसी तरह अगर हम बात करें खाद और उर्वरकों के सही प्रयोग की, तो उसके लिए हमारे किसान साथी हर 2-3 साल पर अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं ताकि यह पता चल सके कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और मिट्टी की उर्वरा बढ़ाने के लिए हमें सही खाद कौन सी है, किसका हमें उपयोग करना है।
0: हाँ भैया, और साथ साथ मल्चिंग का करना भी बहुत जरूरी है। मल्चिंग खेत की मिट्टी को सूखी पत्तियों, घास या पराली से ढके, इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है अखिलेश भैया वो बढ़ती है।
1: तो हमारे सभी किसान साथी इन तमाम बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही वो अपनी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वाको बनाए रखेंगे और अपनी खेती बाड़ी से अच्छी पैदावार लेके अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। और भैया, अब अपने किसान साथियों को कहो तो एक भेंट वार्ता सुनवा दिया है।
0: हाँ अखिलेश भैया सुनवाइए।
1: विषय है बेल वाली फसलों में कीट व रोग प्रबंधन। जय विषय पर जानकारी दे रही हैं आप हैं डॉक्टर सैलवाल। ये जानकारी हमें पंतनगर से प्राप्त है, तो आप सुनो और हमारे किसान साथी भी सुने ये जानकारी।
2: सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर सैलवाल।

0: वाला मैम जो कि प्रोफेसर है प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में,
1: इस मंच में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: मैम हमारा जो आज का विषय है वो है कद्दू वर्गीय सब्जियों के प्रमुख रोग और उनका प्रबंधन। तो सबसे पहले हम ये मैम जानना चाहेंगे आपसे कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख रोग आते हैं।
1: जब हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें एक मृदुरोमल आसिता, एक चोलन आसिता, उकठा रोग आता है, एंथ्रेक्नोज आता है, इस तरीके के कई सारे प्रमुख रोग आते हैं। सबसे पहले हम मृदुरोमल आसिता के बारे में बात करेंगे। इसे इंग्लिश में डाउनी मिल्ड्यू बीमारी भी कहा जाता है और यह कद्दू वर्गीय फसलों का एक अत्यंत विनाशकारी रोग है। जब हम इस रोग की बात करते हैं तो नमी युक्त वातावरण और हमारा जो तापमान है मध्यम, ये दोनों ही चीजें तीव्र गति से रोग को फैलाती हैं। इस रोग में पौधे की पत्तियों पर हम विशेष रूप से आप देखेंगे कि सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं
0: जी,
1: जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है और ये हमारे वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित करते हैं
0: जी।
1: इस रोग के जो प्रमुख कारक होते हैं वो फफूद है। फफूद में एसिडोपनोसपोरा नाम की एक फफूद है, वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। शुरुआती जब हम लक्षणों की बात करते हैं तो पत्ती की ऊपरी सतह पर कोणे आकार के पीले पीले धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे रोग की तीव्रता बढ़ती है ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ते हैं और इन्हीं धब्बों के नीचे की पत्ती की निचली सतह पे हमें बैगनी या सलेटी रंग की फफूद की वृद्धि दिखाई देती है
0: जी।
1: अगर हम इस वृद्धि को देखेंगे तो ये माइसीलियम की फंगस की माइसीलियम की वृद्धि होती है जो कंफर्म करती है कि इस कद्दू वर्गीय सब्जी में मृदुरोमल आसिता रोग है। रोग का जब अधिक प्रभाव होता है तो उसके परिणाम स्वरूप पत्तियां सूख कर समय से पहले ही गिर जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाती है
0: जी।
1: इस तरह उसका पूरा जीवन चक्र बाधित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप हमारा फूल बनने की प्रक्रिया और फल बनने की प्रक्रिया दोनों की बाधित होती है
0: जी। मैम जो इसके अनुकूल वातावरण होता है इसके लिए वो क्या रहता है?
1: इसके अनुकूल वातावरण के लिए मतलब फफूद के अनुकूल वातावरण के लिए दिन में जो तापमान है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और रात में हमारा मौसम ठंडा होना चाहिए तथा अधिक नमी और लगातार वर्षा और सिंचाई का लगातार खेतों पे देना, ये हमारे अनुकूल परिस्थितियां होती है जिसके परिणाम स्वरूप हमारा फफूद बहुत ही तेजी से खेतों में फैलता है
0: जी। मैम अगर इसके प्रबंधन की बात करें कि इस रोग को किस तरह से रोका जा सकता है?
1: देखिए सबसे पहले तो हमें अपने खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जो भी हमारे रोगरोधी पौधे हैं उनके अवशेष हैं उसको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए
0: जी।
1: जहाँ तक संभव हो सके हमें रोग प्रतिरोधी किस्मों का ही चयन करना चाहिए। जैसे ही हमें इस रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते हैं, पत्ती की ऊपरी सतह पे जहाँ पीले रंग के कोने धब्बे जब दिखाई देने लगते हैं उस स्थिति में हमें फफूंद नाशक मैनकुजेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, इसके अलावा मेटालेक्सिल प्लस मैनकुजेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर खेतों में छिड़काव करना चाहिए
0: जी। तो चूड़ल आसिता में हमारे जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होते हैं?
1: यह रोग भी मुख्यतः फफूंद के कारण ही होता है
0: जी।
1: शुरुआत में हम देखते हैं कि जो चूड़ल आसिता नाम का जो रोग है ये विशेषतः शुष्क और गर्म वातावरण में जलवायु में बहुत तीव्र गति से प्रकट होता है
0: जी।
1: और यह चूड़ल आसिता पूरे हमारी पत्तियों को, तनों को, फूलों को और फलों को प्रभावित करता है
0: जी।
1: जिसके परिणाम स्वरूप हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, ये हमारी उपज को और उसकी गुणवत्ता को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है
0: जी।
1: इस रोग के हम कारक की बात करते हैं तो फफूंद ही हमारे इस रोग का कारक है और ये फफूंद वायु के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलती है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करेंगे तो हम देखते हैं शुरुआती लक्षण में पत्ती की निचली सतह पर हमें पाउडर जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे जैसे रोग की तीव्रता बढ़ने लगती है, जब शुष्क परिस्थितियां आती है रोग की तीव्रता बढ़ती है, पाउडर जैसे धब्बे जो है पूरी पत्तियों को, तनों को, डंठलों को कवर कर लेते हैं, उन पर फैल जाते हैं। इसके बाद हमारी पत्तियां भूरी होकर सिकुड़ने लगती है और तत्पश्चात गिरने लगती है
0: जी।
1: अनुकूल वातावरण के लिए हमें तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। हमारी जो नमी है बहुत ही शुष्क होनी चाहिए। हल्के बादल का छाना और बहुत ही हल्की बारिश जो है इस रोग के फैलने में बहुत ही प्रभावी होती है। ह्यूमिडिटी होती है जैसे शुष्क वातावरण, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इस रोग के फैलने में
0: जी।
1: अगर हम प्रबंधन की बात करेंगे, क्योंकि यह रोग वायु के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक लाइन से लाइन की दूरी तथा पौध से पौध की दूरी उचित बनाए रखें ताकि पूरा खेत में वायु का संचरण पर्याप्त मात्रा में हो सके। इसके अलावा हमें रोगरोधी पौधे अवशेषों को अपने खेतों से हटा करके नष्ट कर देना चाहिए
0: जी।
1: तथा हमें

0: प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। जैसे ही हमें स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें फफूंदनाशक हेक्साकोनाजोल का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा हम जो है सल्फर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका भी हम खेतों में छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी मैम, इसके अलावा कौन सा रोग हमारे कद्दू वर्गीय फसलों में देखा जाता है?
0: देखिए, दोनों हमने जोंडेलासिता और नदरोमिलासिता की बात कर ली। अब इसके अलावा जो रोग आता है उसे उकता रोग कहते हैं। यह एक गंभीर रोग है। ये हमारा वेस्कुलर बंडल जो नल की प्रणाली है उसको प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप जो हमारे पौधे अचानक से मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं और मर जाते हैं। यह रोग विशेषतः गर्म और आर्द्र जलवायु में तीव्र गति से फैलता है जो हमारे फसल की उपज में भारी गिरावट करता है।
1: जी।
0: हम इस रोग के रोगकारक की बात करेंगे तो फ्यूजेरियम नाम का जो फफूंदनाशक है वो इस रोग को फैलाने में बहुत अधिक मदद करता है। यह फफूंदनाशक मुख्यतः मिट्टी में रहता है। यह एक मृदा जनित फफूंदनाशक है। हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो शुरुआत निचली पत्तियां मुरझाने लगती हैं, धीरे धीरे ये पूरा पौधा प्रभावित हो जाता है, पूरा पौधा मुरझाने लगते हैं, पत्तियां पीली होकर झुलसने लगती हैं तथा तना ऊपर से लेकर नीचे की ओर सूखने लगता है। अगर हम तने को फाड़ते हैं, लंबवत फाड़ते हैं तो हम देखें कि अंदर का जो भाग होता है, जो नलिकीय प्रणालियां होती हैं, वो भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब कि हमारे पौधे में एक आंतरिक संक्रमण हो चुका है।
1: जी।
0: तो रोग अधिक होता है, रोग की तीव्रता बढ़ने पे पूरा पौधा पूरी तरीके से सूखकर नष्ट हो जाता है।
1: मैम, अगर इसके हम जो रोग है इसके प्रबंधन की बात करें तो इस पर हमारे किसान भाई किस प्रकार से इसका प्रबंधन कर सकते हैं?
0: यह फफूंदनाशक फ्यूजेरियम जिसको बोलते हैं, यह मिट्टी में रहता है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि 3 से लेकर 4 वर्षों तक फसल चक्र अवश्य अपनाना चाहिए। स्वस्थ रोग मुक्त बीजों का चयन करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके खेत में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए तथा रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। हमें कार्बेंडाजिम का 2.5 किलोग्राम बीज की दर से हमें बीज उपचार भी कर देना चाहिए। अगर हम कार्बेंडाजिम से बीज उपचार नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह हम ट्राइकोडर्मा का 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग कर सकते हैं। रोग की तीव्रता ज्यादा बढ़ने पे, खेतों में ज्यादा रोग दिखाई देने पे हमें फफूंदनाशक हेक्साकोनाजोल का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रभावित क्षेत्रों में हम स्प्रे कर सकते हैं, उसकी ब्रांचिंग कर सकते हैं।
1: जी।
0: और इसके अलावा हम जो कार्बेंडाजिम का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ों के आसपास मिट्टी में जो है ब्रांचिंग कर सकते हैं।
1: जी मैम, कई बार हमारे पास क्वेरी आती है कि किसान कहते हैं कि एंथ्रेक्नोज जो रोग होता है वो भी फैल जाता है कद्दू वर्गी में, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
0: ये एंथ्रेक्नोज भी एक महत्वपूर्ण फफूंद से होने वाला रोग है जो मुख्यतः गर्म और आर्द्र जलवायु में बहुत तीव्र गति से फैलता है।
1: जी।
0: इस रोग के लक्षण पत्ती, तने, फलों, डंठलों पर दिखाई देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पौधे की वृद्धि, विकास और उपज पूरी तरह प्रभावित हो जाती है।
1: जी।
0: और रोग की उपस्थिति होने पर जो हमारा कद्दू वर्गीय जो फल है वो विकृत हो जाता है और भंडारण क्षमता भी कट जाती है।
1: जी।
0: देखिए, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये फफूंद से होने वाला रोग है। तो इस रोग का मुख्य कारक कोलिटोट्राइकम नामक फफूंद होता है जो कद्दू वर्गीय पौधे के ऊतकों पर संक्रमण करता है।
1: जी।
0: अगर हम इस रोग के लक्षणों की बात करते हैं तो शुरुआत में हम देखते हैं पत्तियों पर गोल या अनियमित भूले काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं।
1: जी।
0: धीरे धीरे ये धब्बे पूरी पत्ती पे फैल जाते हैं, उसके पास सूख जाते हैं। तत्पश्चात ये धब्बे आपके तने पे, डंठलों पे दिखाई देते हैं, वहाँ पे भी आपके धब्बे बनाते हुए पूरे पौधे की संरचना को कमजोर कर देते हैं।
1: जी।
0: फलों पे भी हमें गहरे धसे हुए धब्बे दिखाई देते हैं जिसपे हम देखते हैं कि गुलाबी रंग की फफूंद दिखाई देती है। गुलाबी रंग की फफूंद उस धब्बों में विकसित हो जाती है और यह फल की गुणवत्ता तथा उसकी मार्केटिंग योग्यता को प्रभावित करता है। अगर हम इसका अनुकूल वातावरण की बात करेंगे तो इसके लिए तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। हमारी आर्द्रता ह्यूमिडिटी 85% से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा बारिश, अधिक सिंचाई, कद्दू वर्गीय फसलों की घनी बुवाई जिसके परिणाम स्वरूप खराब वायु संचरण, ये सब रोग के होने के कारण के लिए बेहद ही उपयुक्त है। अगर हम इस रोग के प्रबंधन की बात करते हैं तो हमें अवश्य ही स्वस्थ और प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए, रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, जो भी संक्रमित अवशेष हैं खेतों में उनको नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा फफूंद मृदा जनित है तो उसके लिए हमें फसल चक्र अवश्य अपनाना चाहिए, खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर देनी चाहिए तथा रोग की तीव्रता बढ़ने पर हम फफूंदनाशक मैनकोजेब का या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे

0: सकते हैं। मैनकोजेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर हम खेतों में छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी मैम, मैम ये तो नहीं फफूंदी से जो रोग विकसित होते हैं हमारी कद्दू वर्गीय फसल में, मैम इसके अलावा क्या कोई विषाणु रोग जिनको वायरल डिजीज कहा जाता है ये भी कोई कद्दू वर्गीय फसलों में आते हैं?
0: कद्दू वर्गीय फसलों में जरूरी विषाणु वायरस से होने वाले रोग भी आते हैं
1: जी,
0: जिसमें हम मोज़ेक उसको रोग कहते हैं, और ये कई तरीके के विषाणु के कारण होता है, और ये सभी विषाणु जो है रस चूसने वाले कीटों द्वारा एक पौधे से दूसरे स्वस्थ पौधे में स्थानांतरित होते हैं
1: जी,
0: और ये कोशिकीय क्रियाओं को प्रभावित करके पौधे की पूरी संरचना और क्रियाशीलता को विकृत कर देते हैं
1: जी।
0: देखिये यह रोग मुख्यतः रस चूसने वाले कीट जैसे चेपा, सफेद मक्खी, थ्रिप्स आदि के माध्यम से फैलता है, और एक बार संक्रमित हो जाने पर पौधे का उपचार संभव नहीं हो पाता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें कीट प्रबंधन ही करना चाहिए, यही एक प्रभावी उपाय है
1: जी।
0: अगर हम इसके लक्षणों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी पत्तियां मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है, तथा पत्तियों में पीलापन दिखाई देता है। पीलापन के साथ साथ हमें बीच बीच में गहरे हरे रंग के धब्बे भी दिखाई देते हैं
1: जी,
0: तथा पत्ती की शिराएं के बीच वाला भाग पीला हो जाता है, जिसे हम मोज़ेक लक्षण भी कहते हैं। उसके परिणाम स्वरूप हमारे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और हमारा पौधा जो है पूरा बौना हो जाता है
1: जी,
0: और इस विकृत पौधे में फल नहीं लगता है, फूल नहीं लगता है। अगर फल या फूल लग जाता है तो वो भी विकृत हो जाते हैं
1: जी।
0: जब हम अनुकूल वातावरण बात करते हैं तो रस चूसने वाले कीटों को जो है जो तापमान है 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए रहता है, इसके अलावा मध्यम से लेकर अधिक हमारी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कीटों की अधिक संख्या लगातार एक ही खेत में एक ही प्रकार की खेती होने के कारण रोगवाहक कीट जो है बेहद ही अनुकूल परिस्थितियों में उस खेतों में पनपते हैं
1: जी।
0: तो इस रोग के प्रबंधन के लिए हमें जहाँ तक संभव हो सके सबसे पहले हमें रोगग्रस्त पौधों को खेत से तुरंत उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए, और फसल चक्र अवश्य अपनाना चाहिए, जहाँ तक संभव हो प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, और हमेशा स्वस्थ पौधों को का ही रोपण करना चाहिए
1: जी।
0: और खेतों के चारों तरफ हमें ट्रैप लगानी चाहिए, पीले रंग की चिपचिपी ट्रैप लगानी चाहिए। पीला रंग देख के जो उसमें रस चूसने वाले कीट होते हैं उसमें प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, तथा उस ट्रैप में वो चिपक जाते हैं, और रोग की स्थिति ज्यादा बढ़ने पे हम कीटनाशक इमिडाक्लोप्रिड का 3 से 5 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव भी कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड के अलावा हम कीटनाशक थायोमेथोक्सम का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके हम कीट को नियंत्रित कर सकते हैं, हम रोग को फैलने से हम रोक सकते हैं। तो इस तरह हम अपने विषाणु रोगों को रोकथाम कर सकते हैं
1: जी। तो मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने बताया कद्दू वर्गीय फसलों में कौन कौन से रोग कवक के द्वारा या फंगस के द्वारा आते हैं और कौन से रोग वायरस के द्वारा फैलते हैं। आपने इतनी अमूल्य जानकारी दी और इतना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों अभी आप भेंटवार्ता सुन रहे थे, विषय था बेल वाली फसलों में कीट व रोग प्रबंधन। जानकारी दे रही थी डॉक्टर शैलवाला जो कि पंतनगर से प्राप्त जानकारी थी।
3: और भैया हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी ने ये जानकारी बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ध्यान से सुनी होगी, और यह जानकारी को हमारे सभी किसान साथी पूरे लाभ उठाएंगे। और भैया जब बात लाभ की आते हैं ना तो मन करते हैं कि कुछ गानों बजान हो जाए, क्योंकि जो हमारे कार्यक्रम को समय है वो शाम को समय है, जहाँ समय लगभग हमारे सभी किसान साथी अपने खेती बाड़ी के कामों को निपटा के घर पर बैठे आराम कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, आपस में कर रहे होते हैं बातचीत। ऐसे में भैया गानों बजान हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो दिन न करते हुए हम अपने किसान साथियों के लिए सुनवाते हैं जो बढ़िया सो लोकगीत बोल हैं मोरी नथनी में, आवाज है मृदुला निगम बा उनके साथी की। तो आप सुनते जो लोकगीत।

0: कहो भैया, कैसे लागो जी लोकगीत?
1: हाँ अखिलेश भैया, अच्छा लगा।
0: और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोकगीत सुन के हमारे किसान साथियों को मनोरंजन है वो भरपूर, और जो उनकी पूरे दिन की थकान है वो है वो दूर। और भैया अब समय चला है कार्यक्रम क्षेत्र संकलित कार्यक्रम का, तो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे अब्दुल हफीज भैया यानी कि आप गए हैं ग्राम रोली बिलाक उजियानी जिला बदायूं, वहाँ आपने प्रगतिशील कृषक से बातचीत कर उनके साथ अनुभव साझा करें। आप लक्ष्मी राठौर हैं, तो आप सुनो और हम सुनते हैं इन दोनों के बीच की गई ये बातचीत।
2: जी अपना परिचय दीजिए।
3: मेरा नाम लक्ष्मी राठौर है।
2: जी
3: जी, मेरा घर पड़ता है रोली
2: जी। ब्लॉक कौन सा है?
3: ब्लॉक उजियानी जिला बदायूं।
2: जी, क्या काम करते हैं राठौर साहब?
3: काम तो

0: उसको ये खेती भी करते हैं और भैंस पालन भी है
1: जी। खेती में कितनी जमीन है अपनी?
0: खेती में है करीब 50-60 जमीन है।
1: अच्छा, तो क्या क्या लगा रखा है इस समय?
0: अभी इस समय तो मिर्ची होती है, शिमला मिर्च होती है।
1: हाँ, शिमला मिर्च है, सोलजा मिर्च है,
0: उसी में वो मक्का लगा रखी है।
1: अच्छा, मिर्च भी है और उसी में मक्का लगा। मिर्च चल रही है इस टाइम, खत्म हो गई?
0: एक दो खेतों चल रही, बाकी मक्का बड़ी होगी काफी, तो उसमें तोड़ने में दिक्कत होती है
1: जी।
0: मक्का वो पकने वाली है और थोड़े दिन रहेंगे बाकी।
1: अच्छा, मक्का कितनी लगाई थी आपने?
0: मक्का करीब 40-47 दिन का है।
1: अच्छा, कौन सी प्रजाति की है?
0: एक बादशाह प्लस है, वो कुछ दानवीर है।
1: अच्छा,
0: और कुछ पैनियर है।
1: तो इस आपके यहाँ साडा धान लगता है? वो तो नहीं लगता।
0: नहीं, धान नहीं होता ये वाला।
1: अच्छा, मिर्च ज्यादा होती है?
0: मिर्च होती है, भाई तरबूज है, तरबूज काफी होता है मेरी तरफ से।
1: जी जी। अच्छा, मक्का की अगर बात करें तो मक्का किस समय लगाई थी आपने?
0: मक्का हमारे लगती है जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक लगती है
1: जी। तो आपने जनवरी में लगाई, मार्च में लगाई है?
0: हमने मार्च में लगाई है, कुछ फरवरी में लगाई है।
1: अच्छा, तो मक्का जैसे तैयार हो जाती है तो उसका भुंटा बेचते हैं या उसका दाना तैयार करते हैं आप?
0: तैयार होकर उसको निकलवा के मंडी लगा देते हैं ट्रॉली।
1: जी जी। तो मंडी कहाँ लगती है अपने?
0: मंडी अपनी उजानी लगती है।
1: उजानी?
0: हाँ, काफी बड़ी मंडी है, काफी फार्मर आते हैं, इधर आते हैं। कलाम है, म्याऊ है, बाकी पटियाली गंडवारा है, काफी दूर दूर के फार्मर आते हैं
1: जी। अगर जी जी, मक्का में इस समय बहुत ज्यादा कीट का प्रकोप देखा गया है, तो क्या अपने तरफ कीट का प्रकोप होता है?
0: हाँ होता है।
1: क्या लगाते हैं उसमें?
0: कोई दवाइयाँ हैं लगाते हैं।
1: कौन कौन सी दवाई लगाते
0: हैं? है, और दवाइयाँ तो कई क्वालिटी आती हैं
1: जी। तो अपने तरफ कितनी मक्का निकल आती है?
0: मक्का हमारे 10-12 क्विंटल बीघा निकल आती है।
1: 10-12 क्विंटल बीघा, ठीक है, अच्छा है। और मक्का के बाद क्या लगाते हैं आप?
0: मक्का के बाद सूरज की तैयार हो जाएगी
1: ये मक्का, कब कट जाएगी आपसे?
0: मक्का कुछ तो लो 15 दिन के बाद कटने वाली है, कुछ 20 दिन ले लेगी।
1: मई 15 जून से पहले पहले आपकी मक्का
0: कट जाएगी, तैयार हो जाएगी शिमला मिर्च की।
1: शिमला की धान नहीं लगाते?
0: धान कम लगाते हैं, धान हमारे यहाँ थोड़ा कम होता है।
1: अच्छा, तो शिमला मिर्च तो अभी तो तैयार खेतों में भी खड़ी है शिमला मिर्च। फिर कैसे तैयारी करते हो शिमला मिर्च की?
0: ये इसमें टोटल जो मकड़ी है ना, ये कटवा उसकी जुताई करा देंगे, ठीक है? जुताई कराने के करीब 2 जुलाई में वो टेंट लगा देते हैं। एक टेंट जो मक्का होता है, 1 से 1.5 महीने में बीज के लिए लग जाता है, मेहनत तैयार करने में।
1: टेंट लगा के उसकी नर्सरी तैयार करते हैं?
0: नर्सरी तैयार कर देते हैं, नर्सरी लग जाता है, 1 से 1.5 महीने लग जाता है तैयार करने में। उसके बाद मौसम आ जाता है बरसात का, उस समय लगा देते हैं।
1: तो आई शिमला मिर्च लगती है आपके यहाँ पर?
0: हाँ, आई लगती है।
1: तो आपके तो शिमला मिर्च का रेट भी बहुत कम रहा है।
0: नहीं, इस बार अच्छा रेट रहा है।
1: अच्छा अच्छा रहा है,
0: अच्छा फायदा भी हुआ, अच्छा रेट हुआ है। बहुत फार्मरों को 1 लाख रूपये बिया बिका है, बहुत अच्छा रेट हुआ।
1: तो बहुत अच्छा रेट मिला है।
0: हाँ, बहुत अच्छा रेट मिला है, क्योंकि शिमला मिर्च में 10-12 तो हो जाते हैं।
1: जी जी।
0: रेट ठीक ठाक रहा है।
1: क्या क्या डालते हैं शिमला मिर्च में?
0: शिमला मिर्च में प्लांट बूस्टर आता है, वो डाल देते हैं
1: जी।
0: और 10 किलो बिया DAP डालते हैं
1: जी।
0: और 1.5 किलो बिया अल्ट्रा भी आती है, 50% वो डालते हैं
1: जी।
0: और वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड, उनको जो 100 ग्राम भी वो डालते हैं जड़ में नीचे,
1: पेड़ में नीचे, हाँ, फंगस ना लगे।
0: हाँ, और पोटाश डाल देते हैं, कई घटक लगते हैं उसमें। तो
1: जी जी जी।
0: तो इतना लगा लो उतना अच्छा हो जाता है।
1: जी जी जी। अच्छा, जैसे ये अब आपकी मक्का कटेगी, मक्का कटने में और जो आपका शिमला मिर्च का जो गैप रहेगा उसमें क्या चीज लगाते हैं, या खेत जोत के ऐसी खाली छोड़ देते हो आप?
0: फिलहाल जोत के खाली छोड़ देते हैं, बरसात होती रहती है, जो मकड़ी गलती रहती है,
1: मक्का गलती रहती है, तो उसमें ढांचा नहीं होता है आप?
0: नहीं, ढांचा नहीं होते हैं।
1: अगर आप हरी खाद ले रहे हैं ढांचे के रूप में, ढांचा बखेरने हैं, और जब वो आपका शिमला मिर्च कटने को तैयार हो, उससे 8-10 दिन पहले उसे जोत के खूब बढ़िया करके, तो आपके शिमला मिर्च तो और अच्छी होगी उससे।
0: लेकिन हमारा होता क्या, आपको इतना टाइम मिल नहीं पाता है।
1: जी जी।
0: कुछ लोग भी उसे अभी जून में कटेगी, ठीक है
1: जी,
0: किसी की जून के बाद भी कटेगी, उसे मौसम खुल नहीं पाता है, खेल नहीं पाते, सही से बरसात आ जाती है ना, टाइम कम हम लोगों के पास।
1: पशुपालन में क्या करते हैं राठौर साहब, क्या क्या पाल रखा है?
0: भैंसे हैं, अभी बिक्री कर दी है, 8 भैंसे हैं।
1: तो दूध दे रही होंगी?
0: 2 गावें ना, बाकी दूध दे रही हूँ।
1: अच्छा, दूध का क्या करते हैं आप?
0: दूध गाँव में डेयरी है, कई डेयरी है गाँव में।
1: अच्छा,
0: तो भाई दूध भेज देते
1: हैं? हाँ, ये सुबह शाम दोनों का बिक जाता है?
0: हाँ, दोनों का बिक जाता है।
1: अच्छा, जो गोबर होता है उसका क्या करते हैं?
0: वो जैसे खाद बन जाता है खेत में डाल देते हैं। जून में, जून के बाद खेत खाली हो जाएंगे ना
1: जी, जी।
0: तो जुलाई में खेत में डलवा देंगे।
1: हाँ, एक तरह से जो है देसी खाद एक तरह से मिट्टी के लिए वरदान है।
0: हाँ, देसी खाद बहुत जरूरी है।
1: जी जी, आप देख रहे हैं आपके नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस बहुत दिक्कत।
0: हाँ, सारी चीज
1: तो ये देसी खाद तो सबसे बढ़िया खेतों के लिए होता ही है।

0: और पशुपालन में जैसे आपने बताया 8 भैंसे हैं, 2 गावन हैं, 6 दूध दे रही हैं,
1: 6 दूध दे रही हैं,
0: तो गाय नहीं है अपने पास?
1: गाय थी लेकिन बिक्री कर दी थोड़े दिन पहले भी।
0: अच्छा अच्छा, एक बीमारियां चलती हैं इस समय गर्मी में, बरसात का समय आ रहा है, खुरपका मुंहपका, उसके लिए क्या इंतजाम करते हैं आप?
1: अभी तो नहीं चल रही है, चलेगी नहीं, बुराई कर पाएगी।
0: हाँ, तो उसमें टीकाकरण होता है, तो क्या आपने टीकाकरण करा लिया?
1: हाँ करा देते
0: जी। टीकाकरण कहाँ से कराते हो आप?
1: टीम घूमते गाँव उनसे करा देते, ब्लॉक से करा देते।
0: जी कराना बहुत जरूरी है, कृमि हो जाते हैं यानी कि कीड़े हो जाते हैं, उसकी दवाइयाँ पिलाते हैं आप?
1: वो हम 1 महीने का कैसे देते रहते हैं आपको बताएं।
0: कौन सी दवाई देते हैं?
1: वो आती है एंडोडोलियो आती है, वो वजन के हिसाब से आती है
0: जी जी,
1: वो खुलवा देते हैं।
0: अच्छा, चारे में क्या व्यवस्था कर रखे आपने?
1: चारे में शरीर देते हैं, हरा चारा जो है
0: जी,
1: वो खिलाते रहते हैं, बाकी भूसा ले लेते हैं इकट्ठा ही, उसमें चलता रहता है।
0: हाँ, तो आप गेहूं तो करते नहीं? गेहूं करते हैं?
1: गेहूं नहीं करते हैं, भूसा मोल मंगाया जाता है।
0: मोल मंगाते हो? मोल कहाँ से आता है आपका?
1: मोल नहीं, लोकल से लेते हैं, जो यानी हम लोग लेके आ जाते हैं ट्रॉली, उनसे खरीद लेते हैं।
0: आपके यहाँ से उजानी कितना दूर पड़ता है?
1: हमारा तो बस 2 से 2.5 किलोमीटर है मात्र।
0: अगर हम साफ सफाई की बात करें तो ये जो पशुपालन होता है इसमें जो बाड़े होते हैं, मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसकी आपने क्या व्यवस्था बना रखी है?
1: उसमें एक कुपर बना रखा है, फिनाइल का तेल आता है
0: जी,
1: धुलाई करते हैं, तो धुलाई करने के बाद उसको छिड़काव कर देते हैं
0: जी,
1: उससे कोई दिक्कत नहीं है। मक्खी है, ये कीड़े वगैरह है, ये उड़ने वाले कीड़े होते हैं।
0: हाँ, पशुओं में अगर साफ सफाई की व्यवस्था ठीक ठाक रहे तो दूध का भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है,
1: बीमारी कम रहती है। बाकी
0: जी जी, पानी की तालाब में या आप नल से पानी पिलाते हैं?
1: नहीं, समय लगा रखा है, उसी बुलवा देते हैं।
0: हाँ, पहले क्या था कि तालाब हुआ करते थे, उसमें
1: तालाब कहाँ है? तालाब नहीं, तालाब में गंदा पानी जा रहा है, लेटरिन वगैरह घर में रखी है, गंदा फिल्म पानी जाता है उसमें, वो बुलवाने का उचित नहीं है,
0: के लिए बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और हमारे किसान भाई आपको सुन रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी फसलें करें हमारे किसान भाई जिससे उन्हें आमदनी हो, मुनाफा ज्यादा हो?
1: अपने टाइम से वही होना चाहिए, ठीक है
0: जी,
1: टाइम से सिंचाई होना चाहिए, ठीक है, और जो लागा तो देसी खाद डालना चाहिए, ठीक है, बाकी ये दवाइयाँ उसमें कम होना चाहिए, जब खाद पड़ी होगी तो उस खेत में धान होगी तो भी फसल की उपज अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी।
0: साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रगतिशील कृषक श्री लक्ष्मी राठौर जी से बातचीत सुन रहे थे। ये थे रौली ब्लॉक उझानी तहसील जिला बदायूं से। साथियों, जानकारी अच्छी लगी होगी
3: और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी किसान साथी यह जानकारी को पूरा लाभ उठाएंगे। और भैया, अब बात करें हम कृषि संकेत कार्यक्रम की, तो कृषि संकेत कार्यक्रम में आज का जो जानकारी का विषय है वो है दुधारू पशुओं से अधिक उत्पादन कैसे लें।
2: हाँ अखिलेश भैया, दुधारू पशु गाय भैंस से अधिक उत्पादन लेने के लिए संतुलित पोषण, उचित देखभाल और सही प्रबंधन की आवश्यकता होती है, जहां दूध उत्पादन बढ़ाने के कुछ उपाय भी हैं।
3: हाँ भैया, अगर हम संतुलित आहार की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण हरा और सूखा चारा। पशु को प्रतिदिन लगभग 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 4 से 6 किलोग्राम सूखा चारा भूसा देना चाहिए। चारे में फलीदार जैसे बरसीम, लूसन और गैर फलीदार जैसे मक्का, ज्वार को मिलाकर पशुओं को खिलाना चाहिए।
2: हाँ अखिलेश भैया, अगर दाना मिश्रण की बात करें तो दुधारू पशु को दूध के उत्पादन के अनुसार दाना दें। प्रति 2 से 2.5 किलो अगर दूध पशु दे रहा है तो उसको 1 किलो दाना मिश्रण यानी खल, अनाज, चूनी आदि इसकी आवश्यकता होती है।
3: और अगर हम खनिज लवण की बात करें तो पशुओं के आहार में प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम अच्छी गुणवत्ता का मिनरल मिक्सचर मिलाएं, जिससे दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़े।
2: हाँ अखिलेश भैया, और ताजा पानी पिलाएं। कई बार क्या होता है कि देखो, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब होते थे और अब भी हैं, और तालाब पे सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान है, क्योंकि जब तालाब के अंदर पानी होगा तो वाटर लेवल ऊंचा होगा, जिससे सिंचाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो जो अपनी गाय या भैंस उससे तालाब से पानी पिलाते हैं, और वो दूषित और गंदा पानी होता है जिससे कृमि पनपते हैं और जो पशु होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि ताजा और साफ पानी, घर का पानी पिलाएं,
3: और साथ ही दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु के स्वास्थ्य और प्रबंधन का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि भैया, कीड़ानाशक दवा हर 3 से 4 महीने में पशु चिकित्सक की सलाह से पशु को पेट के कीड़ों की दवा जरूर दें।
2: हाँ अखिलेश भैया, अगर नियमित टीकाकरण की बात हो तो खुरपका, मुंहपका, गला घोटू और जो लंपी बीमारी होती है जैसे बीमारियों मुर्गियों में होती है, पशुओं में, और ऐसी बीमारियां हैं जो खतरनाक बीमारियां, इनका टीकाकरण कराना बहुत जरूरी है।
3: और साफ सफाई की अगर हम बात करें तो पशु आवास को सूखा और साफ रखें, गोबर

0: और मूत्र को नियमित रूप से हटाएं ताकि संक्रमण जो है पशुशाला में ना फैले।
1: हाँ भैया, दुग्ध प्रबंधन की अगर बात करें तो निश्चित समय पर, यानी दूध निकालने का जो समय हो रोज एक ही होना चाहिए। जैसे सुबह 6 बजे अगर है तो अगले दिन भी सुबह 6 बजे हो, शाम को अगर 5 बजे दूर है तो दुहान जो है वो शाम को 5 बजे हो।
0: और भैया, अगर तेजी से धूप निकले तो पशु को तनाव मुक्त रखें और 5 से 7 मिनट के भीतर दूध निकालना ही उचित रहेगा।
1: हाँ भैया, अगर हम गर्भवती पशु की बात करें तो ब्याने से 2 से 3 महीने पहले दूध निकालना बंद कर दें ताकि वो अगले ब्याह के लिए रिकवर हो सके, यानी वो तैयार हो सके और जो दूध का उत्पादन हो वो ज़्यादा मिले।
0: और ब्याने के अगर हम बात की बात करें तो ब्याने के पहले दिन से ही उसे उच्च गुणवत्ता वाला आहार और एक्स्ट्रा दाना दें जिससे दूध की पीक अधिकतम पैदावार मिल सके।
1: हाँ अखिलेश भैया, घरेलू नुस्खे भी हैं कुछ दूध बढ़ाने के लिए, जैसे मेथी और जीरा। मेथी को भूनकर उसमें जीरा और गुड़ मिलाकर खिलाने से दूध का उत्पादन बढ़ता है।
0: और साथ ही सतावर पशु को सतावर की जड़ का चूर्ण खिलाना भी फायदेमंद माना जाता है। यदि हमारे सभी किसान साथी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही अपने पशु को स्वस्थ रखेंगे और अच्छा दूध उत्पादन अपने पशु से ले सकेंगे। और भैया, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है तो क्यों ना कल हमारे कृषि जगत कार्यक्रम में अपने किसान साथियों के लिए हम का सुन मांगे या बता दें अपने किसान साथियों को। कल सुनवाई जाएगी एक चर्चा, सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाएं व अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस पर चर्चा होगी। साथ ही भेंटवार्ता, हरी खाद क्यों उगाएं, जानकारी देंगे डॉक्टर सिद्धार्थ कश्यप, आपसे बातचीत कर जानकारी कराएंगे राजेंद्र भट्ट जी। साथ ही लोकगीत के लिए सुनवाओ जाए वो बढ़िया सो लोकगीत मनोरंजन के लिए, ओ राजा तुमने आवाज होगी। साथ ही कृषि संकेत कार्यक्रम में गर्मियों में मधुमक्खी पालक क्या करें, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में ब्लॉक दातागंज से बदायूं जिले से प्रगतिशील कृषक से बातचीत सुनवाई जाएगी और साथ ही दिलवाई जाएगी मौसम की जानकारी।
1: हाँ अखिलेश भैया, अगर हम बात करें अब मौसम के कल की जानकारी तो कल का मौसम अधिकतम 37 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम आर्द्रता की बात करें तो 52% और हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा बहने की संभावना व्यक्त की गई है।
0: और भैया, अब समय है कतई ज्यादा न देर है कि अपने किसान साथी से आगे और ज्यादा बातचीत कर सकें, तो अगले कार्यक्रम तक अपने भैया अखिलेश
1: और अब्दुल हफीज भैया को दे अनुमति।
0: राम राम, राम।

0: कृषि श्रोता अभी सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत अब आइए सुनते हैं फहीम जहां से वार्ता। विषय है तकनीकी के साथ कदम मिलाना है।
1: आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा जीवन पूरी तरह से तकनीकी उपकरणों पर निर्भर है। तकनीक ने असंभव को संभव बना दिया है। तकनीकी उपकरण जैसे स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, घरेलू उपकरण आदि से हम घिर चुके हैं। हमारा दैनिक जीवन तकनीक से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। तकनीकी ने हमारा जीवन इतना आसान बना दिया है, हमें इतनी सुख सुविधाएं प्रदान की हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। टेक्नोलॉजी से न सिर्फ मनुष्य का जीवन स्तर सुधरा है, बल्कि देश दुनिया के विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से न सिर्फ मानव जीवन को विकास की नई गति प्रदान मिली है, बल्कि उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तकनीकी के साथ कदम मिलाना से तात्पर्य है आधुनिक तकनीकों, डिजिटल उपकरणों और नई खोजों के अनुसार खुद को अपडेट रखना और उनका दैनिक जीवन में उपयोग करना। तकनीकी मानव जीवन के लिए एक वरदान सिद्ध हुई है। तकनीकी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन

व्यापार, पर्यटन, यातायात, कृषि आदि क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी अदा की है। टेक्नोलॉजी से कई ऐसी मशीनें, सॉफ्टवेयर अथवा उपकरण बनाए गए हैं जिससे माल बनाने की प्रक्रिया में तेजी आई है और औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। तकनीकी से तात्पर्य उन सभी मेथड, सिस्टम अथवा डिवाइसेस से है जिसका प्रयोग विज्ञान की दुनिया में किसी खोज के प्रयोग के लिए किया जाता है। विज्ञान की दुनिया में इसका उपयोग करने के लिए उचित कौशल, ज्ञान और सामर्थ्य की जरूरत होती है। आज तकनीकी का हर किसी के जीवन में खास महत्व है क्योंकि यह विकास की दर में वृद्धि करती है। अगर किसी देश की विकास की दर धीमी है तो इसका अर्थ है कि उस देश की टेक्नोलॉजी काफी पीछे है। हमें तकनीकी के साथ कदम मिलाना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तकनीकी ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे मानव जीवन बहुत आसान हो गया है। वहीं आज मनुष्य घर पर बैठे बैठे ही देश दुनिया के किसी भी कोने का हाल मात्र कुछ ही सेकंड्स में प्राप्त कर लेता है। आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से चिकित्सा के क्षेत्र में कई गंभीर बीमारियों के इलाज भी ढूंढ लिए गए हैं। कई ऐसे चिकित्सक यंत्र बनाए गए हैं जिसकी सहायता से मनुष्य के शरीर में होने वाले रोगों का पता लगाया जा सकता है। अर्थात टेक्नोलॉजी ने चिकित्सा को विकास की नई दिशा प्रदान की है। तकनीकी के माध्यम से ही आज घंटों की दूरी मिनटों में तय की जाने लगी है। अब दुनिया के किसी कोने में पहुंचना बहुत आसान हो गया है। तकनीकी से टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, कंप्यूटर, इंटरनेट ने हमारे जीवन स्तर को सुधारा है। हम देखते हैं कि भारत का सबसे अधिक विकास तकनीकी क्षेत्र में हुआ है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत आसानी हुई है और अब ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और परिवहन सुविधाओं ने समय और ऊर्जा की बचत की है। अब हमें बैंकों में लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती है। तकनीकी के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा में भी वृद्धि हुई है। अब हम घर बैठे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तकनीकी ने हमारे जीवन की दिशा में आमूल चूल परिवर्तन किए हैं। आधुनिक युग की सबसे क्रांतिकारी तकनीकों में से एक है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका महत्व मानव जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि यह मशीनों को मनुष्यों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। तकनीकी में AI का उपयोग आज के समय में लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है, जिसका उद्देश्य मशीनों को स्मार्ट बनाकर इंसानी कामों को तेज, आसान और अधिक सटीक बनाना है। AI का उपयोग साइबर सुरक्षा, नई दवाओं की खोज, रोगों का पता लगाना आदि में किया जा रहा है। तकनीकी की प्रगति ने हमारे जीवन को और अधिक आसान, आरामदायक बना दिया है, लेकिन तकनीकी का बुरा प्रभाव वातावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। मनुष्य अब मशीन पर इतना निर्भर हो गया है कि वह अपनी सोचने, समझने की क्षमता खो रहा है। आजकल का युवा स्क्रीन के सामने अधिक समय बिताने से आंखों की समस्या, तनाव से ग्रसित हो रहा है। वर्चुअल दुनिया में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण लोग अपनों से और वास्तविक सामाजिक संबंधों से दूर होते जा रहे हैं। तकनीक का प्रयोग संतुलित रूप से करना चाहिए जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। हमें तकनीकी का विवेकपूर्ण और सीमित उपयोग करना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाना जरूरी है, तभी हम विकसित होंगे और एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तकनीकी के हर क्षेत्र में हमें खुद को अपडेट रखना होगा। भारत में तकनीकी को बढ़ाने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस दिन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तकनीकी मानव जीवन के लिए वरदान है। तकनीक और विज्ञान आज हर मानव की जरूरत बन गया है।

0: इसके बिना हर मानव खुद को अधूरा महसूस करता है। प्रौद्योगिकी मानव जाति के लिए सबसे बड़ा आविष्कार है। टेक्नोलॉजी ने आज मानव जीवन को जितना आसान बना दिया और देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। तकनीकी की महत्ता मैं इस प्रकार कहना चाहती हूँ कि तकनीकी विकास से ही देश की तरक्की संभव है। तकनीकी विकास से ही देश की तरक्की संभव है। आज हमारे जीवन में प्रौद्योगिकी ने बहुत सुख सुविधाएं दी हैं। तकनीकी आज मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तकनीक ने हमें और अधिक कुशल बनने में, हमारी उत्पादकता में वृद्धि करने में बहुत मदद की है। तकनीकी का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक ज्ञान का अध्ययन है, जिसका उद्देश्य ऐसे उपकरण और प्रक्रियाएं बनाना है जिनका उपयोग हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में दक्षता बढ़ाकर दुनिया को बदलने के लिए किया जा सके। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि तकनीकी एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे भविष्य को आकार देती है और हमारे जीने, काम करने और दूसरों से जुड़ने के तरीके बदल रही है। इसीलिए हमें तकनीकी के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।
1: कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे फहीम जहां से, ये वार्ता विषय था तकनीकी के साथ कदम मिलाना है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, कल सवेरे 6:05 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश कल सवेरे 6:35 पर सुनिएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय रहेगा दंत विकार और घरेलू नुस्खे। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन सकेंगे कल सवेरे 7:00। कलाकार होंगे प्रहलाद सिंह मेहरा। रोज की तरह सुबह 7:31 पर फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह सवेरे। कल सवेरे 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नश्र किया जाएगा। सवेरे 9:50 पर उपशास्त्रीय संगीत में आप सुन सकेंगे विनय अग्रवाल से उनका सितारवादन राग शुद्ध सारंग और तबले पर संगत कर रहे होंगे निसार हुसैन। सवेरे 11:00 कार्यक्रम धरोहर में आप सुनेंगे धारावाहिक दक्षिणी कामरूप की गाथा, इसका भाग 11। प्रातः 11:30 पर श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम होगा मन भावन। दोपहर 12:10 पर ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा गीत आपके नाम। कल दोपहर 2:30 पर सुनहरा दौर में हम आपको सुनवाएंगे 70 के दशक के कुछ यादगार फिल्मी गीत। हमारी दूसरी सभा में शाम 5:15 पर युवा श्रोता सुन सकेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी। कल शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में वार्ता का विषय रहेगा सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाएं और साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पादप और स्वास्थ्य दिवस पर।

कल शाम 7:31 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे सुरेश वाडकर की गाई कुछ गजलें। रात्रि 8 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे गीत गाता चल। कार्यक्रम आज के मेहमान के अंतर्गत आप सुनिएगा इमारतें बोलती हैं। इस पर जानकारी देंगे डॉक्टर पुष्कर मिश्रा और आपसे बातचीत करेंगे विक्रांत चौधरी। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा कल रात्रि 9:30। रात्रि 10 बजे खेल दर्पण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर किया जाएगा और रात्रि 10:30 पर फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम होगा गीतांजलि। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की।

और अब आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में अर्थात 7:31 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में हम आपको सुनवाएंगे इंदिरा खरे के गाए कुछ गीत और भजन। रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम सबरस में हम आपको सुनवाएंगे कुछ लोकगीत, कलाकार होंगी आयुषी, हारमोनियम पर संगत करता होंगे सरन बाबू वाल्मीकि और ढोलक संगत करता गिरधर सिंह वर्मा। रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो रामपुर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
1: मैं प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
2: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
1: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
2: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
3: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाड़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
2: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
4: से नो टू प्लास्टिक।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये है आकाशवाणी रामपुर, जिसे सुन रहे हैं आप मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए अगली प्रस्तुति।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर किया जाएगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना इतनी भी क्या जल्दी थी। अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना, और ये मेरी बड़ी। दादी हाँ, आपके नाम?
2: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो। क्या
2: आरबीआई कहता है?
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थ स्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों के भी नए रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की

0: लोगों के साथ जुड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
1: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज सोमनाथ में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी आध्यात्मिक चेतना में निहित होती है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है।
2: यह पर्व हमें अपने गौरवशाली अतीत से ऊर्जा लेकर भविष्य के भारत के निर्माण का संकल्प देता है। ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हो। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि, भौतिक संसाधन या तकनीकी प्रगति में नहीं होती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और आत्मिक आधार में निहित होती है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, नीति निर्माण में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। आज उत्तर प्रदेश ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है।
3: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वह थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली के शुभारंभ के साथ भारत ने प्रौद्योगिकी आधारित राजमार्ग प्रबंधन के एक नए युग में प्रवेश किया है। नई दिल्ली में इस उन्नत टोल प्रणाली का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पहल से टोल प्लाजा पर लगने वाला अधिक समय कम हो जाएगा और ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और यात्रा में होने वाली देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और प्रतिवर्ष 81,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विश्वविद्यालयों के साथ ही प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को भी NAC और अन्य राष्ट्रीय रैंकिंग दिलाना है। इसके लिए कॉलेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि संस्थानों में गुणवत्ता, रिसर्च कल्चर, डिजिटल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाकर किस प्रकार रैंकिंग हासिल की जा सकती है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि

0: कॉलेजों में छात्र संख्या बढ़ाने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में दो दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नीपेन्द्र मिश्र ने बताया है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभा कार्य 30 मई तक पूरा कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा में निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर स्थित संग्रहालय दिसंबर के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। श्री मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर में विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
1: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो, जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लैब जो बनाई गई है, यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने दो अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विन कशकर ने AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन ब्रीडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से जलवायु अनुकूल और उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों के विकास पर प्रकाश डाला। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थस्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों को भी रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:31 हुए हैं। कार्यक्रम सुगम संगीत में अब आइए सुनते हैं इंदिरा खरे के गाए कुछ गीत और भजन।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे इंदिरा खरे के गाए कुछ गीत और भजन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 8 बजे हैं। अब पेश है व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल।

नमस्कार श्रोता साथियों, आज एक बार फिर आपकी पसंदीदा फिल्मी गीतों को लेकर हाजिर है आपकी आज की रेडियो दोस्त सरस्वती सिंह। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहला गीत जो आप सभी ने सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है ऐतराज। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक, और इस गीत को पसंद किया है आप सभी श्रोता साथियों ने। फाजिलका पंजाब खेड़ा से भूषण खेड़ा, विशु, शालिनी ट्यवानशी, वाणी खेड़ा, बी खेड़ा, जीवन सिंह और समस्त खेड़ा परिवार। मोहल्ला हलवाईयान कोट शेरकोट जिला बिजनौर से सुनने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से इस फिल्म के गीत की फरमाइश की है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी क्रम में राजद्वारा कोठी अफसराला से रूमा खान, बॉबी खान, मदीहा खान, सुभान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशा, जीनत अमान और शमा परवीन। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी और इरफान खान।

मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंजूरी, राशिद भाई मंजूरी, असद भाई वैन, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली साथ हैं, नगमा नाज मंजूरी, नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से फरमाइश करता है, मुसरत जहां नाज, तलत जहां नाज, फराज जहां नाज, रिफत जहां, नुजहत जहां, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। खुर्जा उत्तर प्रदेश से फरमाइश करता है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्य। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। वंडिंग खेड़ा पंजाब से सुनने वाले श्रोता साथी हैं पिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। कासगंज से अपनी फरमाइश लिख भेजी है राधेश्याम शाक्य जी ने। बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी, शायना काजल और भाई शहजाद अली। मोहल्ला मजार चांद शामिया रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अदनान मंजूरी, अरमान अली, रायना चांदनी, अनंता और आशु भाई। जिला अमरोहा नई बस्ती पतेई खालसा से सुनने वाले श्रोता साथी हैं बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलिम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, नाविया सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। आप सभी श्रोता साथियों की फरमाइश पर लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक को फिल्म ऐतराज़ में।

उदित नारायण और अलका याग्निक युगल आवाजों में अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म ऐतराज से। इस गीत के बाद अपनी फरमाइश लिख भेजी है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाणकर, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से प्रणिता सिद्धांत, अर्जुन ग्वाणकर, आकार हाइट से बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, सुमित कुमारी ध्वनि, संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी, सरगुजा मैनपाट से प्रभा डोमेन, प्रमिला डोमेन, आशा डोमेन, निशा डोमेन और समस्त डोमेन परिवार, तखतपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू, मीरा देवी, गंगा देवी और मिश्री देवी साहू, बिहार स्टेट डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया जालंधर से अशोक जाटव, बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा और अनामिका शर्मा, इंदिरा विहार दिल्ली से सुनने वाले श्रोता साथी हैं बेबी अंसारी, डब्लू अंसारी, दानिश अंसारी, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र यादव और जानवी यादव, बक्सर बिहार से फरमाइश लिख भेजी है राज डी एस अंसारी और फातिमा राज अंसारी, रवि रेजिडेंसी राजकोट से हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी, वीरमगाम सिटी से अजीता मेहरा और सुनीता मेहरा, सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक ढींगरा, विजय और अनुश्री ढींगरा, बिलाईगढ़ से देव डुकर, तुषार और अजय देव डुकर, सरगुजा मैनपाट से विनोद थापा, पूजा रानी और विजय थापा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमानाज अंसारी, छत्तीसगढ़ से जानवी, कभी रेडियो लिसनर्स क्लब लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपूत, डोंडी लोहारा बालौद से कमलेश जयपुरिया, शनि चौक खंडवा से पिंकी मिंकी शिंकी और रिंकी, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद मिश्रा, रमेश चंद्र और कुमकुम मिश्रा, गांव खाबरी अब्बल से चौधरी राजवीर सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य, आप सभी ने सुनना चाहा है एसबी बाला सुब्रमण्यम को, फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया, ये गीत ये नगमा आप सभी के नाम।

इसी क्रम में कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी ने सुनना चाहा है, फिल्म आशिकी से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और इस फिल्म के गीत की फरमाइश की है आप सभी श्रोता साथियों ने। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी और इनके सभी साथीगण। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से फरमाइश करता है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और अल कबीर। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से फरमाइश लिख भेजी है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। बीजना मुरादाबाद से फरमाइश करता है राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका, यूनुस खान और सोफिया खान। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से सुनने वाले श्रोता साथी हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से हमारे श्रोता साथी हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। करोला मुरादाबाद से फरमाइश करता है अयूब खान, रमगुड़िया शोएब खान, नावेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतना नहटा और दीक्षा और कुश मूरत। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बा शेरे। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और इनके सभी साथीगण। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी से नानाजी लाम से तेजस, जय, हर्षिता और इनके परिवार के सभी सदस्य। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से सुनने वाले श्रोता साथी हैं गंगाधर सावनकर और विजयलक्ष्मी सावनकर। बेड़ी मध्य प्रदेश से फरमाइश करता है हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से अपनी फरमाइश भेजी है योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक, सुरेश चौरसिया और इनके सभी साथीगण।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत गाता चल, और इस कार्यक्रम की अगली फरमाइश में आप सभी ने सुनना चाहा है सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में एक और खूबसूरत गीत। फिल्म का नाम है मेरे यार की शादी है, और इस फिल्म के गीत को सुनने वाले और पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं आप सभी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा

बठिंडा रोड मंडी डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी, तानिया नारंग और इनके परिवार के सभी सदस्य, जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, सबाना नाज, रिजवान राही, इमरान नाज, आलम शेख, फिरोज आलम, चांदनी नाज और इनके परिवार के सभी सदस्य, मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोज मुस्कान, जसपुर उत्तराखंड से फरमाइश लिख भेजी है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और रियाज ने। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान, हिंगोली महाराष्ट्र से फरमाइश करता है शाहजी बोटखे, श्रीमती नंदा बोटखे और हनुमान बोटखे, अनारगली बाजार जगरांव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव, हिंदुस्तान रेडियो मित्र परेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा, क्वाथ बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना अकरम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल खमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से शाहिद भाई, आसिफा परवीन, मोहम्मद सैफ, सदफ, फातिमा, अल्फिया, मोहम्मद सूफियान, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजर अंसारी, अबरार हुसैन, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से फरमाइश करता है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सभी श्रोता साथियों की फरमाइश पर लीजिए सुनिए सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है मेरे यार की शादी है।

और श्रोताओं, अब इस गीत के साथ पेश है कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति आप सभी श्रोता साथियों की फरमाइश पर, फिल्म दामिनी से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक, और इस फिल्म के गीत को पसंद किया है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, इसी क्रम में फरमाइश करता है दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,

पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। मोहल्ला झंडा रामपुर से मोहम्मद असलम, फूल भाई और नसरीन जहां।

आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में ये गीत, ये खूबसूरत नगमा फिल्म दामिनी से।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ अपनी आज की रेडियो दोस्त सरस्वती सिंह को कार्यक्रम गीत गाता संपन्न करने की दीजिए अनुमति। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवान मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: For the season of खरीफ 2026, खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देशभर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2

0: दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत एक अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी

0: पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरदार धाम हॉस्टल में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सहूलत है, साथ ही मरकजी डाइनिंग हॉल, लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम जैसी सहूलियात भी शामिल हैं। जनाब मोदी ने सरदार धाम इमारत में मुख्तलिफ सहूलियात का दौरा भी किया, जिसमें रिसेप्शन का एरिया और डाइनिंग एरिया, नीज ई लाइब्रेरी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर अव्वलियत का हामिल है और इसकी हैसियत अबदी है। ये मुल्क के तहजीबी हौसले और अटूट भक्ति का मुजाहिरा करता है। जनाब मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर मंदिर में महापूजा की और फिर कुंभ अभिषेक किया और परचम लहराया। ये तकरीबात भगवान शिव के लिए वक्फ इस बहाल किए गए मंदिर के इफ्तिताह के बाद 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िद की गई। मंदिर के दौरे के बाद सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि नौ तामीर शुदा सोमनाथ मंदिर के दरवाजे 1951 में उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में खोले गए थे, जो दुनिया के लिए इस बात का वाजह ऐलान है कि हमला आवर तारीख की धूल में कहीं पीछे रह गए और भारत की रूह कायम और दायम रही। मंदिर में एक इज्तिमे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानिब से मंदिर की तामीर नौ भारत की अपनी सकाफत को फख्र के साथ महफूज करने के अज्म को जाहिर करती है।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: हुकूमत ने आज मुत्तला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है और भारत के पास 60 दिन का खाम तेल, 60 दिन की कुदरती गैस और 45 दिन के लिए एलपीजी का जखीरा मौजूद है। ये बात नई दिल्ली में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में मगरबी एशिया के मुतालिक वजरा के गैर रस्मी ग्रुप की 5वीं मीटिंग के दौरान बताई गई। मीटिंग के दौरान इस बात की भी इत्तला दी गई कि जर मुबादला के जखायर 703 अरब अमरीकी डॉलर की तिरखा मकदार में मौजूद है। हुकूमत ने बताया कि सप्लाई का इंतजाम बहुत अच्छा रहा है और लोगों को ईंधन और दीगर मसनूआत की खरीदारी के लिए परेशान होने या जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मीटिंग के दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अफसरान को हिदायत दी कि जमीनी सतह पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपीलों पर अमल आवरी के लिए ठोस इकदाम करें। वजीर आजम ने लोगों से जोर देकर कहा था कि वो मेट्रो और आवामी आमदोरफ्त का इस्तेमाल करके और कार पुलिंग का तरीका इख्तियार करके पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी करें। उन्होंने शहरियों से यह भी जोर देकर कहा था कि वो एक साल के लिए गैर जरूरी बैरूनी मुल्क सफर से इज्तनाब करके और मुल्क में ही सियाहत और तकरीबात मनाकर और गैर जरूरी सोने की खरीद से परहेज करके गैर मुल्की जर मुबादला के जखायर को महफूज रखने में तआवुन दें। वजीर आजम ने किसानों से जोर देकर कहा था कि वो कीमियावी खादों के इस्तेमाल में 50% तक कमी करें और कुदरती काश्तकारी के तरीक़ेकार को अपनाएं, जमीन के रखरखाव में मदद करें, दरामदात पर इन्हिसार में कमी करें और काश्तकारी के लिए डीजल पंप के बजाय शमसी तवानाई से चलने वाले आपाशी के पंप को वसी पैमाने पर इख्तियार करने की हौसला अफजाई करें। हुकूमत ने कहा कि मुल्क को इसके लिए एक बड़ी लागत का खर्च उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बैनुल अक्वामी खाम तेल की कीमतें लगातार बहुत ऊंची सतह पर हैं और ईंधन की बचत इस बोझ में कमी कर सकती है। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: इस मीटिंग में मरकजी वजरा जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णो, हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, के राम मोहन नायडू, सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। ये आकाशवाणी है। मरकज ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड

0: हजार छह सौ बानवे करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
1: विकसित भारत जी राम जी कानून, 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून एम जी नरेगा 2005 की जगह लेगा। नए कानून का मकसद माली साल के दौरान स्टेचुरी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस इजाफी रोजगार गारंटी के जरिए देही तरक्यात की रफ्तार में तेजी, आमदनी के तहफ़ की बेहतर जमानत और देही कुंभों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये कानून उजरत की अदायगियों को बरवक्त बनाने, शफाफ और जवाबदेह अदायगियों पर जोर देता है। साथ ही वीबी जी रामजी कानून में मुकर्रर वक्त में काम न मिलने की सूरत में बेरोजगारी भत्ता फराहम करने की गुंजाइश भी है। विकसित भारत जी रामजी कानून जामे कानूनी फ्रेमवर्क है जो साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर की कौमी विजन को देही रोजगार पैदा करने के साथ साथ हम आहंग करता है। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा के लगातार दूसरी मुद्दत के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर कल हलफ लेने की सारी तैयारी हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए कारगुजार वजीर आला और वजीर आला नामजद हेमंत बिस्वा सरमा ने मुत्तला किया कि हलफ बरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी सदर नितिन नवीन शिरकत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कई मरकजी वजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वजराए आला भी तकरीब में शरीक होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब आसाम में एनडीए की लगातार तीसरी मुद्दत के आगाज की अलामत होगी। मगरबी बंगाल की नई रियासती हुकूमत ने आज अपना कामकाज शुरू कर दिया। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीनी इजलास की सदारत की और अमनो कानून की सूरत हाल से मुतालिक रियासती सेक्रेटरीट नबन्ना में इंतजामी मीटिंगें की। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल हुकूमत के पांच वजीरों में आज मुख्तलिफ कलमदान तकसीम किए गए। इन वजरा ने 9 मई को वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के साथ हलफ लिया था। एक बड़ी पेशरफ्त के तहत आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मरकजी हुकूमत की स्कीमों के मगरबी बंगाल में निफाज को मंजूरी दे दी गई। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने आज जराए इब्लाग को बताया कि भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए सरहदी मुहाफिज दस्ते बीएसएफ को अगले 45 दिन के अंदर जमीनें फराहम कर दी जाएंगी। साबिका टीएमसी हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से फंड्स मौसूल होने के बावजूद जरूरी खित्ते आराजी की मुंतकली नहीं की थी। नई रियासती हुकूमत ने भी बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी फलाह व बहबूद की किसी भी स्कीम को मगरबी बंगाल की नई हुकूमत बंद नहीं करेगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि शेरों की कुदरती पनागाहों की बहाली, टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी और बिरादरियों के जरिए उनके तहफ्फुज़ के लिए कॉरपोरेट फंडिंग जरूरी है। नई दिल्ली में आज सीआईआई सालाना कारोबारी चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने सनती रहनुमाओं से शेरों की नस्ल के जानवरों को बचाने की आलमी कोशिशों की सरगर्म तौर पर हिमायत करने की अपील की। जनाब यादव ने यह भी बताया कि भारत अगले महीने की 1 और 2 तारीख को नई दिल्ली में शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ्फुज़ से मुतालिक पहली बैनुल अक्वामी चोटी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। शेरों की नस्ल के जानवरों के तहफ्फुज़ से मुतालिक बैनुल अक्वामी इत्तेहाद का मकसद शेर, बबर शेर, चीते और बर्फानी तेंदुए समेत इस नस्ल की 7 बड़ी इकसाम का तहफ्फुज़ करना है। पंजाब के रियासती इंतखाबी कमीशन ने रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 76 म्यूनिसिपल कौंसिलों और 21 नगर पंचायतों समेत 105 मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का ऐलान किया है। ये इंतखाब 26 मई को होंगे जबकि वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इन इंतखाबात में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल 13 मई को शुरू होगा और 16 मई तक जारी रहेगा। पर्चों की जाँच पड़ताल 18 मई को होगी जबकि 19 मई तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती इंतखाबी कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही इंतखाबात वाली सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, म्यूनिसिपल कौंसिलों और नगर पंचायतों की हुदूद में मिसाली जाब्ता अखलाक फौरी तौर से नाफिजुल अमल हो गया है। आईसीसी की जानिब से आज जारी की गई मर्दों की एक रोजा बैनुल अक्वामी मैचों की टीम दर्जाबंदी में भारत ने अपना पहला मकाम बरकरार रखा है। ताहम भारत की दर्जाबंदी में 1 पॉइंट की कमी आई है और वो 119 पॉइंट से कम होगा।

0: पर 118 पॉइंट रह गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 2 पॉइंट हासिल करते हुए 113वां मकाम हासिल कर लिया है। इस मामूली गिरावट के बावजूद भारतीय टीम आलमी क्रिकेट में अब भी सरफहरिस्त एक रोजा बैन अवी टीम है और गुज़श्ता हफ्ते की अपडेट के बाद मर्दों की T20 बैन अवी दर्जाबंदी में भी अपना पहला मकाम बरकरार रखे हुए है। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कल गर्मी की लहर की हालात बरकरार रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4-5 दिन के दौरान मगरबी राजस्थान के इलाकों में रात के वक्त भी गर्म सूरत हाल रहेगी। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों से जोर देकर कहा है कि कौमी वसाइल पर बोझ में कमी करने की गरज से मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने मगरबी एशिया के तनाज़े को इस दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार दिया। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन और LPG का 45 दिन के लिए जखीरा मौजूद है। मरकज ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी एक्ट पर अमल आवरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। BJP लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा कल आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। रियासत में NDA की लगातार ये तीसरी मुद्दत की हुक्मरानी होगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। कार्यक्रम सबरस के अंतर्गत अब आइए सुनते हैं आयुषी के गाए कुछ लोकगीत। हारमोनियम पर आपके साथ संगत कर रहे हैं सरन बाबू वाल्मीकि और ढोलक पर संगत कर रहे हैं गिरधर सिंह वर्मा।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं आयुषी के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं सरन बाबू वाल्मीकि और ढोलक संगतकर्ता गिरधर सिंह वर्मा।

कार्यक्रम सबरस के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आयुषी के गाए कुछ लोकगीत। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे सरन बाबू वाल्मीकि और ढोलक संगतकर्ता थे गिरधर सिंह वर्मा। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अपेश है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो रामपुर।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो रामपुर के साथ एक बार फिर हाजिर है आपकी आज की रेडियो सखी सरस्वती सिंह। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए, अपना फरमाइशी गीत सुनने के लिए और हमसे बात करने के लिए जल्दी से उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा ये नंबर 0595-2324-326। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 0595-2324-326। और इसी के साथ हमारे पहले श्रोता साथी हमसे जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका नाम और किस गीत की फरमाइश के साथ आज वो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो रामपुर
1: जी। आदाब मैडम।
0: आदाब जी, कौन से श्रोता साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: जी मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ जी। मेरा नाम नईम मलिक है, सेंट्रल कश्मीर से मैं बात कर रहा हूँ, जिला पड़का में हमारा गांव पड़ता है मैडम जी।
0: तो कश्मीर में इस समय कैसा मौसम चल रहा है?
1: बहुत अच्छा मौसम है, पिछले दो चार दिन से बहुत ही बढ़िया धूप यहाँ पर अच्छी, लेकिन पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन इस हफ्ते बहुत अच्छी खिली खिली धूप नजर आ रही थी और गर्मी भी महसूस हो रही है यहाँ पर, तो हमें बहुत अच्छा मजा लगता है। जब गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा जब हम रामपुर के प्रोग्राम सुनते हैं, हमें बहुत बेहतरीन लगते हैं मैडम जी।
0: जी बहुत ही अच्छी बात है। नईम जी, आपके घर परिवार में सब कैसे हैं और आप क्या काम करते हैं?
1: बिजनेसमैन हूं और घर में सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे पास वो हार्डवेयर का दुकान दो चार है, जिसमें टाइल होते हैं, मार्बल होते हैं, इसके अलावा पेंट वेंट और सीपी की जो सामान मैं बेचता हूँ। इसके अलावा मैं रेडियो के बहुत बड़ा शौकीन हूँ, रेडियो के प्रोग्राम में सुनता रहता हूँ।
0: क्या बात, कितने सालों से, कितने वर्षों से आप रेडियो के करीब हैं?
1: मैं 2005 से लेकर।
0: अच्छा जी, और किस गीत की फरमाइश के साथ आज आप इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं?
1: ये फिल्म दो रास्ते के नगमा सुनना चाहता हूँ, ये रेशमी जुल्फे मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा है।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का हम ये गीत आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में। नईम जी, आपने कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद। गुड नाइट।
0: गुड नाइट।

0: इसी बीच हमारे साथ एक और श्रोता साथी जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका नाम। हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर मैम जी, आदाब।
0: आदाब जी, कौन से श्रोता साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: मैं ग्राम धनुपुरा जिला रामपुर से आपका निमित्त श्रोता अनीस रहमान बात कर रहा हूँ मैडम आपसे।
0: अनीस जी कैसे हैं आप?
1: जी मैम अच्छा हूँ, अल्लाह का करम है। आप बताओ आपके अपने परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: सभी कुशल मंगल हैं, आप सभी श्रोता साथियों की दुआएं हैं। और बताइए क्या कर रहे थे इस समय आप?
1: जी मैम इस टाइम तो फिलहाल मैं ग्राम काजीपुर जिला रामपुर के अंदर शादी में लग रहा था मैं इस टाइम फिलहाल।
0: अच्छा आप शादी में आए हुए हैं किसी की?
1: जी जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आज हमारा कार्यक्रम था आज शाम, उसमें एक हमने थीम लिया था, एक विषय लिया था स्वयं की खोज, मतलब अपने आप से मिलना, अपने आप से रूबरू होना। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों से?
1: मैम फिलहाल इस टाइम प्रोग्राम में कम सुन पा रहा हूँ क्योंकि फिलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है ना प्रोग्राम।
0: नहीं फिर भी अगर आपको लगे, अगर हम आपसे कहें कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, अपने आप की खुद की खोज पहले करनी चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी मैं बस यही कहना चाहूंगा क्योंकि फिलहाल। हेलो
0: जी कहिए। हेलो
1: जी जी जी मैम बोलिए।
0: जी चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद बता दीजिए किस गीत की फरमाइश के साथ आज आपने कॉल लगाया है हेलो रामपुर में।
1: जी मैम सुनवा देना, मेरा नाम है सोले।
0: जी
1: सोले मुझे कोई सही

0: सॉन्ग प्ले कर देना मैम।
1: ठीक है, शोले
0: जी
1: फिल्म
0: मैम,
1: का हम आपको गीत सुनवा रहे हैं।
0: तो नाम लेना चाहता हूँ
1: जी
0: मैम,
1: जी कहिए।
0: मेरा गाने समाधि से गफ्फार भाई,
1: जी
0: 12 जगह मोहम्मद खान रामपुतम भाई रफत साहब, ग्राम खेड़ाने से मोहम्मद कामिल, और मेरे साथ में मेरा बेटा मोहम्मद हमदान, और साथ में आप हो रहा हूँ।
1: बिल्कुल, आपकी पसंद की फिल्म का हम गीत सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम में आपने कॉल की अनीस जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू मैम।
1: थैंक यू।

0: हेलो रामपुर, हेलो रामपुर।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन से श्रोता साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से। हाँ
0: श्रीपाल जी,
1: जी, हरियाणा से। मैम
0: कैसे हैं आप श्रीपाल जी?
1: मैम ठीक है मैम। और मैम,
0: आप
1: आपके शो में पहली बार कॉल लगी है।
0: जी,
1: हाँ
0: मैं अभी यही पूछने वाली थी आपसे कि आप पहली बार हमारे केंद्र से जुड़ रहे हैं।
1: जी मैम, बिल्कुल पहली बार।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले आप रेडियो से तो जुड़े होंगे, आपका जुड़ाव रेडियो से तो रहा होगा।
1: हाँ मैम, मेरे को सुनते रहते हैं सभी, जो मतलब केंद्र आकाशवाणी से भी सुनते हैं, मुंबई वाला भी, दिल्ली वाला भी, और ये यूपी के भी, लखनऊ के भी, सभी सुनते हैं, जुड़े
0: चलिए,
1: रहते हैं इनमें।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। आज हमारे कार्यक्रम,
1: जी
0: आप पहली बार शामिल हुए हमारे कार्यक्रम में। उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरीके से हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहें, शामिल रहें हमारे पत्रोत्तर कार्यक्रमों में,
1: हाँ
0: बाकी
1: जी
0: सभी कार्यक्रमों में।
1: जी
0: तो
1: जी
0: किस गीत की फरमाइश के साथ आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं?
1: मैम, फिल्म क्या मच्छे लड़की बहुत ज़्यादा आती है।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज हमारा एक कार्यक्रम था जिसमें हमने थीम रखी थी कि स्वयं की खोज, अपने आप

0: की खोज, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश?
1: मैं जो मतलब वो जो सुन नहीं पा रहा आपका कार्यक्रम जो भी था।
0: नहीं, आपके अपने विचार भी तो कुछ होंगे ना, जो आपके अपने स्वयं के विचार हों अपने बारे में कि इंसान
1: क्या
0: को कैसा
1: टॉपिक था
0: होना
1: मैम?
0: चाहिए। टॉपिक था स्वयं की खोज।
1: मतलब खुद की खोज, अपने
0: जी
1: आप की।
0: जी बिल्कुल।
1: जी, तो मैं खुद की अपना खोज करनी चाहिए, मतलब हमको जो है अपना सारा काम जो खुद ही करना चाहिए, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ
0: जी
1: जी, मतलब
0: बिल्कुल। चलिए आप,
1: दूसरे से मतलब कोई भी जो है
0: हाँ
1: अपेक्षा नहीं करनी चाहिए हमको कि वो हमारे लिए ऐसा करेगा।
0: बिल्कुल
1: हाँ जी जी
0: बिल्कुल। धन्यवाद शिपाल जी, आज आपने कार्यक्रम में कॉल की और आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: ओके मैम, थैंक यू।
0: थैंक यू। आप क्यों मिलना चाहते हो मुझसे, बोलो चुप क्यों हो? इतनी दूर चली जाऊंगी।

0: हेलो रामपुर
1: नमस्कार।
0: जी, नमस्ते। कौन से श्रोता साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: मैं धीरज रबारी बात कर रहा हूँ, गुजरात से।
0: क्या नाम बताया आपने अपना?
1: धीरज रबारी।
0: धीरज जी, कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं?
0: बस हम भी बढ़िया हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: वैसे रहता हूँ मैं अहमदाबाद, और मेरा गांव का नाम डेर, तहसील जिला पाटन, जहाँ रानी की वहाँ है।
0: अच्छा जी, तो इस समय आप हमसे किस जगह से जुड़े हुए हैं?
1: अभी मैं अहमदाबाद से जुड़ा हूँ,
0: क्या बात
1: और
0: है
1: आपका कार्यक्रम थोड़ा सुना,
0: जी।
1: और जो विषय पर आपने बात की तो श्रोता बंधु ने नहीं उसको नहीं पाया, तो फिर मैंने जोड़ा, मैं भी कोशिश करूँ तो
0: बिल्कुल
1: लग गया।
0: बिल्कुल, बताइए।
1: बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ फोन लगने के बाद, और हमको खुद में पहचानने में बहुत समय लगता है। हमें
0: जी
1: ज्यादातर हमें हमारी बुराई की तरफ ध्यान देना चाहिए,
0: जी
1: और जब हम हमारी बुराई तरफ ध्यान देते हैं और उसको निकालने की कोशिश करें, तब हमको लगता है थोड़ा बहुत हम हमारे से पहचानेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। आप खुद को पहचानने का सही मतलब है अपनी खामियों को भी पहचानना, अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अपनी बुराइयों पे भी काम करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: और आप सटीक विचारों के साथ एक कार्यक्रम पेश कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, शुक्रिया। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और किस गीत की फरमाइश के साथ आप जुड़ रहे हैं धीरज जी हमारे साथ?
1: गाना सुनना है मुकद्दर का सिकंदर का, और गाने के बोल है वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीरा,
0: बिल्कुल
1: और गाया है आशा जी ने।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में। कार्यक्रम में आपने कॉल की धीरज जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद,
1: आपका शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: मैम आज गाने के बोल रहे हैं सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई नहीं। मैम आज के हेलो रामपुर में यारो सॉन्ग प्ले कर देना को सुनने वाले हैं।
1: बिल्कुल बताइए।
0: मैम सबसे पहले ये हैं ग्राम बीबीपुर से मकसूद भाई, और ये हैं सुहाड़ से बिजरट, और यारो सॉन्ग इनको डेडिकेट साथ में आप और हम।
1: बिल्कुल आपकी पसंद का ये गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले इसरत जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे।
0: मैम ये कहना चाहता हूँ गर्मी का मौसम में और खासतौर के इस मौसम में अपना ख्याल रखें, कहीं बाहर जाएं तो मतलब जरूरी काम हो तभी जाएं, बाकी नहीं जाएं। मतलब उस
1: बिल्कुल
0: गर्म मौसम में गर्म गर्म लुएं चल रही है मैम।
1: बिल्कुल सही कहा आपने इसरत जी, अपनी सेहत का इस समय बदलते मौसम में बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय कभी बारिश हो जाती है एकदम से और कभी एकदम से बहुत तेज़ गर्मी
0: मैम
1: हो
0: ऐसा
1: जाती है।
0: कभी
1: जी
0: गर्मी है कभी सर्दी है कभी
1: जी
0: बारिश है, सब
1: जी
0: रंग का मौसम हो रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा
0: और बासी
1: आपने,
0: खाना नहीं खाएं, बासी फल नहीं खाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें। कार्यक्रम में इसरत जी आपने कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
0: जी मैम थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो रामपुर
1: हेलो हेलो रामपुर
0: जी, कौन से श्रोता साथी हमसे बात कर रहे
1: जी,
0: हैं?
1: मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: जी अनूप जी, कैसे हैं आप?
1: और जी मसाला बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, क्योंकि कुछ लोग दुनिया में इतने प्यारे होते हैं, कुछ लोग दुनिया में
0: जी
1: इतने प्यारे होते हैं कि उन्हें याद करना दिल का बेहद अच्छा लगता है, जैसे कि आकाशवाणी रामपुर, है ना
0: बिल्कुल सही कहा आपने। किस गीत की फरमाइश के साथ आज आप
1: जी।
0: हमारे साथ
1: आज एक
0: जुड़े हैं?
1: गाना है,
0: हाँ
1: बहुत पुराने गाने हैं, बहुत गजब के गाने हैं। फिल्म का नाम है सदमा और गाने का बोल ऐसे है, ए जिंदगी गले लगा ले, ऐसे करके गाने हैं। और
0: बिल्कुल
1: कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ। पहले
0: हाँ जी
1: है हमारे अमित तिवारी जी, विजय पांडे जी है, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी है, प्रेमजी चक्रवर्ती जी है, और है हमारे अनवर भाई जी है, ओम प्रकाश सिनेमा जी है, विजय सिंह लखेरा जी है, श्रीकांत जोशी जी फ्रॉम महाराष्ट्र, और आपके लिए मैम।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाएंगे अनूप जी, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कोई खास संदेश देना चाहेंगे।
1: जी, संदेश से मतलब हमारे जो भारत जो है वो तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसीलिए भाईचारा रखना चाहिए, सब धर्म अपना सब धर्म है हमारे यहाँ पे, लेकिन सब धर्म का मूल मंत्र है मानवता। तो
0: बिल्कुल
1: मानवता मानवता के लिए हम जान नौछावर कर देंगे, और सबको हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे मेरे भाई हो, है ना
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मानवता एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण गुण है इंसान का। इंसान के अंदर इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने अनूप जी, बहुत ही खूबसूरत संदेश आपका हमारे श्रोताओं के लिए रहा। कार्यक्रम में आपने कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पसंद का ये
1: जी।
0: गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: जी,
0: धन्यवाद।
1: थैंक यू थैंक यू।

0: इसी बीच बात करते हैं हमारे एक और श्रोता साथी से और जानते हैं उनसे उनकी फरमाइश। हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर मैम, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बिल्कुल हम बढ़िया हैं। आप बताइए कौन सी श्रोता साथी हमसे बात कर रही हैं। हाँ जी, कौन सी श्रोता साथी हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैम, मैं पूनम बोल रही हूँ कानपुर से। मैम कैसी हैं आप?
0: हम बढ़िया हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। आप बताइए कैसी हैं, और आपकी शायद पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में कॉल लग रही है।
1: जी बिल्कुल मैम, आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है। वैसे कार्यक्रम में तो मैं शामिल होती रहती हूँ, लेकिन आपसे बात पहली बार हो रही है आज।
0: हाँ, हमसे आज आपकी पहली बार बात हो रही है माइक्रोफोन के जरिए। जी कैसी हैं आप, घर परिवार में सब कैसे हैं आपके?
1: घर परिवार में सभी बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छा लगता है आज तक आपका जो कार्यक्रम हेलो रामपुर आप लेकर आती हैं, और
0: धन्यवाद।
1: आपकी जो प्रस्तुति होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कार्यक्रम में मैं जुड़ जाऊँ।
0: बिल्कुल, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे श्रोताओं को हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारे द्वारा पेश किए गए प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आते हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या ही हो सकता है। और बताइए क्या करती हैं आप पूनम जी?
1: तो मैम मैं भी आती हूँ और रेडियो आरएन पर कार्यक्रम करती हूँ,
0: अरे क्या
1: फोनिंग
0: बात है,
1: प्रोग्राम, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके साथ आज मौका मिला है बात करने का तो
0: बिल्कुल
1: बहुत खुशी होती है।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: तो किस गीत की फरमाइश के साथ आज आप इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं पूनम जी?
1: मैम मुझे गीत सुना दीजिएगा, तूने देखा है ऐसे सपने, ये
0: जी
1: गीत सुना दीजिएगा, और अविनाश जी से बात कर लीजिए मैम थोड़ी सी।
0: जी
2: जी हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: जी जी
0: हाँ जी, आपसे आपका
2: जी
0: नाम जानना चाहेंगे।
2: जी जी मैं अविनाश श्री बोल रहा हूँ, और आपके कार्यक्रम में पूनम जी के द्वारा जुड़ चुका हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि रामपुर में कॉल लगाना बहुत ही मुश्किल पड़ता है, और इसी भीड़ भाड़ का में देखिए कि अब कॉल कनेक्ट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है रामपुर
0: बिल्कुल
2: में।
0: बिल्कुल, हमारे
2: और
0: श्रोता साथी इस कार्यक्रम का बेहद बेसब्री से इंतजार करते हैं और लगातार कॉल्स आती ही हैं। जी
2: जी, और रामपुर में देखिए सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, जो आकाशवाणी के 90 वर्ष के ऊपर जो कार्यक्रम 2 भागों में आया था वो
0: जी
2: बेहद अच्छा लगा था,
0: क्या बात, बहुत अच्छी
2: पसंद
0: बात,
2: आया।
0: बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर। और क्या करते हैं आप?
2: जी मेरा वेल्डिंग का काम है, और साथ साथ में अगर मैं रामपुर से जुड़ा रहता हूँ और ईमेल भी भेजता रहता हूँ, उसके बाद जो बाकी कार्यक्रम आते हैं बहुत अच्छा लगता है, और खास करके देखिए जो समय का मतलब कि देखिए 1 बज के पहले 30 मिनट से आता था हेलो रामपुर शनिवार को, लेकिन उसको अब थोड़ा सा हम श्रोताओं के लिए 1 बज के 15 मिनट से वो कार्यक्रम लाया गया तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हम सभी जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इतने हम सब के लिए रामपुर इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।

0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। हमारे केंद्र के सभी कार्यक्रमों को आप बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और सराहते हैं, धन्यवाद आपका। और कार्यक्रम में आपने कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो रामपुर
1: हेलो रामपुर
0: जी, कौन से श्रोता साथी आज हमसे जुड़ रहे हैं?
1: सरस्वती सिंह सिस्टर जी को ग्राम में फुल लदाव लिखकर जिसका सपना का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार अजीत जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है और आपका प्रोग्राम सुन रहा था और शानदार प्रस्तुति चल रही है, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने इत्मीनान से सभी श्रोता साथी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। और किस गीत की फरमाइश के साथ आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े
1: मूवी का
0: हैं?
1: नाम है अंदाज और गाने का बोल है जिंदगी एक सफर सुहाना, यहाँ कल हो जाना।
0: बिल्कुल आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोता साथियों को कोई खास संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे?
1: जिंदगी एक सड़क है, मस्ती से चलते रहो, आते हैं उतार चढ़ाव, बस बोलते रहो, आकाशवाणी रामपुर का प्रोग्राम सुनते रहो और व्हाट्सएप ईमेल करते रहो, हेलो फोन इन प्रोग्राम में कॉल लगाते रहो।
0: बड़े ही कूल अंदाज में आपने अपना संदेश हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया है, आकाशवाणी केंद्र से जुड़ने का, रामपुर केंद्र से जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका।
1: जी, मेरी जी। मेरी जान है, मेरी पहचान है आकाशवाणी, निकलेंगे जब मेरे प्राण, सुन रहा हूँ आकाशवाणी।
0: क्या बात, बहुत बड़ी बात
1: कही
0: आपने।
1: मेरी जब तक सांस रहे आकाशवाणी का साथ रहे, इसके बिना एक पल भी जिसका सना ना रहे।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही लाइक गहरी बात आपने
1: और मैं
0: कह दी जी।
1: रामपुर से 1999 से जुड़ा हुआ है और 27 साल हो गए मुझे जुड़े हुए।
0: क्या क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब अजीत जी आपने कार्यक्रम में कॉल किया और इतने वर्षों से आप हमें सुन रहे हैं, इसे ये जानकर बहुत खुशी हुई। कार्यक्रम में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो रामपुर
1: हेलो रामपुर,
0: जी, कौन से श्रोता साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार जी।
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी
0: गफ्फार जी,
1: गफ्फार खां आपसे बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं गफ्फार जी आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आकाशवाणी परिवार के क्या हाल हैं?
0: सभी कुशल मंगल हैं, सभी आप सभी श्रोता साथियों की दुआएं हैं। और बताइए, इस समय आप क्या कर रहे थे?
1: इस वक्त आपसे मैं बात कर रहा हूँ।
0: इस समय हमसे बात करने के अलावा और क्या कर रहे थे? रेडियो सुन रहे होंगे, वो भी आप कहेंगे।
1: हाँ, रेडियो बज रहा है, कॉल लगा रहा था, कॉल लग गई
0: चलिए,
1: और
0: बहुत अच्छी
1: आपसे
0: बात
1: बात
0: है,
1: हो रही है।
0: बहुत अच्छी बात है। किस गीत की फरमाइश के साथ आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं?
1: फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी,
0: जी
1: महेंद्र कपूर की आवाज है और गाने के बोल है मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत हम
1: तो कुछ
0: आपको
1: सुनने वालों
0: सुनवाएंगे
1: के नाम है,
0: जी। कहिए।
1: राजिया खान है, सिमरन खान है, इरफान खान, शानवर अंसारी, शबनम अब्बासी, मसूद हुसैन, रीना तमान, गुलशन, आकाश रस्तोगी, सचिन, पप्पी पत के बाद से
0: जी
1: और हबीब अहमद, यही यही सब सुनना चाहेंगे।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोता साथियों को जो आपका ये गीत सुन रहे हैं, जिन्हें आपने ये गीत डेडिकेट किया है, उनके लिए कोई स्पेशल संदेश या कोई खास संदेश आप देना चाहेंगे?
1: मैं यही कहूंगा कि दान करना बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि कन्यादान है, रक्तदान है, नेत्रदान है,
0: जी
1: अपने साथ साथ उन गरीबों का, जरूरतमंदों का भी ख्याल रखें, उनकी
0: बिल्कुल
1: जरूरतें पूरी करें।
0: बिल्कुल, सही कहा आपने, बहुत ही नेक संदेश आपने हमारे सभी श्रोताओं को दिया। कार्यक्रम में गफ्फार जी आपने कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो रामपुर
1: हाँ जी, हेलो रामपुर
0: जी, कौन से श्रोता साथी हमसे बात कर रहे हैं?
1: जी। पहले आपको नमस्कार।
0: नमस्कार, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे।
1: जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी बोल रहा हूँ मैम।
0: बहारुल जी, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं। फोन लगाने का कोशिश कर रहे थे, बात भी हो रही है आपसे, अच्छा लग रहा है। काफी दिनों के बाद में इस प्रोग्राम में कॉल की है तो कॉल भी लग गई, अच्छा लग रहा है। हेलो रामपुर, हेलो फरमाइश में काफी दिनों से फोन लगाने के लिए वक्त नहीं मिल रहा, चिट्ठियां भी नहीं डाल पा रहे हैं इन दिनों, बस ईमेल कर रहे हैं। और जो शाम को गीत आपके नाम जो आ रहा है तो उसमें मैसेज वगैरह कर रहे हैं।
0: बहुत, चलिए कोई बात नहीं, आप जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, अपनी कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहरुल जी, किस गीत की फरमाइश के साथ आप कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा हम आपके दिल दिल में रहते हैं
0: जी।
1: उसका टाइटल सॉन्ग सुनवा देना और घर के कुछ नाम।
0: हाँ जी, कहिए।
1: जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बिटिया लीसा सिद्दीकी, शिवान सिद्दीकी, नाबिया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी, सुदेश चौहान, अतीक टोपी, पानी सिद्दीकी, महेशपुर खेम से, ग्राम प्रेमी साहब रामपुर से, नवाब दिन भाई रामपुर से, दुल्लापुर मुरदवा से, मुकेश कश्यप जी हैं, राशिद अंसारी हैं।
0: बिल्कुल, आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम में आपने बहरुल जी कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

और श्रोताओं इसी गीत के साथ अपनी आज की रेडियो सखी सरस्वती सिंह को कार्यक्रम हेलो रामपुर संपन्न करने की दीजिए अनुमति। और आप हमेशा हमसे इसी तरह जुड़ते रहिए, हर प्रोग्राम में हम में रहता है आपका इंतज़ार, आपके शामिल होने का इंतज़ार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को ढेर सारा प्यार दीजिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखिए। नमस्कार।

2.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में हिंदी समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब ब्रिटेन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।